ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून 2026। सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की

0: अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के तीन दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।
1: देश केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की साझी धड़कन है जो एक तिरंगे के नीचे एक साथ धड़कती है। इसकी मिट्टी में हमारे पुरखों का पसीना, जवानों का लहू और किसानों की मेहनत एक साथ घुली हुई है। अनेकता में एकता ही भारत की असली ताकत है। यहाँ भाषा, धर्म, वेशभूषा अलग है पर

निर्गुण वो राम है जिसका ना रूप है ना रंग, ना मंदिर है ना मस्जिद, वो बस कण कण में बसा एक एहसास है। जहां सगुण आकार मांगता है, निर्गुण कहता है आंख बंद करो, नाम जात भेष सब मिटा दो, तब मैं मिलूंगा। निर्गुण भक्ति कर्मकांड से आजादी है, ना माला ना तिलक ना चढ़ावा, बस सच्ची लगन और साफ नियत चाहिए।

कुंभ का मेला लगे या भोर की आरती, हर बूंद में बहती है मोक्ष की आस। तू नदी नहीं माँ है शिप्रा, तेरे आंचल में उज्जैन पलता है और तेरी लहरें हर हर महादेव का जाप करती हैं।

शिव की जटा से निकली, भागीरथ की तपस्या से धरती पर उतरी। गंगा, तू नदी नहीं मोक्ष की सीढ़ी है, तेरे जल की एक बूंद पाप धो देती है, तेरे तट पर रखा दीप जन्म मरण का फेरा मिटा देता है।

तू नदी नहीं तपस्विनी है, गंगा स्नान से पुण्य, यमुना पान से मुक्ति, पर नर्मदा के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। नर्मदा के कंकर शंकर कहलाते हैं, क्योंकि तेरी हर लहर शिव का जाप करती है और तेरे तट पर परिक्रमा करने वाला खुद तीर्थ बन जाता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं जीवन को बदलने वाले कुछ अनमोल विचार। आज के चिंतन में विषय है अपेक्षा मत रखो, उपेक्षा कभी ना होगी।

0: क्रोध तात्कालिक पागलपन है। क्रोध अहंकार के पीछे चलता है। क्रोध और अहंकार सगे भाई हैं, जिनमें तुम आदर की अपेक्षा करते हो। यदि उनसे आदर नहीं मिलता तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। जिनसे तुम प्रेम मांगते हो, प्रेम की फूलों की आकांक्षा रखते हो, यदि वे घृणा और कांटे थमा देते हैं तो तुम क्रोधित हो जाते हो। अपेक्षा की उपेक्षा ही क्रोध है। जब जब अपेक्षा की उपेक्षा होगी, तब तब तुम्हें क्रोध अवश्य आएगा। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं कि किसी से सम्मान की, प्रेम की, फूलों की अपेक्षा ही मत रखो। तो उपेक्षा कौन कर सकता है? और जब उपेक्षा नहीं होगी तो क्रोध स्वतः ही निशेष हो जाएगा। जो काम आंखों के इशारे से हो सकता है, उसे हाथ के इशारे से कराना नादानी है। और जो काम हाथ के इशारे से हो सकता है, उसे मुख से बोलकर कराना नादानी है। जो काम धीरे से बोलकर हो सकता है, उसे क्रोध से चिल्लाकर कराना नादानी है। इसी प्रकार काम हल्के से क्रोध के अभिनय से हो सकता है, उसे अधिकार के बलबूते हल करना पागलपन नहीं तो फिर क्या है? और अभी तुम यही कर रहे हो। सारी दुनिया यही कर रही है। यही एकमात्र कारण है कि संसार में इतनी वैमनस्यता, बिखराव, संघर्ष, दुख पनप रहे हैं। किसी को जीतना है तो तलवार से नहीं, प्यार से जीतो। क्रोध से नहीं, क्षमा से जीतो। यदि सामने वाला उग्र स्वभावी है, प्रचंड प्रकृति है, यदि वो आग का गोला बनता है तो तुम्हें पानी बन जाना चाहिए, क्योंकि पानी ही आग पर काबू पा सकता है। आग का समाधान जल है और क्रोध का समाधान क्षमा है। क्रोध का जवाब क्रोध से देना वैसा ही है जैसा कि तुम किसी बाजार से गुजर रहे हो और किसी ने तुम्हें क्रोध में कुछ कहा तो उसके प्रत्युत्तर में आपने भी उसे गुस्से में कुछ अपमानित शब्दों का प्रयोग कर दिया तो ये शांत मन का कार्य नहीं है। उसे क्षमा कर प्रेम से उसका उत्तर देना ही उचित होगा। विश्व में जितने धर्म हैं, वे एक स्वर में कहते हैं कि परमात्मा को जिसने भी पाया है, ध्यान से पाया है। भगवान महावीर ने कैवल्य ध्यान से पाया। बुद्ध को बुद्धत्व ध्यान से घटित हुआ। जीजस ने ध्यान में उतरकर सूली को सेज बना लिया। परमात्मा को जिसने भी पाया है, ध्यान से ही पाया है। ध्यान ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। जीवन में यदि कुछ पाना है, कहीं पहुंचना है, आत्मा के आनंद की अनुभूति करनी है, तो 24 से कम एक घंटा ध्यान करना चाहिए। यदि एक घंटा संभव ना हो तो कम से कम एक घड़ी ध्यान जरूर करना चाहिए। और यदि एक घड़ी भी संभव ना हो तो कम से कम एक मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। और यदि ये भी संभव ना हो तो कम से कम ओम ओम इस मंत्र का जाप अवश्य अनिवार्य रूप से करना चाहिए। मन तो मानसरोवर है, उसमें परमात्मा का अमृत भरा है, लेकिन उस अमृत का रसास्वादन ध्यान, सामायिक तथा समाधि के क्षणों में ही संभव है। जीवन में प्रतिदिन कुछ क्षण आत्मचिंतन, परमात्म कीर्तन, स्वाध्याय के लिए हो, ताकि आपाधापी के इस व्यस्तम युग में भी हम अपने से जुड़ सकें और जीवन को निखारने की कला सीख सकें।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया जा रहा था। आइए अब आपको सुनवाते हैं खेती की बातें। इसमें जानकारी दी जाएगी, गुणकारी है सोयाबीन के उत्पाद।
2: सभी किसान भाई बहन नखर डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों ने आज अपन बात करांगा गुणकारी छे सोयाबीन का उत्पाद इना विषय पर। अपना क्षेत्र में सोयाबीन मुख्य फसल छे। पोषक तत्व न सी भरपूर सोयाबीन एक उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य पदार्थ छे। सबसे ज़्यादा एक में प्रोटीन रहे, उका सोया दाना का रूप में उत्तम गुणवत्ता को प्रोटीन। पर समस्या कही रहे कि

0: सोयाबीन छे ओके यदि सीधो खाई लो तो पेट में बहुत नुकसान करज, पचना में बहुत तकलीफ देज, कोई कहे का हजम मन नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उनको प्रसंस्करण करनु बहुत आवश्यक रज। अपन देखी रहे कि सोयाबीन को उपयोग जी घरेलू स्तर पर हुई रोज नहीं ओका में भी नियमित आहार में एको शामिल करनु को समावेश करनु अमा आवश्यक हुई गई, क्योंकि पोषण की समस्या में थोड़ी सी बढ़ी गई ओका में सुधार करने का लेना सोयाबीन का उत्पाद जी छे उनको सेवन आवश्यक छे। सोयाबीन दलहनी न तिलहनी दुई तरह की फसल छे, एकासी दाल न भी बनज न एकासी तेल भी बनज, दुई रूप में को उपयोग हुई रोज। साबुन सोयाबीन का दाणा न को उपयोग आटा का रूप में, दूध का रूप में, दही का रूप में अंकुरित करीना न भी हमारा बहुत सारा भाई बहन को उपयोग करज। सोया आटा का रूप में भी लोग एक पौष्टिक लड्डू बनाई राज, सोया चपाती न बनाई राज, बच्चा न का आहार बनाई राज, पराठा बनाई राज, सब रूप में उपयोग तो होज। पर सोयाबीन का प्रसंस्करण का लेना एक दाणा नख कम से कम 8 से 10 घंटा तक पानी में भिगोई नना धरी नना उको उपयोग करनो बाद में आवश्यक छे, क्योंकि यदि अपुन कच्चा सोयाबीन को उपयोग करो तो फिर पचना में अपुन का परेशानी हो जाएगा। तो प्रसंस्करण करना से सोयाबीन को प्रोटीन जी रज नहीं वो सुपाच्य अवस्था में आई जाए न ये गुणवत्ताओं की अरु बढ़ी जाए। तो 10 घंटा नौका से कभी कभी ज्यादा भी गड़े नन धरी लियो आप तो वो अच्छो उपयोग में आई जाए। बहुत सारा भाई बहन हमारा यही भी करे कि 8 से 10 घंटा तक सोयाबीन का भिगौना का बाद ओका 10-15 मिनट तक उबाले भी लेज, तो ऐसी स्थिति में काई रज कि सोयाबीन का छिलका जी छे वो दाणा से अलग हुई जाए न ओका बाद जी छे ओको उपयोग करनु और आसान हुई जाए, ओका में पाचन अवरोधी जी तत्व छे वो सब हटी जाए। तो ओका बाद जी से सोयाबीन का अलग अलग उत्पाद तैयार करी लेज न ओका अपना भोजन में शामिल करेज। सोयाबीन का उत्पादन का बारे में बात करा तो सबसे पहले तो देखो ओकी दाल छे जी की लोग उपयोग करी रहा है, सोयाबीन का 10 घंटा तक पानी में भिगोई ना उको छिलको हटाई ना साफ दाल निकाल लेज न उख 30 मिनट तक कम से कम उबाड़े ना बाद में उख धूप में सुखाड़ी लेज। एको उपयोग पूरा तरीका से दाल बनावना में नहीं करनू है, हाँ आप अरहर की दाल का साथ या दूसरी दाल का साथ एक मुट्ठी मिलाई ना एक उपयोग करी सको, क्योंकि पूरी तरीका से यदि आप एक उपयोग करोगे तो पेट में समस्या हो सके। तो दूसरी दाल का साथ एक दो मुट्ठी एक ही दाल भी मिलाई ली छोटी छोटी ना उको फायदों भी मिली जाएगा। सोया आटा बनावना की बात करें अपन तो सोया आटा बनावना कर लेना भी सोयाबीन की दाल का पीसी ना उको आटो तैयार कर ले लोग। गेहूं का आटा से ये थोड़ा सो अलग रह पचना में थोड़ो सो भारी रज पर वजन में हल्को रज न हल्का पीला रंग का रज। एक प्रयोग करना का अपन ये समझा कि 10 किलोग्राम यदि अपन गेहूं ले रज तो ओका में 1 किलोग्राम सोयाबीन की दाल मिलाई ना ओका पिसाड़ी सकाज, फिर ओको उपयोग अपन चपाती बनावना में, पूड़ी बनावना में, पराठा न का साथ या दूसरा कोई भी आहार में ओको उपयोग करी सकाज। एक आटा का मिलावना सी चपाती का स्वाद में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, अपन सोचा कि भाई सोयाबीन मिली गई तो स्वाद बदली जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अपन ने ना कम मात्रा में मिलायो नहीं तो परिवर्तन ज्यादा नहीं आता है, पर आहार में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी जाए। एक साथ अपना जी भाई बहन छे वो सोयाबीन का गुणकारी नाश्ता भी उपयोग करी राज, सोयाबीन का दाणा न खरात भर भिगोई ना ओखा दाणा जी निकले आज ओखा मूंग की दाल या चना की दाल की तरह थोड़ा सा सुखाड़ी ना तली लेवज न फिर ओका में थोड़ा सा मसालो मिले ना अच्छो टेस्टी स्वाद बढ़ी जाए असो करी ना ओखा बच्चा नख भी दई सकाज न ओका में कई हरी धनिया मिर्ची या टमाटर प्याज काटी ना भी ओखो मिलाई ना ओको नाश्ता का रूप में भी सेवन करी सकाज। तो कुल मिलाई ना अपन कई समझना की जरूरत है कि सोयाबीन का उत्पाद जी छे वो पौष्टिक छे पर उसको उपयोग ध्यान पूर्वक करनु बहुत आवश्यक छे। आज हमारो किसान भाई बहन नसी योज कहनु छे।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, इसमें जानकारी दी जा रही थी गुणकारी है सोयाबीन के उत्पाद, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग, कलाकार हैं अनूप जलोटा।

और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सुरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थे अनूप जलोटा। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुनिए कार्यक्रम विवरण में। सवेरे 7:20 पर सुनिएगा हमेशा की तरह कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी शिक्षित बेटी समर्थ समाज। प्रस्तुतकर्ता होंगी प्रीति जोशी। 8:30 पर सुनिएगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। मराठी कार्यक्रम होगा सवेरे 9:00। चर्चा होगी जागतिक महासागर दिन और परम पूज्य माताजी स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती पुणे महाराष्ट्र पर चर्चा होगी। साथ ही वार्ता सुनवाएंगे। विषय रहेगा देवी भागवत और मन की चंचलता।

9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग मियां मल्हार। 10:05 से 11 बजे तक सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में अगर हमारे श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमसे फोन पर बात करके अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224, इंदौर का STD कोड 0731। तो फोन करना बिल्कुल मत भूलिए 10:05 से 11 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी युवा साथियों के कार्यक्रम युवावाणी से। आरंभिक चर्चा होगी विश्व महासागर दिवस पर। आज का क्रम के तहत कुछ बातें और कुछ गीत सुनवाए जाएंगे। 5:45 पर फिल्म संगीत सुनिएगा। संध्या 6 बजे सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:30 पर सुगम संगीत के कलाकार होंगे गुलाम अली और उमेश चन्ना। 7:20 पर होगा ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम। आज की बात होगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा। भेंटवार्ता की जाएगी पूनम मिश्रा से। विषय रहेगा मौसमी बीमारियां कारण लक्षण एवं निदान। वार्ता होगी घरेलू टिप्स और घरेलू व्यंजन जैसे क्रम भी होंगे। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। 9:15 पर सुनिएगा चित्रगीत। रात्रि 9:30 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा पब्लिक स्पीक। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। 10:30 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र का गाया राग कोसी कानड़ा सुनवाया जाएगा।

0: तो श्रोताओं, चलते चलते एक बार फिर आपको याद दिला दें कि सवेरे 10:05 से 11 बजे तक आप सुन सकते हैं हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अष्टमः भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोगस्य उपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तस्य इंडोनेशिया देशस्य समकक्षीयेण सुगियोनो इत्यनेन च सभायाः सहाध्यक्षता कृता। भारत इंडोनेशिया देशौ राजनैतिक रक्षा सुरक्षा समुद्रीय व्यापार निवेशः औषधीय स्वास्थ्य सेवाः डिजिटल ऊर्जा संपर्कः अंतरिक्षम शिक्षा दूतावास संस्कृति क्षेत्रम इत्यादीनां विविध क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितानां क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विषयेपि विचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। डॉक्टर जयशंकरः स्वस्य प्रारंभिक भाषणे उक्तवान् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये संयुक्त आयोगः चतुर्णां वर्षाणाम् अन्तरालस्य अनन्तरम् आहूयते। अस्मिन् उपवेशने द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु महती प्रगति अभवत्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः अद्य चण्डीगढ़नगरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघस्य CPA इत्यस्य भारतक्षेत्रस्य त्रिदिवसीय

0: मण्डल द्वितीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं हरियाणा विधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभायाः अध्यक्षः हरविंदर कल्याणः, संपूर्ण देशस्य पञ्चदश विधानमण्डलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः, विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन एनटीए इत्यनेन अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके आयोक्ष्यमाणस्य 26,2000 वर्षस्य नीट यूजी पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्ने द्वितः सायं सपाद पञ्चवादन पर्यन्तं भारतस्य 150+500 नगरेषु 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। एनटीए इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रवेशपत्रं नास्ति, अपितु केवलं अभ्यर्थिनां परीक्षा केन्द्र ज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिक जालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तम सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 37वां राज्यं भविष्यति। राज्ये एबीपीएम जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थं अद्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारश्च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः जेपी नड्डायाः तथा पश्चिम बंगस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ एमओयू इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असमराज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एलपीएमएस इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्ल क्रीडकाः ह्यः मंगोलियायाम् ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्ण पदके द्वे कांस्य पदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएमजेएवाई को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में एबीपीएमजेएवाई योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत

0: कैलाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। एनटीए ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या
2: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
3: और
1: आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है जो पहले 28% था। HS कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
6: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
7: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
8: आकाशवाणी इंदौर।
7: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की तो
1: यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: जल्दी चलो, अरे गाड़ी आ गई है। अरे शादी में चलना है ना?
1: अरे मैं नहीं जाता कहीं शादी में, मैं तो सुन रहा हूँ मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। तुम जाओ शादी में जाना हो तो।

हम हमारे श्रोताओं को याद दिला दें कि आज सवेरे 10:05 से सवेरे 11 तक आप सुनेंगे हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच होटलाइन। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता हमसे जुड़ना चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमें फ़ोन करने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 2710223 और 2710224, इंदौर का एसटीडी कोड 0731। तो फ़ोन करना बिल्कुल मत भूलिए सवेरे 10:05 से सवेरे 11 तक सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। सवेरे के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर बधाई दी। प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भाजपा ने महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पूरह परीक्षा के केंद्रों की सूची जारी की और प्रदेश में आज करीब 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है मॉनसून। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बेटी मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर

0: अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि यह उपलब्धि देश की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है जो देश और मानवता की सेवा करना चाहती हैं। मेजर बराक भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट हैं और लेबनान में यूएन शांति मिशन में तैनात हैं, जहां उन्होंने स्थानीय महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़कर उनकी जिंदगी बदली है। प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने देर रात मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को तीसरा उम्मीदवार घोषित किया है, जो कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन के सामने होंगे। दोनों आज नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा में भाजपा के 164 और कांग्रेस के 63 विधायक हैं। एक सीट जीतने के लिए 58 वोट चाहिए। दो सीटें जीतने के बाद भाजपा के पास करीब 48 वोट बचेंगे, इसलिए तीसरी सीट के लिए उसे 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। इंदौर में कल से 13 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कल उच्चस्तरीय बैठक लेकर सुरक्षा, आवास, यातायात और अतिथि सत्कार की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय वृद्धि जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा के केंद्रों की सूची जारी कर दी है। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित होगी। गौरतलब है कि 3 मई को हुई नीट परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को रद्द कर दी गई थी और CBI इस मामले की जाँच कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर विदिशा मेडिकल कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच शिविर का कल समापन हुआ। उन्होंने कहा कि जांच में आए हर मरीज का रिकॉर्ड तैयार कर आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा,
1: हमारे देश में दूसरी सबसे बड़ी कैंसर की संख्या तो सर्वाइकल कैंसर, और ये भी बहुत गंभीरता से फैलने वाली बीमारी। मैं जानता हूँ कि बहने बेटियां संकोच करती है। यह सर्वाइकल बीमारी किसी और वजह से नहीं बल्कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होती है। और इसे मैं हाथ जोड़कर सभी परिवारों से अपील करता हूं, मीडिया के माध्यम से भी हाथ जोड़ के, कि अपनी 14 साल तक की बेटियों को HPV टीका जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर बैतूल जिले की रत्नामाला ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,
2: मैं अपने समूह की बुककीपर हूँ, जिसका भी मुझे मानदेय मिलता है। पहले मेरे घर छोटी सी किराना दुकान थी, लेकिन समूह से लोन लेकर अब उसमें अधिक सामान रख लिया है और दुकान भी बड़ी हो गई है। समूह से जुड़ने के बाद मेरा जीवन सुखमय हो गया है। किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता है पैसे के लिए। स्वयं की पूर्ति स्वयं के द्वारा ही हो जाती है।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीहोर के बुधनी क्षेत्र में दूधी लकड़ी से बने पारंपरिक खिलौनों को भारत सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना ने राष्ट्रीय पहचान दिला दी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
4: बुधनी की पहचान विशेष रूप से रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौनों हस्तशिल्प उत्पाद के लिए है। कारीगर मुलायम लकड़ी विशेषकर दूधी तथा अन्य स्थानीय लकड़ियों का उपयोग करके खिलौने तैयार करते हैं। इन वस्तुओं को पारंपरिक खराद मशीन पर आकार दिया जाता है और प्राकृतिक रंगों व लाख से आकर्षक रूप दिया जाता है। इससे स्थानीय कारीगरों को विपणन, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है।
5: मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। सरकार की मदद से अब मैं और मेरा परिवार इन लकड़ी के खिलौनों का व्यवसाय कर रहे हैं। सरकार के सहयोग से हमारे खिलौना उत्पाद को एक जिला एक उत्पाद में मान्यता मिली है। आज हमारा यह व्यवसाय हमें आर्थिक सम्बल प्रदान कर रहा है।
6: मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा है। पहले तो पारंपरिक उपकरणों से हम ये खिलौने बनाते थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लकड़ी के खिलौने उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके चलते अब हम नवीनतम उपकरणों का प्रयोग खिलौने बनाने में कर रहे हैं। इससे अब खिलौने आकर्षक और कम समय में तैयार हो रहे हैं।
4: बुधनी के खिलौने पर्यावरण के अनुकूल, इको फ्रेंडली माने जाते हैं क्योंकि इनमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है। यही कारण है कि

0: देश विदेश में इनकी मांग बढ़ रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीहोर से मैं प्रदीप सिंह चौहान।
1: भोपाल के भारत भवन में आयोजित सदानीरा समागम में साइप्रस, फिजी, मैक्सिको, नेपाल, त्रिनिदाद और इक्वाडोर के राजनयिकों ने प्रदेश के जल संरक्षण मॉडल की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान अब जन आंदोलन बन चुका है। प्रदेश में अब तक 2,12,000 से अधिक जल संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं और 3,66,000 तक पहुंचने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि 12 से 18 जून के बीच प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालय पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि और लखपति दीदी सहित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज से 12 जून तक 22वां हबीब रंग आलाप नाट्य महोत्सव आयोजित होगा। ये महोत्सव रंगमंच के शिखर पुरुष हबीब तनवीर की पुण्यतिथि में हर साल मनाया जाता है। प्रदेश में मॉनसून आने से पहले ही जून महीने में कोटे से 65% अधिक बारिश हो चुकी है। भोपाल, आगरमालवा और शाजापुर में 2 इंच, नीमच में 2.5 इंच पानी गिर चुका है। कल मॉनसून महाराष्ट्र पहुंच गया और अब अनुमान है कि प्रदेश में ये 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। आज ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा सहित करीब 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के मझौली में आयोजित गौंड समाज के जनजातीय महासम्मेलन में कल जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आगर मालवा जिले के 20 गांवों में पेयजल संकट से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 20 गांवों में नलकूप खनन की स्वीकृति मिली है। नर्मदापुरम जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 जून को शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर इंदौर में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। दतिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत जिले में योग जागरूकता से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। शाजापुर में कल विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। वहीं कटनी जिले में भी ग्राम पंचायतों में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर युवाओं द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले के करैरा में नवीन एसटीओपी कार्यालय भवन का लोकार्पण समारोह कल संपन्न हुआ। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ई प्रवेश प्रक्रिया के द्वितीय चरण की आवंटन सूची जारी हो गई है। इस चरण में 1,25,917 विद्यार्थियों को विभिन्न महाविद्यालयों में सीट आवंटित की गई है। आवंटित विद्यार्थियों को 7 से 13 जून के बीच प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा सीट निरस्त हो जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: भोपाल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव
2: 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी शिक्षित बेटी समर्थ समाज। प्रस्तुतकर्ता प्रीति जोशी।

बेटियाँ। जी हाँ श्रोताओं, बेटियाँ घर की शान है, माता पिता का अभिमान है, उनसे ही महकता आंगन सारा। बेटियाँ घर की सच्ची रानियाँ हैं। बेटियाँ हमारे घर की खुशी, प्रेम और सम्मान की पहचान होती है। उनकी मुस्कान से घर में खुशियाँ बिखर जाती हैं। अपने संस्कारों, प्रतिभा और मेहनत से वे परिवार का नाम रोशन करती हैं, माता पिता के गौरव को बढ़ाती हैं और अपने स्नेह, त्याग और उपलब्धियों से घर को स्वर्ग जैसा बना देती हैं।

बेटियाँ केवल घर की रौनक ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र प्रगति की मजबूत नींव भी है, इसीलिए उन्हें शिक्षित करना बहुत जरूरी है। शिक्षा उन्हें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और अपने सपनों को साकार करने की शक्ति प्रदान करती है।

0: एक शिक्षित और सशक्त बेटी न केवल अपने परिवार का गौरव बढ़ाती है बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बेटी है तो कल है, बेटी है तो सम्मान है। शिक्षित बेटी ही सशक्त और समर्थ समाज की पहचान है। श्रोताओं, मेरी इन बातों से आप समझ ही गए होंगे कि आज गुड मॉर्निंग इंदौर में बातें होंगी शिक्षित बेटी समर्थ समाज की। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में सबसे पहले शामिल हो रहे हैं एक ऐसे दंपत्ति जो न सिर्फ बेटियों की शिक्षा के लिए अग्रसर है बल्कि समाज में भी कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर। नमस्कार प्रीति जी, मेरा नाम दिनेश शर्मा है।
2: दिनेश जी, ये बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड होने के बाद में हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ एवं कविताएं लिखता हूँ और लेख लिखता हूँ।
2: क्या बात है, आपने कहा है आप साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आज हमारा जो विषय है वो बेटियों के ऊपर है, शिक्षा के ऊपर है उनकी। तो आज के समय में लड़कियों की शिक्षा क्यों आवश्यक है, क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, आज के समय में लड़कियों की शिक्षा इतनी आवश्यक है कि लड़की अपने आप को एक तो आत्मनिर्भर बना लेगी एवं स्वयं के अधिकारों को समझेगी। साथ ही साथ लड़की जब शिक्षित होगी तो सामाजिक उत्थान होगा और समाज में जागृति पैदा होगी और लड़की संस्कारों के साथ साथ एक ऊंची उड़ान भी भरेगी। और यदि बेटियां उड़ान भरेगी तो परिवार भी सक्षम रहेगा और समाज में नई चेतना जागृत

0: होगी। साथ ही साथ बच्चियां कभी कभी अपनी बातें माता पिता से बोल नहीं पाती है, तो जब बच्चियां पढ़ी लिखी होगी तो निश्चित रूप से अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से हर बात साझा करेगी। इससे किसी भी तरह की विपत्ति किसी के ऊपर भी पैदा नहीं होगी। वो बच्चियां अपना जीवन यापन या परिवार के साथ जो सहभागिता होती है वो खुले रूप से परिवार को बताती रहेगी, और ये जीवन की दिनचर्या उन्हें सुखद परिवार के रूप में हमेशा के लिए आवश्यक होगी। इसलिए लड़कियों की शिक्षा बहुत आवश्यक है।
1: बहुत अच्छी बात कही है आपने कि बेटियों को पढ़ना बहुत जरूरी है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
0: मैं आपको प्रीति जी बताना चाहूंगा कि बेटियों को शिक्षित करने के लिए उनको बढ़ावा इसलिए देना चाहिए कि बच्चियां बड़ी होकर अपने आप में सक्षम बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, और जब उसकी शादी भी हो जाए तो परिवार में एक तरफ आर्थिक सहायता भी बनती है, जागरूकता बनती है, और परिवार में जब शिक्षित होगी बच्चियां तो निश्चित से परिवार अपने आप में एक समृद्धशाली परिवार बनेगा और उसका फाउंडेशन भी मजबूत रहेगा। और जब बच्चियां मजबूत होगी तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश सभी का विकास होगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रयास करते रहना चाहिए और उन बच्चियों को उनकी चॉइस के हिसाब से, इच्छा के अनुसार पढ़ाई करने के लिए हमको जोर देना चाहिए ताकि वो मन लगा करके अपने इच्छानुरूप स्थान प्राप्त कर सके और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ की बच्चियां बहुत काबिलियत रखती है, क्योंकि बच्चियों में एक होनहारता में ईश्वर ने बनाया, बच्चियों को नारी शक्ति को बनाया, ऐसा सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है, उनमें शक्ति ज्यादा होती है, हर चीज को सहन भी कर लेती है, पढ़ाई में ऊर्जा भी रखती है और मन लगाकर हर काम करने के लिए तत्पर रहती है। छोटे शहरों के बच्चों को आप देखिए कितनी काबिलियत रखते हैं। तो हम कहते हैं कि लड़कियों की जागरूकता को देखते हुए हमको उनको पढ़ाने के लिए, समाज के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, बच्चों को शिक्षा के लिए हमको आगे कर रहना चाहिए। यह सार्थक प्रयास देश के लिए होगा, परिवार का, समाज का, देश का विकास होगा और बच्चों का उज्ज्वल भविष्य होगा।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है। आपने कहा है कि आप साहित्यकार हैं और लेख भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, तो एक कविता हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा हमें।
0: सुनिएगा, बुलंदियां बेटियों में होती है, बुलंदियां बेटियों में होती है, किनारा नहीं मजेदार होती है, टकरा नहीं परिवार की शान होती है, चांद जैसी शीतल गुलाब जल होती है, बुलंदियां बेटियों में होती है। जिंदगी का किनारा कोई अछूता नहीं रहता, जिंदगी का किनारा कोई अछूता नहीं रहता, घर परिवार को निभाने वाली होती है, मन लचीलापन वो घर की बगिया होती है, मन लचीलापन वो घर की बगिया होती है, तब त्याग की लो में भी वो शीतल सी होती है, वो शीतल सी होती है, बुलंदियां बेटियों में होती है। सुनकर सबकी बातें हमेशा, सुनकर सबकी बातें हमेशा, वो हर पल कोयल सी कुकू करती रहती है, कुकू करती रहती है, उसके मीठेपन बोल के आगे, उसके मीठेपन बोल के आगे सारी दुनिया उसकी होती है, सारी दुनिया उसकी होती है, बुलंदियां बेटियों में होती है। रिश्ते नातों में भी उसकी अहम भूमिका होती है, रिश्ते नातों में भी उसकी अहम भूमिका होती है, रिश्तों की हर भूमिका में उसकी शालीनता होती है, उसकी शालीनता होती है। जिंदगी की कथा सागर में वह हकीकत होती है, जिंदगी की कथा सागर में वह हकीकत होती है, किंतु परंतु की भूमिका में वो मर्यादित रहती है, वो मर्यादित रहती है, बुलंदियां बेटियों में होती है, बुलंदियां बेटियों में होती है।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कविता आपने कही है बेटियों के ऊपर, और वाकई में बेटियां हमारे घर की आन बान शान होती है और उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है ताकि वो सक्षम हो जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए।
2: मैं चंद्रकांता शर्मा, गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग चंद्रकांता जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चंद्रकांता जी ये बताइए आप क्या करती हैं?
2: मैं गवर्नमेंट सर्वेंट ही रिटायर हो चुकी हूँ।
1: बेटियों को सशक्त बनाने के लिए क्या शिक्षा बहुत जरूरी है, क्या बहुत अच्छा माध्यम है वो?
2: हाँ, बेटियों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा बहुत बड़ा माध्यम है। शिक्षा केवल पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती बल्कि बेटियों को अपने अधिकारों की समझ, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भर बनाने की शक्ति भी देती है। एक शिक्षित बेटी अपने परिवार, समाज, देश विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। वो बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सम्मान प्राप्त कर सकती है। मैं तो कहूंगी शिक्षा बेटियों के लिए सशक्तिकरण की सबसे मजबूत नींव है। एक शिक्षित बेटी केवल अपने सपनों को पूरा नहीं करती बल्कि पूरे परिवार समाज को बढ़ावा देने का भी काम करती है। इसलिए कहा जाता है यदि बेटी को शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। मैं यही कहूंगी बेटियों को पंख देने हैं तो उन्हें शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही वो शक्ति है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलती। मैं यही कहना चाहूंगी प्रीति जी कि सभी महिलाओं को अपनी बच्चियों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए और अनपढ़ में ही रहने देना चाहिए। समाज जब शिक्षित होगा, जब एक बेटी शिक्षित होगी तभी अपने अधिकारों का उपयोग कर पाएगी। उसे ज्ञान ही नहीं रहेगा कि क्या करना है, क्या अधिकार है मेरे। शिक्षा इसलिए बहुत जरूरी है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही है आपने
0: जी। प्रीति जी, अभी मेरी धर्मपत्नी से आपने बात की, उसने आपको बेटियों के बारे में जो बताया उसके ऊपर मेरी चार पंक्तियां निकल के आई है कि मुश्किलों में घबराना नहीं बिटिया, मुश्किलों में घबराना नहीं बिटिया, ये अगर तुम्हारा है हमेशा तुम्हारा रहेगा बिटिया, हौसला हमेशा बुलंद रखो बिटिया, हौसला हमेशा बुलंद रखो बिटिया, जिंदगी भर हमारा साथ रहेगा बिटिया, हमारा साथ रहेगा बेटिया। ऐसा यदि माता पिता से बेटियों का आश्वासन मिलता रहेगा तो हौसला बुलंद रहेगा और बच्चियां खुश रहेगी।
1: बहुत अच्छी बात कही है दिनेश जी आपने, और चंद्रकांता जी ने भी बहुत ही अच्छी बातें हमसे की है।
0: बहुत धन्यवाद आपका।
1: अब अंत में आप दोनों की पसंद का एक गीत बताएं जो श्रोताओं के साथ हम आपको सुनवाएं।
0: मुझे गुंजन सक्सेना वाली फिल्म का आसमान की परी वाली गीत सुनना है।
1: बिल्कुल, चलिए रेडियो सेट पर सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये।

0: गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: नमस्कार, मैं रश्मिता शर्मा इंदौर से।
1: रश्मिता जी, ये बताइए क्या करती हैं आप?
0: मैं निजी स्कूल में शिक्षिका हूँ और हिंदी विषय पढ़ाती हूँ।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप हिंदी विषय पढ़ाती हैं। तो कैसा लगता है ये विषय, क्यों सोचा कि ये विषय पढ़ाना चाहिए?
0: हिंदी में शुरू से रुचि रही है, मम्मी भी टीचर रही हैं हमारी, तो शुरू से ऐसा माहौल भी रहा कि शुद्ध हिंदी बोली जाए, अच्छी हिंदी बोली जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी में एमए करके इसी को अपना भविष्य का साधन बनाया जाए।
1: क्या बात है, आपने कहा कि आपकी माँ से आपको प्रेरणा मिली, तो वाकई में जो बेटियां होती हैं उनके लिए माँ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो उनके भविष्य के लिए काफी सारी चीजें उन्हें इतनी प्रेरणा देती हैं और सिखा देती हैं जो हमें भविष्य में काम आती हैं, है ना?
0: जी जी बिल्कुल।
1: रश्मिता जी, आज हमारा जो विषय है वो बेटियों के ऊपर ही है कि बेटियों को शिक्षा देना कहाँ तक जरूरी होता है। क्या आपकी भी बेटी है?
0: जी, मेरी भी एक बिटिया है, पढ़ाई कर रही है, कॉलेज में है।
1: अच्छा, कॉलेज में है, तो विषय उसने कुछ लिया होगा, तो क्या आपने उसे सजेस्ट किया या उसने स्वयं से लिया है, किस तरह का फ्रीडम? जी, यही पूछना चाह रही थी।
0: अच्छा अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका।
1: जी,
0: मैं देखिए, एक तो पहली बात तो मैं शिक्षिका हूँ, तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी भी बच्चे, चाहे वो मेरा ही बच्चा क्यों ना हो, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा दबाव ना हो कि तुम्हें यही सब्जेक्ट लेना है। माता पिता अपनी रुचि ना थोपे उनके ऊपर, तो सबसे अच्छा है। तो मैंने भी, मतलब हम दोनों ने ही, जो उसके माता पिता हैं, दोनों ने उसे पूरी आजादी दी थी, स्वतंत्रता दी थी कि तुम्हें जो पसंद है वही विषय लो और उसमें अपना भविष्य बनाओ, अच्छा करियर बनाओ, और ताकि तुम अपने पैरों पे खड़े होकर अपना भविष्य सुनिश्चित तरीके से अच्छे से जीवन व्यापन कर सको।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आपने ये सोचा कि अपनी बेटी का भविष्य बनाना है और उसे ये प्रेरणा दी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने अनुसार अपनी जिंदगी जिए। इतनी स्वतंत्रता आपने दी है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं बेटियों के लिए।
0: हाँ देखिए, योजनाएं तो हर, मतलब हम कह सकते हैं कि हर राज्य ने बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए कई योजनाएं बनाई है, लेकिन उसमें सबसे जो प्रमुख है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचेगी तो बेटी पढ़ेगी, और बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, और एक नारी जो होती है वो परिवार का केंद्र बिंदु होती है, धुरी होती है। अगर एक नारी शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है, सबसे बड़ी बात। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य जो है, वो मैं यही बताना चाहूंगी कि इसने जो है जेंडर इक्वालिटी को मिटाने के उद्देश्य से इस योजना का प्रादुर्भाव हुआ है और इसलिए आई है, और बोलना चाहिए कि लैंगिक भेदभाव जो होता आ रहा था उसको मिटाया है, और बेटियों को शिक्षित करके एक बुनियादी शिक्षण देकर उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। अब हम देखते हैं कि एक और जो योजना है, सुकन्या योजना है ना, जिसमें मैंने, मेरी बेटी का मैंने भी करवाया है, ये पोस्ट ऑफिस से ओपन होता है इसका खाता, और ये भी जो है बेटियों के भविष्य को, मतलब चार चांद लगाने की योजना है, उसे उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। इस योजना के तहत अगर वो 21 वर्ष की होती है और उसको बाहर जाने की इच्छा है, आप उस समय उस पैसे को निकाल सकते हैं। और मैंने आज ही अपनी बेटी को ये बोला, तो बोली अभी तो मैं 18 इयर्स की ही हूँ। मैंने कहा तुम्हारा इसमें करवा रखा है, तुम्हारी बहुत इच्छा है कि तुम आगे कुछ और अच्छा करो, तो बाहर भी जाना चाहती हो, तो हमने तुम्हारे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का पूरा पूरा लाभ उठाया है, और आगे बढ़ने के लिए हम नहीं चाहते हैं कि कहीं तुम्हें कोई बाधा उपस्थित हो। हम हमेशा ये चाहेंगे कि बेटियां आगे पढ़े, और भी जो बेटियां हमारे परिवार में, हम चाहते हैं कि वो भी खूब आगे जाएं, और देश की सारी बेटियों को आगे जाना चाहिए। मेरा तो यही संदेश है।
1: बहुत अच्छा संदेश है आपका कि हमारे समाज की, हमारी देश की बेटियों को जरूर बहुत आगे तक जाना चाहिए। और वैसे भी आजकल हम देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में बेटियों ने बहुत परचम लहराया है, चाहे पढ़ाई की बात हो, खेल की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो हर जगह कहीं ना कहीं वे ऊंचाइयों पर पहुंच रही हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। चाहे हम ये सोच लें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जिसको हम कहते हैं CBSE, उसने भी उड़ान योजना शुरू करी है बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए कि वो इंजीनियर बने, तकनीकी शिक्षा लें। उसके लिए सरकार ने भी पूरी मदद करी है। ऐसी बालिका समृद्धि योजना भी देख लो आप, इसमें भी बच्चों को जो गरीबी रेखा के नीचे भी हैं, सरकार ने शिक्षा का पूरा प्रबंध किया है, बस हमें उससे लाभान्वित होना चाहिए।
1: आपने बिल्कुल सही कहा कि सभी लोग जो कार्यक्रम सुन रहे हैं वे इन योजनाओं का लाभ लेंगे तो अपनी बेटियों को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। समाज में बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है और सभी अभिभावक अगर समय अनुसार उनकी शिक्षा पर ध्यान देंगे तो वो सक्षम बनेंगी, सशक्त बनेंगी। क्या कहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी आप?
0: हाँ देखिए, जहाँ शिक्षा रहेगी वहाँ हमेशा रोशनी बिल्कुल आएगी। शिक्षित अगर नारी है तो वो 10 लोगों को शिक्षित करेगी और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए अपने आसपास भी वो वैसा वातावरण बनाएगी। तो इसलिए एक बालिका का शिक्षित होना बहुत जरूरी है और समाज को यही संदेश है कि हर बालिका को, हर परिवार की जितनी भी बालिकाएं हैं उन सभी को शिक्षित करने का प्रयास करें और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें विषय लेने की पूरी स्वतंत्रता दी जाए।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब अंत में आपकी पसंद का एक गीत हम जानना चाहेंगे। हाँ। जो आपको बहुत पसंद हो।
0: जी बिल्कुल, फिल्म आई थी कभी कभी, उसका एक गीत है मेरे घर आई एक नन्ही परी, वो गीत मैं सुनना चाहूंगी।
1: वाकई में जो हमारी बेटियां हैं वो नन्ही परियां होती हैं जो हमारे जीवन में आकर रोशनी फैला दे

0: गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर। प्रीति मैडम, मैं डॉक्टर विजय आर चौरे, मैं सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ। मैं होलकर साइंस कॉलेज में पदस्थ रहा हूँ रसायन शास्त्र विषय में, और वहाँ पे फॉरेंसिक विज्ञान विषय में विभागाध्यक्ष भी मैं काफी लंबे समय तक रहा। साहित्य में मेरी रुचि है, मैं लिखता भी हूँ और काफी मेरी कविताएं, आलेख और ये प्रकाशित होते रहते हैं।
0: आपने कहा है कि आप एक शिक्षक रहे हैं, आज हमारा जो विषय है वो है शिक्षित बेटी समर्थ समाज, तो क्या कहेंगे आप, शिक्षित बेटी क्यों जरूरी है?
1: निश्चित रूप से शिक्षित बेटी समर्थ बेटी आज भारत की बहुत ही ज्वलंत विषय में ऐसा मानता हूँ। आपने चुना है, इसको बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि मैं सोचता हूँ कि वर्तमान समय को देखते हुए बेटियों को स्वयं के लिए ही नहीं, परिवार के लिए, समाज के लिए और एक समर्थ और सशक्त भारत के लिए शिक्षित होना मैडम बहुत जरूरी है। और शिक्षित होना ये बताता है कि वे अब चार दीवारी में नहीं है और उससे बाहर निकल चुकी है। बेटे को शिक्षित करने में समाज की सोच निश्चित रूप से बदल रही है और बदली है। हमने एक नारा सुना है मैडम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब देखिए इसमें एक बेटी बचाओ शब्द आता है, मतलब पिछले दिनों बेटी की स्थिति क्या रही होगी कि बचाओ शब्द लिया गया, कहाँ से कैसे बचाया जाए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमें सोचने में विवश करता है कि वास्तव में बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, तो वे अपने स्वयं के लिए, समाज के लिए और एक भारत के लिए उनका शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ मैडम।
0: बहुत सही है आपने कहा है कि अगर समाज को बदलना है, देश को आगे बढ़ना है, तो बेटियों को जरूर शिक्षित होना चाहिए। समाज और देश की आपने बात करी है, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे बेटियों को शिक्षित करने में क्या क्या ऐसी चुनौतियाँ हैं, कुछ प्रकाश डालें आप।
1: चुनौतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन यदि अपन देखें तो एक शहर के बजाय ग्रामीण क्षेत्र की जो बेटियां हैं, मैं सोचता हूँ वे बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करती हैं। गांव में आज भी प्राथमिक माध्यमिक शिक्षण के बाद में लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देती हैं, तो कई बार उनको ये माना जाता है लड़कियां तो क्या है, पराया धन है, ससुराल ही तो उनको जाना है, क्या करोगी आगे पढ़ के, तो उनकी सारी इच्छाएं वहां पे खत्म हो जाती हैं। कई परिवार पढ़ाना चाहते हैं परंतु सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, शिक्षण संस्थाएं भी बहुत दूर दूर हो जाती हैं और शिक्षा पे होने वाला खर्च भी हम देख रहे हैं वर्तमान में बहुत ज्यादा है, तो कई परिवार के लिए ये एक चुनौती बन गई है। तो चुनौतियां तो बहुत हैं, पर शासन ने इसकी व्यवस्था भी करी है और लड़कियों के लिए विशेष रूप से उन व्यवस्थाओं का लाभ उठाया जाए तो चुनौतियां अपने आप दूर हो जाएंगी।
0: बहुत अच्छी बात कही है आपने विजय जी। शिक्षा के माध्यम से बेटियां आत्मनिर्भर कैसे बन सकती हैं?
1: शिक्षा तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनाती है। शिक्षा जैसे ही किसी ने ली, एक आत्मविश्वास तो निश्चित रूप से आता ही आता है। शिक्षित हो जाएंगी तो निश्चित रूप से अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, खुद को कुछ साबित करेंगी, और आत्मविश्वास आया कि निर्णय लेने की क्षमता अपने आप आ जाती है। तो अपने शादी के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में निश्चित रूप से फैसले लेने की उसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। यदि वो विवाह उसका हो जाता है तो अपने बच्चों के बारे में, अपने आगे के परिवार के बारे में वो बहुत कुछ अच्छा सोच सकती है, अच्छा कर सकती है, बेहतर कर सकती है। और नई चीज सामने आती है उसके अधिकार, उसको ये भी मालूम हो जाएगा गलत क्या है, कहां मेरे को बोलना है, कहां मेरे को आवाज उठानी है, कहां मुझे सम्मान के साथ कैसे जीना चाहिए, उसको समझ में आ जाएगा। और संकट के समय यदि शिक्षित ही है

0: वो तो अपने परिवार को कैसे संभाल के रखा जाए उसका सहारा भी बन सकती है। तो मेरा यह कहना है कि यदि कलम पकड़ने वाली बेटी जो होगी वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी, उसको कलम पकड़ने दो, आगे बढ़ने दो और उसको आत्मनिर्भर बनने दो।
1: क्या आपको लगता है कि आज बेटियां हर क्षेत्र में लड़कों के समान अवसर प्राप्त कर रही हैं?
0: समान अवसर उनको मिले हैं, हर क्षेत्र में लड़कों के समान उनको बराबर अवसर दिए गए हैं, मिल भी रहे हैं और बेटियों को पंख भी मिल गए हैं, आसमान भी खुला हुआ है। बस समान अवसरों का वे लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। पेपर में पढ़ते रहते हैं लड़कियों ने सफलता प्राप्त करी, लड़कों से आगे निकल गई, तो निश्चित रूप से अवसर बराबर मिले हैं मैडम और लड़कियां आगे आ भी रही हैं।
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपके विचार जानकर। अब अंत में हम आपसे आपकी पसंद का एक गीत जानना चाहेंगे जो इस खास मौके पर आप सुनना चाहें।
0: एक राजी फिल्म में मैडम आई थी
1: जी,
0: उसका गाना था एक पिताजी और बेटी के अटूट रिश्ते का, प्यार का, दिलबरो सॉन्ग था। तो यदि आप वो सुनवा सके तो बहुत अच्छा।

बेटियां हैं देश की पहचान, इनसे बढ़ता राष्ट्र का मान, सपनों को जो देती है उड़ान, बेटियां हैं भारत का अभिमान।

श्रोताओं, जब बेटियां आगे बढ़ती हैं, तो परिवार, समाज और राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। बेटियों को शिक्षा, सम्मान और समान अवसर देना हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि शिक्षित और सशक्त बेटियां ही उज्जवल समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण करती हैं।

आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। अब अनुमति दें प्रीति जोशी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में चर्चा हुई शिक्षित बेटी समर्थ समाज। प्रस्तुतकर्ता थी प्रीति जोशी। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे। उसके बाद 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगी। समाचारों के लिए कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
2: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
6: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
7: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
6: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
8: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
6: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
9: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इजराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला न करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इजराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इजराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना

0: पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रूपये की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को विजया जैन का नमस्कार। श्रोताओं, आज 8 जून है और आज का दिन कई मायनों में खास है। आज विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे है और साथ ही विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है। और इसी के साथ आज हिंदी सिनेमा की बहुत ही दिग्गज और वर्सेटाइल अभिनेत्रियाँ डिम्पल कपाड़िया और शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन भी है। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम इन सभी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के बारे में। दोस्तों, ये दिवस प्रतिवर्ष आज ही के दिन 8 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है ब्रेन ट्यूमर की बीमारी और उसके लक्षणों से बचाव करवाना और मरीजों को देखभाल को लेकर वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना। तो इस दिन बहुत सारे लोग इस बीमारी से बचे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इसी उद्देश्य के साथ ये दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इसी के साथ आज का दिन वर्ल्ड ओशियन डे यानी विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासागरों के महत्व और उनसे मिलने वाले संसाधनों, पर्यावरण संतुलन और समुद्री प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित किया गया था। श्रोताओं, आज विश्व में पानी की बढ़ती समस्या और पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर इन दिनों को मनाया जाता है और हमें लगता है कि इस दिन का विशेष रूप से महत्व है। हमें इन दिनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

और पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए, जल की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जल है तो जीवन है। आइए सुनवाते हैं इसी पर केंद्रित ये प्यारा सा गीत जो आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है।

0: श्रोताओं, आज बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया का जन्मदिन है। डिंपल कपाड़िया ने बहुत ही कम उम्र में स्टारडम हासिल किया था। 8 जून को एक गुजराती परिवार में जन्मी डिंपल का फिल्मी सफ़र बहुत ही शानदार रहा। मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें राज कपूर की फिल्म बॉबी से लीड रोल मिला था। साल 1973 में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनकी मासूमियत, उनकी खूबसूरती और अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। पहली फिल्म में उन्हें जबरदस्त सफलता मिली, जिसके लिए कई एक्ट्रेस सालों तक मेहनत करती है। राज कपूर की बॉबी की रिलीज के पहले ही डिंपल ने हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर ली थी। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी और परिवार को समय देने का फैसला किया। यह वक्त उनके करियर के सबसे सुनहरे दौर में जब वे थी, लेकिन उन्होंने अपने स्टारडम से ज़्यादा अपने वैवाहिक जीवन को अहमियत दी। डिंपल कपाड़िया के बारे में और बातचीत करेंगे, पहले सुनते हैं बॉबी फिल्म का ये खूबसूरत गीत।
1: कोई अंदर ना

आ गया। साल 1993 में आई फिल्म रुदाली उनके करियर के लिए मील का पत्थर और एक अहम पड़ाव साबित हुई। इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। समय के साथ डिंपल ने खुद को सिर्फ लीड हीरोइन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि चरित्र भूमिकाओं में भी अपनी अलग पहचान बनाई। लक बाय चांस, दबंग, पटियाला हाउस और कॉकटेल जैसी फिल्मों में उन्होंने ये साबित कर दिया कि बेहतरीन एक्टिंग की कोई उम्र नहीं होती। आज भी डिंपल कपाड़िया हिंदी सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती है जिन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम बनाया और हर दौर में दर्शकों का प्यार हासिल किया। अपनी एक्टिंग का हुनर आजमाते हुए आज भी वो मेकर्स की और दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है।

श्रोताओं, आज हिंदी सिनेमा की एक और प्रसिद्ध अभिनेत्री, मॉडल और उद्यमी शिल्पा शेट्टी का जन्मदिन है। आपका जन्म आज ही के दिन

बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। आप अपनी फिटनेस, योग और ग्लैमरस व्यक्तित्व के लिए जानी जाती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपने करियर में उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है और अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। 90s के दशक में शिल्पा हिंदी सिनेमा की एक टॉप एक्ट्रेसेस में से एक रही है। दरअसल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब शिल्पा अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगी थी, उसी दौरान एक फैशन शो में हिस्सा लेने का मौका मिला और एक फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीरें खींची। यही तस्वीरें उनके लिए मॉडलिंग की दुनिया का दरवाज़ा खोल गई। मॉडलिंग में सफलता मिलने के बाद उन्हें फिल्मों में ऑफर मिलने लगे। शिल्पा ने 1993 में फिल्म बाजीगर से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान और काजोल थे। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और शिल्पा की भी खूब चर्चा हुई। 90 के दशक में उन्होंने मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, छोटे सरकार, आओ प्यार करें, हथकड़ी, औजार और परदेसी बाबू जैसी चर्चित फिल्मों का हिस्सा रही और दर्शकों के बीच लोकप्रिय होती रही। आइए आपको सुनवाते हैं बाजीगर फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: बुलबुल की तक गया।
5: क्या हुआ?
4: नया किडबैग चाहिए।
5: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किडबैग।
6: RBI कहता है
7: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: 14 साल 2000 में आई शिल्पा शेट्टी की फिल्म धड़कन ने उनके करियर को एक नई दिशा दी। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया और एक बार फिर वो चर्चा में आ चुकी थी। इसके बाद उन्होंने रिश्ते, फिर मिलेंगे, 10 और लाइफ इन अ मेट्रो जैसी फिल्मों में काम किया और खासकर फिर मिलेंगे जैसी फिल्म में उन्होंने HIV पीड़ित महिला के किरदार को निभाकर

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का फिल्म संगीत आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं मराठी कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे मराठी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही देर में हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं पंडित भीमसेन जोशी का गायन, राग मियां मल्हार।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का गायन राग मियां मल्हार।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती

0: सरस्वती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि नौवें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, संदेश के पूर्व आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगी, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम आईना, भोपाल से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। यह आकाशवाणी भोपाल है, सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंडला जिले की चिट्ठी। आलेख शशांक चौबे, वाचन स्वर दीपा सिंह। मवई विकासखंड के दाढ़ी गांव में आयोजित रात्रि चौपाल और रात्रि विश्राम कार्यक्रम में कलेक्टर राहुल नामदेव, एसपी राजेश रघुवंशी और अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। कान्हा टाइगर रिजर्व के इको सेंटर खटिया में वन्यजीव निगरानी को वैज्ञानिक बनाने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मंडला, बालाघाट और डिंडौरी सहित 7 वन मंडलों के 70 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। प्रतिभागियों को एमएस ट्राइब मोबाइल ऐप के माध्यम से वन्यजीव निगरानी, गश्त और डेटा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही केनाइन डिस्टेम्पर वायरस की रोकथाम संबंधी जानकारी भी दी गई। वहीं दूसरी तरफ कान्हा टाइगर रिजर्व में सीडीवी संक्रमण से 6 भागों की मौत के बाद प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। संक्रमण रोकने के लिए मुखी क्षेत्र में लार्ज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में वायरस के प्रसार और बचाव के उपायों पर चर्चा हुई। लार्ज संचालकों ने आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन अभियान में सहयोग का आश्वासन दिया। इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व में 22 से 24 मई तक ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना की गई। कोर बफर वनमंडलों और पेन अभयारण्य के 13 परिक्षेत्रों में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण किया गया। पहले दिन 306, दूसरे दिन 333 और तीसरे दिन 263 गिद्ध दर्ज किए गए। सर्वेक्षण में भारतीय गिद्ध, सफेद पीठ वाले गिद्ध और राज गिद्ध की पहचान हुई। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत मंडला पुलिस ने 1 से 6 जून तक 6 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। इसमें पुलिस कर्मियों को भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और यातायात नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ DIG विनीत जैन ने किया। कार्यक्रम में व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की जानकारी दी गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर जन शिक्षण संस्थान मंडला ने मां नर्मदा घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। अधिकारियों, प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों ने घाट की सफाई कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, पर्यावरण विशेषज्ञ राजेश क्षत्रिय और निदेशक अखिलेश पांडे ने जल संरक्षण और जन भागीदारी पर जोर दिया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में 25 से 31 मई तक नो टोबैको सप्ताह मनाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम बताए। जिला नोडल अधिकारी डॉ. रानी महारावी ने तंबाकू से होने वाली बीमारियों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। जेसोबा संस्था ने गोंडी पब्लिक ट्रस्ट भवन में आयोजित समारोह में हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया। विद्यालय के टॉपर्स और प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिए गए। विश्व साइकिल दिवस पर 148वीं वाहनी CRPF ने मंडला साइकिल क्लब के सहयोग से साइकिल रैली निकाली। कमांडेंट विक्रांत सारंग पाणी के निर्देशन में आयोजित रैली का उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। रैली में CRPF जवानों, स्कूली बच्चों, स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। रामनगर में आयोजित 2 दिवसीय आदि उत्सव में जनजातीय संस्कृति, इतिहास और गोंडवाना साम्राज्य की विरासत को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। लोक नृत्य, संगीत प्रदर्शनी और संगोष्ठियां कार्यक्रम का आकर्षण का केंद्र रहीं। चुटका परमाणु परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास

आवास गौंछी माल स्थित आरएनआर कॉलोनी में शुरू हो गया है। मंत्री संपतिया उइके ने परिवारों का गृह प्रवेश कराकर प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। प्रभावित 330 परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त नया आवास दिए जा रहे हैं। साथ ही पशुपालन और डेयरी व्यवसाय के माध्यम से रोजगार बढ़ाने की पहल भी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारियों के तहत महिष्मती घाट पर विशेष योग अभ्यास सत्र आयोजित किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे सहित अन्य अधिकारियों ने योगाभ्यास किया और औषधीय पौधे लगाए। आयुष विभाग द्वारा 1 जून से योग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह अभ्यास सत्र 21 जून तक प्रतिदिन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम एमपी सेडमैप और परम फाउंडेशन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग की विधवा परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं के लिए केयर थेरेपिस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण आईटीआई उत्कृष्टता केंद्र बिछिया में दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार और प्लेसमेंट सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। नगर पालिका परिषद मंडला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र हितग्राही ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत घर बनाने, खरीदने और ऋण पर ब्याज अनुदान जैसी सुविधाएं दी जाएंगी और अधिक जानकारी तथा मार्गदर्शन के लिए हितग्राही नगर पालिका की प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा से संपर्क कर सकते हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे मंडला जिले की चिट्ठी। हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को विजया जैन का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, हम बिल्कुल तैयार हैं आपके फोन कॉल्स उठाने के लिए और आपकी पसंद के गीत आपको सुनवाने के लिए। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत की जाए उससे पहले एक बार फिर आपको नंबर बता देते हैं। हमारे नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर और इंदौर के बाहर के श्रोता अगर हमसे जुड़ना चाहें तो STD कोड 0731 लगाकर हमसे जुड़ सकते हैं। और एक बात और हम हमारे सभी श्रोताओं को बता दें कि आकाशवाणी इंदौर अब आप मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। साथ ही गूगल पर अगर आप आकाशवाणी इंदौर लाइव सर्च करते हैं तब भी आप हमारे प्रसारण सुन सकते हैं। तो चलिए, आज का MH हॉटलाइन लेकर हम हाजिर हो चुके हैं और देखते हैं कि हमारे पहले श्रोता कौन हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: लोकेंद्र वर्मा जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: गाना मैडम ये थोड़ा पुराना है, मतलब फिल्म का नाम है कसौटी।
0: कसौटी फिल्म का गीत आप सुनेंगे, कौन सा गीत
1: है? हम बोलेगा तो बोलता है, एक मेम साहब है साथ में सांप भी है।
0: एक मिनट, हम आपका गाना सर्च कर रहे हैं। हम बोलेगा तो बिल्कुल बहुत अच्छा गीत है, मेरे ख्याल से ये महमूद जी पर फिल्माया हुआ गीत है।
1: प्राण जी पर,
0: अच्छा प्राण जी पर फिल्माया हुआ गीत है। आपने देखी ये फिल्म? बहुत पुरानी फिल्म है एक्चुअली।
1: हाँ, पुरानी फिल्म है, देखी तो नहीं है, पर ये गाना बहुत अच्छा लगता है।
0: गाना बहुत अच्छा लगता है।
1: और 90 वर्ष आज आकाशवाणी के 8 जून को हम 90 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं मैडम।
0: जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आकाशवाणी इतनी ही मतलब विविधताओं के साथ दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंच रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और आप हमारे बहुत नियमित श्रोता हैं। तो जी, अभी गर्मी का मौसम थोड़ा कम हो चुका है तो कैसा लग रहा है आपको?
1: मैडम जी, थोड़ा एक आध दिन पहले अभी थोड़ी हल्की बारिश हुई थी, उसके बाद में अभी मौसम साफ है, थोड़ा गर्मी से थोड़ी राहत मिली है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अच्छा लग रहा है। पर ये गर्मी इतनी ज्यादा क्यों पड़ रही है, इसके कारण भी खोजना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है।
0: बिल्कुल, आपको पता है कि नहीं, पर आज मैं आप सभी को, हमारे सभी श्रोताओं को और आपको बताना चाहूंगी कि आज विश्व महासागर दिवस है, है ना, वर्ल्ड ओशियन डे। और इस दिन का मतलब भी यही है कि हम पर्यावरण के प्रति सावचेत हो जाएं, क्योंकि इन दिनों जितना भी गर्मी बढ़ रही है, पानी की समस्या बढ़ रही है, वो यकीनन पर्यावरण की जो प्रदूषण हो रहा है या हमारे पेड़ों की कटाई बढ़ रही है उसकी वजह से हो रही है। तो हम सबको अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल
1: बिल्कुल, और हमें ध्यान भी रखना है
0: जी।
1: और किसान भाई भी है जो इसमें साथ में सहयोग करेंगे
0: जी, जी।
1: सभी सहयोग करेंगे
0: जी,
1: क्योंकि किसान भाइयों के पास में बहुत ज्यादा जगह रहती है, मतलब
0: जी जी
1: खेत रहते हैं बहुत बड़े बड़े
0: जी जी जी। नहीं, हम भी एक आम व्यक्ति की तरह, देखिए हम किसी एक पर निर्भर नहीं हो सकते, हम भी एक आम व्यक्ति की तरह मदद कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए। आसपास छोटे छोटे पेड़ हम लगा सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। अगर हर व्यक्ति जी मैं जी एकदम हर व्यक्ति अगर डिसाइड कर ले कि एक एक पेड़ उसे लगाना है तो ये समस्या ही पैदा नहीं होगी।
1: जी बिल्कुल मैडम।
0: चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका गीत भी हमें मिल चुका है। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत और हमारे सभी श्रोताओं तक पहुँचाते हैं।
1: 90 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो। हाँ जी,
1: जी
0: कौन बोल रहे
1: नमस्कार,
0: हैं? नमस्कार, कौन बात कर रही
1: मैं
0: हैं?
1: रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: रानू जी देवास से बात कर रही है। कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: मूवी का नाम है वो लम्हे और गाने के बोल हैं क्या मुझे प्यार है।
0: बड़ा प्यारा गीत है। ये फिल्म देखी थी आपने?
1: हाँ, और बहुत अच्छी मूवी है।
0: अच्छा, मतलब फिल्में देखने
1: स्टोरी
0: का शौक रखती हैं आप।
1: हाँ, एक कॉमेडी और थोड़ी सी रोमांटिक मूवी मुझे बहुत ज्यादा
0: क्या बात
1: पसंद
0: है। अगर मैं कॉमेडी
1: है।
0: मूवी पूछूं आपकी फेवरेट, तो कौन सी मूवी का नाम बताएंगी?
1: मुझे हकीना
0: क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बड़ी अच्छी पसंद है आपकी और बड़ी नियमित श्रोता भी हैं आप हमारी। तो आइए, आपके
1: जी
0: पसंद का
1: बिल्कुल।
0: गीत सुनवाते हैं आपको, है ना?
1: ओके, नमस्कार।
0: ओके, धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हेलो हेलो, एमएच हॉटलाइन
5: जी, विजय जी को नमस्कार।
4: नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं?
5: जी, मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
4: अच्छा, महोबा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आप। कौन सा गीत सुनेंगे आज?
5: ये फिल्म का नाम रहेगा मेहरवान।
4: ओके, और गाने के बोल कौन से हैं?
5: अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते।
4: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत है। क्या करते हैं आप?
5: जी, मैं किराने की दुकान किए हूँ मैम।
4: अच्छा, किराने की दुकान है, तो कितनी बजे खोलते हैं और कितनी बजे बंद होती है आपकी दुकान?
5: जी, सुबह 6 बजे से रात के 9-9:30 तक।
4: अच्छा अच्छा, पूरा दिन पैक रहता है
5: जी।
4: और आकाशवाणी इंदौर सुनते हैं?
5: जी, जहाँ से भी फोन इन प्रोग्राम आते हैं लाइव, वही सुनते हैं।
4: अच्छा, सारे लाइव फोन इन प्रोग्राम सुनते हैं और सब जगह फोन भी करते हैं?
5: जी,
4: सब जगह फोन लगता है आपका?
5: जी, भोपाल में लगता था, इंदौर में लगने लगा।
4: अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए, बिल्कुल आपकी पसंद का गीत हम सर्च कर चुके हैं।
5: लखनऊ से भी जुड़ा रहा हूँ मैं।
4: जी जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल आकाशवाणी सुनते रहिए और अपनी आपकी पसंद की गीत को भी अब हम पूरा करते हैं। तो फोन करने के लिए धन्यवाद। लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
5: जी, आपका दिन शुभ हो।
4: जी।

0: तो आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो हेलो एम एच होटलाइन।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग एम एच होटलाइन में आपका अभिनंदन। कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? मैं संजीपाल गोयल दिल्ली से।
0: अच्छा गोयल जी दिल्ली से बात कर रहे हैं। कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: मैम फिल्म यादें से है, समझते श्याम है।
0: अच्छा यादें फिल्म का गीत है। क्या करते हैं आप दिल्ली में?
1: मैम दिल्ली में काम करते हैं कंपनी में, अभी बस काम पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे रास्ते में हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो ट्राई किया तो बस फोन भी लग गए।
0: क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने ट्राई किया और फोन लग गया है। बाकी हमारे बहुत सारे श्रोता हमें निरंतर कोशिश करते हैं पर कई बार उनका फोन नहीं लग पाता है। और बहुत अच्छा गीत भी आपने चूज किया है। किस तरह का काम करते हैं आप?
1: मैं कंपनी में काम है जी, मैं अपना अकाउंट का।
0: अच्छा अकाउंट्स का काम करते हैं। पहली बार फोन किया है आपने हमें?
1: नहीं मैम पहले कर।
0: अच्छा पहले भी कर चुके, शायद मुझसे पहली बार आपकी बात हो रही है।
1: जी जी जी।
0: ठीक है ठीक है ठीक है। तो अकाउंट्स का काम करते हैं। और क्या टाइमिंग रहते हैं आपके ऑफिस के?
1: मैं सुबह 10 से 6 बजे तक का काम
0: है। अच्छा और दिल्ली में ही रहना है आपका?
1: नहीं मैम हरियाणा से आते हैं।
0: अच्छा हरियाणा से आते हैं,
1: ट्रेन से डेली अप डाउन करते हैं।
0: अच्छा डेली अप डाउन करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत करते हैं आप। चलिए आपकी पसंद का गीत मिल चुका है तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, एम एच हॉटलाइन।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, धीरज कोठारी बोल रहा हूँ,
0: धीरज जी
1: इंदौर
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: से बोल रहा हूँ,
0: इंदौर में कहाँ रहते हैं आप?
1: नंदानगर में।
0: ओके, धीरज जी पहली बार शायद फोन लगाया है आपने।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: जी, कौन
1: हाँ,
0: सा गीत सुनेंगे
1: लगाया
0: आज?
1: तो कई बार पर आपका लगता नहीं है,
0: अच्छा
1: बिजी
0: अच्छा
1: होता
0: अच्छा
1: है।
0: हाँ, एक्चुअली हमारा प्रोग्राम बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है और इसमें
1: हाँ
0: बहुत सारे श्रोता एक साथ निरंतर लगाने का
1: जी,
0: प्रयास करते हैं, तो कई बार कई श्रोताओं का फोन लग जाता है और कई बार कई श्रोताओं का फोन नहीं लग पाता है। पर चलिए, आप लकी है कि आज आपका फोन लगा है। चलिए बताइए, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: ओ मेरे दिल के चैन, जी
0: ओ मेरे दिल के चैन, किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत है।
1: जी बिल्कुल, किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत
0: पुराने
1: है।
0: गीतों में दिलचस्पी रखते हैं मतलब आप?
1: हाँ, किशोर कुमार के ज्यादा पसंद है, बाकी और भी मतलब वही मोहम्मद रफी, मुकेश, इनके
0: जी
1: अच्छे
0: जी
1: लगते हैं
0: जी
1: लता मंगेशकर।
0: एक्चुअली ये सारे गायक ऐसे थे कि जिनके गीत कभी भी सुने जाए दिल को बहुत अच्छे लगते हैं। धीरज जी, क्या
1: बिल्कुल
0: करते
1: बिल्कुल,
0: हैं आप?
1: मैं सिविल इंजीनियर हूँ। ठीक
0: अच्छा, सिविल इंजीनियर है,
1: है,
0: तो जॉब में है कि बिजनेस में है?
1: पहले जॉब में था पर
0: अच्छा
1: काफी, अभी खुद का बिजनेस है।
0: अच्छा खुद का बिजनेस है।
1: जी,
0: किस तरह का बिजनेस करते हैं आप?
1: कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन से
0: अच्छा,
1: रिलेटेड,
0: कंस्ट्रक्शन से
1: रियल
0: रिलेटेड,
1: स्टेट।
0: लोगों के
1: जी,
0: घर बनाते हैं और उनको सजाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल। चलिए, आपसे बात
1: जी
0: करके बहुत अच्छा लगा और आपकी पसंद का गीत हमारे रेडियो सेट पर मिल चुका है, तो आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी धन्यवाद,
0: फोन करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए ये गीत।
1: आपसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी मुख्य आवाज सुनकर बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद धीरज जी। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: इस संदेश के बाद आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, हेलो।
5: हाँ मैडम।
4: हाँ जी, नमस्कार सर।
5: अभी आपसे मेरी बात इतनी में लगा था ना, उसका मैंने बताया।
4: हाँ हाँ, कौन सा गीत सुनेंगे आप बताइए, बिल्कुल गीत बताइए।
5: गाने के बोले जब जब तू मेरे सामने आए करके है।
4: कौन सी फिल्म बताई थी आपने?
5: नाम तेरे कितने नाम।
4: ओके, कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना परिचय दें।
5: मैडम मैं बात कर रहा हूँ आपसे डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ तहसील ब्यावरा गांव खजुरिया मध्य प्रदेश से, और नाम है दशरथ डांगी।
4: अच्छा, दशरथ डांगी जी। ओके, तो क्या काम करते हैं दशरथ जी आप?
5: कुछ नहीं मैडम, मैं तो आपको देख नहीं सकता, मैं तो ब्लाइंड हूँ।
4: अच्छा अच्छा अच्छा,
5: सुन देता हूँ अभी।
4: ओके,
5: आज आपने सूचना दी थी तो मैंने अलग से सुना और याद आ गया।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपनी पसंद का फरमाइश की है तो बिल्कुल आपकी पसंद का गीत पहुंचाते हैं आप तक, है ना? सुनिए, कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार नमस्कार सर, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बाग जिला धार अनोखी सिंह।
0: अच्छा, बाग जिला धार से अनोखी सिंह जी बात कर रहे हैं। अनोखी सिंह जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: बिन आपके जिए तो कैसे जिए सर जी।
0: जिए तो जिए कैसे बिन आपके
1: हाँ, और क्या है सर जी, ये
0: जी।
1: खर्चा
0: बस
1: भी बढ़ रहा है और कर्जा भी बढ़ रहा,
0: जी, जीवन
1: तो
0: में
1: कैसे
0: दोनों ही कम
1: जिएंगे।
0: होने चाहिए, खर्चा भी कम करना चाहिए और कर्जा भी कम
1: नहीं
0: करना
1: नहीं
0: चाहिए।
1: बढ़ रहा सर जी, बढ़ रहा, डेली बढ़ रहा, खर्चा तो डेली बढ़ रहा है सर जी।
0: जी
1: देखो
0: जी जी जी
1: कितने भाव बढ़ गए अभी एसी 15 दिन में।
0: सही बात है, लेकिन क्या करें सर, देखिए जरूरत और अपनी जरूरतों को थोड़ा सीमित करना चाहिए और कमाई के साधन सोचने चाहिए, है ना? काम
1: देखो ये तो सिर्फ वही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी की ये है कि छोटे आदमी को कुचल के मार दिया जाए।
0: नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए
1: नहीं,
0: देखिए,
1: ऐसा
0: हम तो
1: नहीं
0: समानता
1: देखो।
0: की बात करते हैं। बहरहाल आपने गीत बहुत अच्छा चूज किया। आप तो ये बताइए, रेडियो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं?
1: रेडियो तो मेरी पहचान है सर जी, मेरे
0: अच्छा,
1: नगर
0: रेडियो
1: की,
0: आपकी पहचान है।
1: क्षेत्र
0: कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आकाशवाणी इंदौर के?
1: की। हम सुबह 6 बजे से चालू हो जाते हैं, भक्ति संगीत सुनते हैं सर जी।
0: अच्छा,
1: उसके
0: जी।
1: बाद 9 बजे हम भजन सुनते हैं, उसके बाद बच्चों का कार्यक्रम सुनते हैं हम।
0: बहुत अच्छी बात है। और काम क्या करते हैं आप?
1: सर मैं तो बेरोजगार मजदूर पागल हूँ सर जी, क्या कर सकता हूँ।
0: ऐसा तो नहीं है, देखिए दुनिया में सबको ईश्वर ने बहुत सारी विशेषताएं दी है और अपनी विशेषताओं का उपयोग करके काम करना चाहिए। चलिए अनोखे सिंह जी, आपने बहुत अच्छा गीत चूज किया है और आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचाते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, और हमारे जो श्रोता अभी भी हमसे फोन पे बात करना चाहते हैं, हम उनके लिए एक बार फिर अपने नंबर बता देते हैं। हमारे नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731 लगाना बिल्कुल ना भूलें, और 11 बजे तक हम एमएच हॉटलाइन में आपके गीत सुनवाते रहेंगे। तो देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: जी मैं जोधपुर किशनपुर से आलम दिलकश बोल रहा हूँ।
0: अच्छा आलम दिलकश जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: दीदी रखवाला फिल्म का गीत है, लता दीदी की आवाज में, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया।
0: अच्छा
1: ये बहुत गीत अच्छा सुना जी।
0: ये फिल्म देखी थी आपने?
1: हाँ बहुत पहले देखा था। अच्छा, याद अच्छा। नहीं, धर्मिंदर जी हैं और राजेंद्र कुमार हैं, ये सब हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हैं जतुका जी आप?
1: जी वैसे तो मैं दिल्ली से अभी बात कर रहा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ पूरे परिवार के साथ।
0: अच्छा, दिल्ली
1: का रहने वाला हूँ, दरभंगा जिला का।
0: अच्छा दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। दरभंगा की कोई खास बात है? दरभंगा की कोई खास बात है, कोई खास बात बताएं दरभंगा की।
1: वो मधुबनी जिला जो है सट्टा, वो पहले दरभंगा ही में था तो वो कट करके अलग हो गया।
0: अच्छा।
1: तो वहाँ की वो कलाकारी सब बहुत बेहतरीन वहाँ होती है।
0: अच्छा।
1: कलाकारी वगैरह।
0: अच्छा तो आप क्या काम करते हैं वहाँ पर दिल्ली में, क्या काम करते हैं आप?
1: प्राइवेट नौकरी करते हैं दीदी।
0: अच्छा प्राइवेट नौकरी करते हैं, ओके। और कितने कौन कौन है आपके घर में?
1: हमारे घर में बेटा है रिजवान राही।
0: अच्छा अच्छा।
1: और इमरान राजा।
0: अच्छा
1: बेटी
0: अच्छा,
1: है चांदनी नाथ, वाइफ का नाम है सवाना।
0: जी जी जी जी बिल्कुल, सब मिलकर रेडियो भी सुनते हैं और काम भी करते हैं।
1: जी दीदी
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी पसंद का गीत भी हमें मिल चुका है, तो सुनवा दें आपकी पसंद का गीत।
1: बिल्कुल दीदी,
0: चलिए
1: धन्यवाद आपको, शुक्रिया आपको।
0: शुक्रिया, धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: हाँ दीदी, नमस्ते।
0: नमस्कार नमस्कार। कौन श्रोता हमारे बात कर रहे हैं?
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद साहू जी, राजेंद्र नगर गंज वासुदा से।
0: क्या बात है भागचंद साहू जी, हमेशा आपका फोन लगता है और आपकी पसंद भी पूरी होती है। तो
1: बिल्कुल
0: आज
1: बिल्कुल दीदी, हम
0: आज
1: प्रपत्र भी डालते हैं,
0: जी
1: शामिल भी
0: जी
1: हुए हैं
0: बिल्कुल
1: थोड़े।
0: बिल्कुल, आपके पत्र भी हम फरमाइशी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो बताएं आज
1: बिल्कुल,
0: क्या पसंद पूरी की जाए आपकी?
1: आप पसंद तो ऐसा है कि फौजी भाइयों के लिए सुनना चाहते हैं, संदेशे आते हैं, चिट्ठी आती है।
0: अच्छा, फौजी भाइयों के लिए सुनना चाहते हैं आप?
1: बिल्कुल, जो बॉर्डर पे खड़ी
0: जी
1: हुई
0: जी
1: है।
0: जी
1: हाँ,
0: आपका कोई अपना या परिचित है बॉर्डर पर?
1: परिचित तो हैंगे, बॉर्डर पे हैं,
0: अच्छा,
1: रिश्तेदार हैंगे।
0: उनके उनको डेडिकेट कर रहे हैं ये गीत।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं अभी
0: जी जी
1: वो।
0: जी तो उन्हें बताया आपने कि आप उनको ये गीत सुनवाने वाले हैं?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल हमने बात की थी उनसे, तो कहने
0: अच्छा,
1: लगे सुनाना, हम सुनते हैं आपके द्वारा, हम चलाते
0: क्या
1: हैं।
0: बात है। कहाँ पे पोस्टेड हैं जहाँ जो आपके रिलेटिव्स हैं वो?
1: वो वहां पे जम्मू कश्मीर में।
0: अच्छा, जम्मू कश्मीर में। दुश्मनों से हमारी रक्षा करने के लिए मुस्तैद रहते हैं
1: बिल्कुल
0: जी। चलिए,
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया है। और
1: और दीदी, हम
0: ये
1: पानी पूरी सेंटर का ठेला लगाते हैं
0: हाँ
1: वहां
0: हाँ
1: दिल्ली
0: जी
1: में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो
1: हाँ
0: गर्मियों गर्मियों का मौसम था और गर्मियों में तो पानी पूरी का बहुत क्रेज होता है। तो
1: बिल्कुल दीदी, आइए गंज
0: जी
1: वासुदा
0: बिल्कुल
1: आइए।
0: बिल्कुल, जब भी गंज बासोदा आना हुआ आपसे जरूर मिलेंगे। फिलहाल चलिए
1: और
0: आपकी
1: का
0: पसंद का गीत सुनवा देते हैं, है ना?
1: बिल्कुल दीदी, हाँ
0: चलिए,
1: बिल्कुल
0: धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: ठीक है दीदी, नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: हेलो, एम एच होटलाइन।
1: हाँ जी नमस्ते जी,
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से जी।
0: अच्छा, बहुत दूर से बात कर रहे हैं आप। वहां तक
1: हाँ जी,
0: रेडियो अच्छे से सुनाई देता है क्लियरली?
1: मोबाइल ऐप में एकदम क्लियर आता है।
0: अच्छा, मोबाइल ऐप में एकदम क्लियर आता है। योगेश जी, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: गीत आप हमें सुनवा देंगे, फिल्म है सच्चा झूठा और गीत
0: हाँ,
1: के बोल हैं रोज आती हो तुम ख्यालों में
0: यूं ही तुम मुझसे बात करती
1: मुझसे
0: हो।
1: बात करते हो।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गीत है। ये फिल्म
1: और
0: देखी थी
1: अटैच
0: आपने?
1: वाले जी, पुराने गीत ज्यादा सुनते हैं
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और
0: पुराने गीतों की मिठास की कुछ और बात है, तो हमेशा अच्छे लगते हैं, सुरीले लगते हैं वो गीत।
1: जी, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर भी आप सभी को, पूरे आकाशवाणी परिवार को शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी, क्या करते हैं आप छत्तीसगढ़ में?
1: हमारा मूल काम खेती बाड़ी का है
0: अच्छा, खेती बाड़ी है। तो अभी
1: जी।
0: तो खेतों में क्या उगाया हुआ है?
1: अभी नहीं, कुछ नहीं है अभी, बस अगले फसल की तैयारी कर
0: अच्छा,
1: रहे
0: अगले
1: हैं,
0: फसल की।
1: जोताई
0: तो क्या
1: वगैरह
0: क्या
1: की।
0: तैयारी करते हैं अगली फसल के लिए?
1: खेत की जोताई हो गया, खेत को थोड़ा सा बराबर समतल करना यदि कहीं
0: हाँ
1: कोई उबड़
0: हाँ
1: खाबड़ है तो,
0: हाँ हाँ
1: और मुख्य रूप से यही है फिर बीज
0: पानी
1: उपचार
0: वगैरह देके
1: करना।
0: नमी भी बरकरार रखनी पड़ती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अब बारिश होता है तो ही
0: हाँ
1: अधिक
0: हाँ
1: फसल मतलब डालते हैं
0: अच्छा, ओके।
1: जी।
0: तो सुबह जल्दी काम शुरू हो जाता होगा आपका?
1: हाँ मतलब जिस समय बुआई करते हैं उस समय जल्दी हो
0: अच्छा,
1: जाता है, और बुआई करने के बाद तो केवल देख रेख करना होता है।
0: हाँ, देख रेख भी बड़ा काम होता है।
1: हाँ क्योंकि
0: जी
1: खेत तक
0: जी
1: तो जाना ही पड़ता
0: हाँ,
1: है।
0: सही बात है। क्या क्या क्या क्या उगाते हैं खेत पे वैसे आप?
1: मूल रूप से तो धान ही उगाएंगे, साथ में जैसे अरहर हो गया,
0: अच्छा, ओके।
1: प्रमुख रूप से यही है इस समय खरीफ
0: अच्छा
1: फसल।
0: अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं खेतों में तो हमें अनाज मिलता है,
1: जी
0: और मेहनत करने के साथ साथ आप गीत भी सुनते हैं, रेडियो भी सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है।
1: लगातार 23 साल हो गए हमको
0: अरे क्या बात है,
1: आकाशवाणी
0: बहुत
1: से
0: अच्छी
1: जुड़े
0: बात
1: हुए,
0: है। अरे वाह,
1: और इस
0: अरे वाह।
1: बीच में जीवन के हर एक क्षेत्र में आकाशवाणी का योगदान
0: जी
1: भरपूर
0: जी जी
1: मात्रा है।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है। चलिए योगेश जी, इसी ऊर्जा को बनाए रखिए, और आपकी पसंद का गीत हमें मिल चुका है, तो सुनवा दें आपको आपकी पसंद का
1: जी
0: गीत।
1: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: यूं ही तुम

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: एमएच हॉटलाइन,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: विजय जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: पूरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद।
0: क्या बात है शेख फहीम मोहम्मद जी, आपका स्वागत है फोन कार्यक्रम में। बताएं, आज कौन सी फरमाइश पूरी की जाए आपकी?
1: 1977 की फिल्म है मेनू, इसका गीत है मन्ना डे और अंतरा चौधरी की आवाज में।
0: अच्छा।
1: तेरी गलियों में हम आए,
0: क्या बात है,
1: अरमानों भरा लाए।
0: बड़ा यूनिक यूनिक सा सॉन्ग चूज करके लाते हैं आप।
1: जी जी जी, बहुत जी, कम जी। बचता है गीत।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप जैसे श्रोता है ना, तो आपके जैसे श्रोताओं की पसंद के नए नए गीत हमें भी सुनने को मिलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो चलिए शेख वहीम मोहम्मद जी, समय हो रहा है तो मैं जल्दी से आपका गीत सुनवा देती हूँ आपको, है ना?
1: शुक्रिया
0: शुक्रिया जी।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत, और इस गीत के साथ ही आज के एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दें अपनी दोस्त विजया जैन को। नमस्कार।

0: हेलो MH हॉटलाइन।
1: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष फोन आउट कार्यक्रम।
3: ध्वनि की तरंगों से मुखरित होते शब्द जन जन की वाणी बन साकार करते हैं आकाशवाणी। आकाशवाणी जो अपने विविध रूप और रंग में, नाम और काम में, शिक्षा और सूचना लिए मनोरंजन का सशक्त और जीवंत उदाहरण बन समय के साथ 90 वर्षों से गतिमान है। आज यानी 8 जून 2026 दिन है पूर्णता का, दिन है उत्सव का, अपनी खुशियों को साझा करने का, दिल की बात कहने और सुनने का।

0: आइए इस मौके को साकार करते हुए हमने बात की आकाशवाणी से जुड़े सुधे श्रोताओं से, कलाकारों से, साहित्यकारों से और विशेषज्ञों से। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी बात हुई उन सब से जो जुड़े हैं आकाशवाणी से, महसूस करते हैं आकाशवाणी को और अपनी बातों, विचारों और मशवरे से समृद्ध करते हैं आकाशवाणी को। श्रोताओं, हमारे साथ हैं डॉक्टर ममता वर्मा, आप प्रिंसिपल हैं एम्स नर्सिंग कॉलेज में। नमस्कार ममता जी।
1: नमस्कार।
0: आप ये इस बात को बहुत बेहतर जानती हैं कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष में यात्रा कर रहा है और 8 जून को इसके 90 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आकाशवाणी को लेकर आपकी अपनी कोई खूबसूरत सी याद या कोई ऐसी बात हो जो आप साझा करना चाहें आकाशवाणी के साथ और सुनने वालों के साथ?
1: जैसे ही आपने यादों की बात करी तो मेरा दिल और दिमाग करीब 30 साल पहले की एक घटना पे चला गया जो मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ।
0: जी।
1: मैंने इंदौर से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग से बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया है। ये सन 1996 की बात है
0: जी,
1: जब मैंने एक वाद विवाद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था और जो कि आकाशवाणी ने आयोजित करी थी।
0: अच्छा।
1: ये वाद विवाद प्रतियोगिता एड्स रोग के ऊपर थी। और जब मुझे पता चला कि ये कार्यक्रम, ये प्रतियोगिता आकाशवाणी ने आयोजित की है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई सिर्फ भाग लेने से। उस समय मेरी इच्छा थी कि आकाशवाणी आयोजित कर रहा है तो मुझे भाग लेना है।
0: जी।
1: आकाशवाणी से मेरा लगाव इस तरीके से भी था उस समय सन 1996 में, क्योंकि बचपन से मैंने अपने पिताजी को ट्रांजिस्टर पे आकाशवाणी सुनते हुए देखा था, तो मेरे लिए वो आकाशवाणी कुछ ऐसा होता था कि कोई एक बहुत दूर की बात है, कोई भव्य सी चीज है जिसको सिर्फ सुनना मेरे लिए, जिसको सुन के मैं बड़ी हुई थी
0: जी।
1: और करीब 20-22 साल बाद उसी आकाशवाणी द्वारा किसी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था जो कि मेरे सब्जेक्ट मतलब स्वास्थ्य से संबंधित था, तो मैंने उस प्रतियोगिता में भाग लेना अपना सौभाग्य।

0: समझा।
1: बहुत बढ़िया।
0: ये मैंने मन में सोच लिया था कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, तो मैंने काफी तैयारी करी थी और खूब बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद में मैंने कोई तो भी एक मतलब पोजीशन लिया था, मुझे ठीक से याद नहीं, पर
1: जी
0: मैं विजेता रही उस प्रतियोगिता में और मुझे मंच पे बुलाया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के सामने जब मुझे वो प्रशस्ति पत्र दिया गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो यूनिवर्स ने, जगत ने, जिसे कहते हैं डॉट्स को कनेक्ट कर दिया। जो बचपन से मैं ट्रांजिस्टर पे छोटा सा सुनती थी,
1: जी जी
0: जो आकाशवाणी मेरे कानों में घूलता था, उसी आकाशवाणी द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में मैंने कोई खिताब जीता। मैं बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा मेरा उत्साहवर्धन किया गया। जब मैंने वो पुरस्कार लिया तो मुझे ये बताया गया कि आपके द्वारा बोले गए भाषण की रिकॉर्डिंग हुई है जो कि प्रसारित की जाएगी।
1: अरे वाह
0: इसके बाद ये हुआ कि वो रिकॉर्डिंग मैं सुन नहीं पाई, लेकिन वो
1: जी
0: रिकॉर्डिंग मेरे बचपन की स्कूल की एक सखी थी, उनकी माँ ने सुना,
1: अच्छा
0: और वो रिकॉर्डिंग उन्होंने मेरी दोस्त को बताया और मेरी दोस्त ने कहा, ममता तुम्हारा भाषण वाद विवाद वाला मेरी माँ ने रेडियो पे सुना और उन्होंने ये कहा कि ममता को कहना कि वो बहुत अच्छा भाषण बोलती है, और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया।
1: बहुत अच्छी बात है। आपकी तो बड़ी खूबसूरत सी याद जुड़ी है आकाशवाणी से। लेकिन ये याद दोहराते हुए आपने एक चीज कही थी कि जब आपके पिताजी इसे सुनते थे तो ये आपको एक बहुत भव्य सी चीज लगती थी।
0: जी
1: आकाशवाणी की यात्रा यदि आपके उस वर्ष 96 से भी अपन तय करें यहाँ तक, तो भी एक लंबा वक्त हो गया है। 30 साल पूरे हो गए हैं, 96 से 2026 तक। तो क्या आपको
0: जी
1: ऐसा लगता है कि इन 30 वर्षों में आकाशवाणी अपनी उसी भव्यता के साथ खड़ी है?
0: जी मुझे बिल्कुल लगता है, मैं बहुत ठोस रूप से इस चीज को महसूस करती हूँ कि आकाशवाणी अभी भी उन दिलों में वैसी ही धड़कती है जैसे 25 साल पहले या 50 साल पहले धड़कती थी। और ये जो घटना मैं आपको बता रही हूँ,
1: जी
0: इसका फॉलो अप ऐसा हुआ कि 1996 के बाद में वो ट्रॉफी मैंने अपने घर में रखी और पिछले 2 साल पहले ही मैं किसी एक कार्यक्रम में अपने छात्राओं को लेकर के गई थी और वहां पर मुझे आकाशवाणी के मनीष जी मिले। मुझे नहीं पता था वो आकाशवाणी से है। उन्होंने आकर के उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए मेरा मत जानना चाहा
1: जी
0: और उन्होंने जैसे ही कहा कि मैडम मैं आकाशवाणी से हूँ, तो दिन में मेरी आंखों से तारे चमकने लगे। मुझे वो ही याद आ गया कि देखिए ये कितनी बार आकाशवाणी घूम फिर के मेरे इर्द गिर्द 10 साल 20 साल में लौट करके आता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जो आपने कहा कि जो 90 वर्ष में आकाशवाणी की भव्यता है, जैसे समुद्र की लहरें लौट करके जा करके पलट के वापस आती हैं,
1: जी
0: मेरे जीवन में आकाशवाणी इसी तरीके से किसी न किसी रूप में जा करके पलट के वापस आया और वो भव्यता या वो जो लगाव जिसे कहते हैं, वो एक फिर से एकदम से जैसे कली खिलती है, पुष्प पुलकित होता है, वैसे फिर से हो जाता है। और आज आपसे बात करके देखिए फिर से मैं उतनी ही खुश हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वही रेडियो में बचपन में सुनती थी, वही मुझे आकाशवाणी से दोबारा रिकनेक्ट करवाया और आज फिर मैं आकाशवाणी से आपके थ्रू कनेक्ट हो रही हूँ।
1: खुशी जो है, जो एक संतोष है, ये आपकी आवाज से, आपकी बात से छलक रहा है। हम चाहेंगे कि सागर की ये लहरें यूं ही आती जाती रहें, और सागर की लहरें जब आती जाती हैं तो कई बार वो पारितोष के रूप में हमारे लिए कोई रत्न, कोई मोती जरूर लेकर आती हैं। तो आकाशवाणी की ये लहरें अथाह समुद्र की तरह यूं ही बढ़ती रहें, चलती रहें। बहुत अच्छा लगा ममता जी आपकी याद को जानकर। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी इस याद से जरूर प्रफुल्लित हुए होंगे।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

0: हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर अवध किशोर जड़िया, जो कवि हैं हिंदी और बुंदेली के।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी, आकाशवाणी के ये शक्ति सामर्थ्य के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से समूची टीम को, श्रोताओं को, देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आकाशवाणी के संदर्भ में ये कहना बहुत जरूरी है कि ये बहुत लोक मंगलकारी साधन है, जन जन को आकृष्ट अभिभूत करने वाला, यूं कहना चाहिए अपने आरंभ काल से 70-75 वर्ष तक का आकाशवाणी का एक छत्र राज्य रहा, एकाधिकार रहा, इसकी उपस्थिति बहुत बहुत आकर्षक रही। राष्ट्रीय उत्कर्ष के संबंध में, खोज खबर के संबंध में, सारे तथ्य पर खोज खबरों का प्रदान करना, मनोरंजन करना, देश को बहुत गर्वित करने वाला माध्यम हुआ। इसका जो स्वर्ण काल था, तो हम आपको सबको मालूम है कि पूरा देश रेडियो को अहर्निश लगा रहता था
2: जी।
1: अगर कमेंट्री आ रही है तो लोग अपने बिस्तर पर रेडियो लिए सुनते थे, गीत आ रहे हैं तो लोग खेत खलिहानों में उसको सुन रहे हैं, लोग गीत आ रहे हैं तो गांव का, देहात का, नहर शहर का, सारे लोग उसको सुना करते। वैसे भी वेदों के पहले श्रुतियां थी, सारा कुछ सुनने ही उससे हुआ करता था।
2: बिल्कुल।
1: और जब सर्व संसार हुआ तो ये लोग के यहाँ ये भी बात थी अपनी संस्कृति में कि व्यक्ति को बहुश्रुत होना चाहिए और बहुपठ होने चाहिए, वही योग माना जाता था जो बहुश्रुत हो
2: जी।
1: तो सर्व संसार का एक बड़ा विलक्षण साधन है और हम देखते हैं कि इसमें पूरा देश, इसका जब स्वर्ण काल हुआ तो सारी बातें आकाशवाणी ने कवर की।

0: संगोष्ठियां हुई, रूपक हुए, नाटक हुए, काव्य गोष्ठियां हुई, शास्त्रीय संगीत हुआ तो सुगम संगीत भी हुआ, सुगम संगीत के बाद बच्चों के लिए भी संगीत में ताल कथाएं बनाई गई, रूपक हुए, नाटक हुए, फिल्मी गाने तो इतने हुए, कुछ न पूछिए। और एक बात और भी है, 70 का जो दशक था उस समय के फिल्मी गाने बहुत ही साहित्यिक थे
1: जी।
0: बहुत लोगों को उनकी जुबान पर बैठ गए थे, आलेख हुए, विशिष्ट विभूतियों के पर केंद्रित तो बहुत संगोष्ठियां हुई, पर्व विशेष पर रूपक विशेष हुए, लोकगीतों के, संस्कार गीतों के, सारे कुछ आकाशवाणी ने कवर किए। कहना तो ये चाहिए कि आकाशवाणी शास्त्र की वाणी है
1: जी।
0: क्योंकि शास्त्र में जो लिखा वो आकाशवाणी में आया, जो लोक में हुआ वो आकाशवाणी में आया। स्वर की और संगीत की वाणी है, कला और संस्कृति की वाणी है, राजनय और नीति की वाणी है। और एक बात और है, सारी भाषाएं देव भाषा से प्रसूत हैं, और उसमें अपनी जो राजभाषा है ये राजभाषा की वाणी है, और राजभाषा ही नहीं तमाम विभाषाओं में विरचित, कथित, संकल्पित सृजनों के मूल मंत्रों के उच्चारण के विशाल व्योम में गुंजारित करने का ये सबसे सशक्त माध्यम। क्या क्या नहीं किया आकाशवाणी ने विचारों के, गद्य पद्य के स्वरूपों को, गद्य पद्य की जितनी विधाएं हैं उनको वैखरी अर्थात कंठ से निकले हुए स्वर लोक श्रुत हुए और कंठार बन गए। इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि आकाशवाणी मेरे विचार में अनेक कालखंडों की बहुत कीमती वाणी है, बहुत कीमती वाणी।
1: आपकी इस बात से निश्चित रूप से हम सभी गौरवान्वित हैं। हम आपसे एक शुभकामना चाहेंगे इस 90 वर्ष पर।
0: इस 90 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी आकाशवाणी के इस आमोद भरे अवसर पर मैं अपने हृदय तल से आकाशवाणी का अभिनंदन करता हूँ, देशवासियों को महनीय शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ।
1: कोई छोटी सी कविता या कोई छंद सुनाएंगे आप?
0: जी जी बिल्कुल, एक छोटी सी कविता रखता हूँ। मैं लोक भाषा का कवि हूँ तो मैं एक गीत, छोटा गीत रखता हूँ, तो सुनिए। तुमने कभी नहीं देखे हैं लिपे पुते आंगन, तुम क्या जानो कैसा गाँव की गोरी का मन। तुमने कभी नहीं देखे हैं लिपे पुते आंगन, तुम क्या जानो कैसा होता है गाँव का मन। घर क्या है छप्पर छानी के महल गढ़ दिए हैं, फिर पीरे पीरे गुबरी ले वर्क जड़ दिए हैं। सब अचला के अंचल से निकले हैं चाल चलन, तुम क्या जानो कैसा गाँवों की गोरी का मन। सहज सुलभ संवादों से झर पड़ते नंदन वन, सहज सरल संवादों से झर पड़ते नंदन वन। तुम क्या जानो कैसा होता है गाँवों का मन, तुमने कभी नहीं देखे हैं लिपे पुते आंगन।

0: हमारे साथ जुड़ी डायरेक्टर उर्दू एकेडमी नुसरत मेहंदी।
1: स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और हमारा ये कार्यक्रम जुड़ा हुआ है आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा में। एक

0: लिसनर की दृष्टि से, एक शायरा की दृष्टि से, उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर की दृष्टि से और तमाम सारे आपके जो जीवन के आयाम हैं उन सभी दृष्टियों से आप आकाशवाणी को किस रूप में महसूस करती हैं?
1: सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने खूबसूरत मौके पर आपने मुझे याद किया। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आकाशवाणी का मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से भी और जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं अगर लेखनीय दुनिया में हूँ, चाहे वो मेरा प्रोज का गद्य का क्षेत्र हो या शायरी का क्षेत्र हो, तो इसमें महत्वपूर्ण इसलिए है कि मेरी जीवन यात्रा, मेरी सृजन यात्रा जो शुरू हुई थी वो आकाशवाणी नजीबाबाद का जो रेडियो स्टेशन था वहां से हुई थी।
0: अच्छा।
1: मेरी पहली कहानी मैं क्या हूँ आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित हुई थी।
0: अरे वाह।
1: और वहीं से मेरी सृजन की यात्रा शुरू हुई है। तो मेरे जीवन में तो आकाशवाणी का इतना महत्व है कि शायद दूसरे किसी के जीवन में नहीं होगा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार ज्ञापित करना चाहती हूँ। अब मैं दूसरी बात करती हूँ कि अगर जो हमारा प्रोफेशनल जीवन होता है उसमें आकाशवाणी नहीं होती, रेडियो नहीं होता, तो मुझे लगता है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज तो बहुत सारे टाइम था कि सुबह से लेके रात तक सिर्फ रेडियो ही होता था जिससे सूचनाएं मिलती थी और हम लोग अपडेटेड रहते थे। तो जितने भी जीवन के आयाम आपने जिक्र किया, चाहे वो मेरा उर्दू अकादमी का हो या शासन के किसी भी विभाग का मामला हो, आकाशवाणी के बिना इनकी सारी सार्थकता अधूरी है। क्योंकि आज भी, ये पुराने जमाने की बात तो मैं कह ही रही हूँ कि उस समय तो कोई माध्यम था ही नहीं, लेकिन अगर आज का भी हम जिक्र करें और बेशुमार माध्यम है सोशल मीडिया के, लेकिन उसके बावजूद जब आपका नमस्कार भोपाल या और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो प्रसारित होते हैं तो हमारे पास आज भी फोन आते हैं, क्योंकि आप लोग इतने सक्रिय हैं कि एक तो हर कार्यक्रम पे नजर रखते हैं और हमें नहीं कहना पड़ता। ये आप लोग की सक्रियता, उसको साधुवाद और प्रणाम करती हूँ। और जब वो प्रसारित होता है तो हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, फोन आते हैं कि हमने आज आपका ये सुबह सुना और हम आज आ रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही शानदार यात्रा रही है, बहुत ही सफल और बहुत ही सार्थक यात्रा रही है आपकी।
0: बहुत धन्यवाद। हम देना चाहेंगे आप जैसे सुधे श्रोता और आप जैसे साहित्यकारों से जुड़कर, कलाकारों से जुड़कर ही आकाशवाणी अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। यदि शुभकामनाओं की बात की जाए तो आप आकाशवाणी के भविष्य को लेकर क्या कामना करना चाहेंगी?
1: मेरी शुभकामनाएं दिल से आपके साथ हैं। जितने भी कार्यक्रम हैं उसको आप लोग जिस तरह से प्रसारित करते हैं इसी तरह के और कुछ और इनमें आयाम आप जोड़ सकते हैं। वैसे आपके यहाँ सब कुछ शामिल है, क्योंकि मैं आपके दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होती हूँ। मुशायरा कवि सम्मेलन भी होते हैं। कुछ चीजें हैं कि जैसे एक शायर को बैठा लेते हैं और दूसरा एक उसके कलाम को कंपोज करके गाता है, कलाम शायर शायद पहले कभी हुआ करता भी था। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको, ऐसे ही उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे हमारा आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी की इस 90 वर्ष की यात्रा में अब शामिल हो रहे हैं नारायण व्यास, जो पुरातत्वविद हैं और इस कार्य के लिए आप पद्मश्री भी प्राप्त कर चुके हैं।
1: नमस्कार जी।
0: आपसे जानना चाहेंगे कि आप लंबे समय तक अपने कार्य में लगे रहे निरंतर, और आपके बेहतरीन कार्य के लिए आपको शासन से पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है। एक पुरातत्वविद की दृष्टि से, एक श्रोता की दृष्टि से, या एक सामाजिक दृष्टि से आकाशवाणी का क्या महत्व महसूस करते हैं आप उसकी इस लंबी यात्रा में?
1: ये आकाशवाणी का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व, हम बचपन से ही देख रहे हैं आकाशवाणी को, सुनते हैं। और अभी जब से मेरी नौकरी 1972 में लगी है, तो मेरी जो 1980 के बाद तो पता नहीं कितनी वार्ताएं आपके आकाशवाणी से हुई भी है पुरातत्व के विषय में। तो उसमें पहले ये जो यहाँ 1992 के करीब, तो एक महीने में 4 वार्ताएं मेरी करते थे।
0: अच्छा।
1: उसमें ये जो भोपाल के आसपास के जितने पुरातत्व स्थल होते हैं उनके बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त हुई थी। और कई बार हम लोग तो कह टेलीकास्ट यहाँ पर बैठ के जो हुआ है, जो पुराने जी है यहाँ, और हम दो ऑफिस के लोग थे, तो वहीं बैठ के आकाशवाणी में बैठ के पूरे मध्य प्रदेश को कंट्रोल करके, और सब उनकी समस्याएं जो पुरातत्व की नई नई खोज क्या होती है, ये पूरी जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से हमने वो सब जनता को दी। और कई ऐसी सूचना भी मिली उनसे, लोगों से, जिसमें हम जाके साइट विजिट किए, वो चीज हमें मिली भी, क्योंकि पुरातत्व का ऐसा विषय है, क्योंकि जनता को जोड़ने के लिए आकाशवाणी का ऐसा बहुत बड़ा महत्व रहा है। विशेष रूप से हम जो नए नए उत्खनन करते थे, उनकी जो जानकारी हमसे पूछते थे डायरेक्ट लाइव आपके यहाँ से होता था, तो हम बताते थे उनको कि कैसे ये पुरानी संस्कृति की खोज कैसे की जाती है, पुराने टीलों के किनारे, नदी किनारे घूमते रहते थे। लेकिन क्या है कि हम खोज तो कर लेते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार कौन करेगा? लेकिन जो रेडियो आम जीवन में जो रहता है गाँव में सब जगह, वो लोग सब सुनते हैं। हम उनको बताते हैं कैसे संस्कृति की खोज होती है और कैसे हम आगे बढ़ते हैं, और उनको बताते देते भी है कि इतिहास पुरातत्व दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। पुरातत्व जमीन के अंदर है, इतिहास बाहर है। तो आकाशवाणी से जो ऐसी चीजें जाती लोगों की, तो बड़ा लोगों को अच्छा लगता है। और आपकी आकाशवाणी की टीम के साथ हम कई स्थानों भी गए, सांची में भी किया, खजुराहो में भी किया, और बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट साइट से जो विश्व धरोहर से संबंधित है। सबसे ज्यादा सफल कार्यक्रम हमारा सांची में हुआ था और खजुराहो में हुआ था। तो ये हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि आकाशवाणी के माध्यम से कितना पुरातत्व का प्रचार प्रसार हुआ है, जो हम अब महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये रेडियो कैसा है, हम चलते फिरते कहीं भी सुन सकते हैं, टेलीविजन नहीं देख सकते, सुन सकते या देख सकते हैं, उसके लिए देख देख बैठना पड़ता है, पर रेडियो तो हम कहीं भी ले जाके सुन सकते हैं। तो आकाशवाणी का तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना भी चाहूंगा कि आकाशवाणी के माध्यम से हमारा पुरातत्व का बहुत प्रसार प्रसार हो। और मैं कह सकता व्यक्तिगत भी मुझे लोग जानने लगे कि ये तो व्यास जी हैं आकाशवाणी से, कई बार हम इनके जो शोध लेख भी होते ये सुनते थे पहले, जैसे हमारे यहाँ आपके यहाँ आर्य साहब भी थे, उनके समय भी हुआ, उसके पहले भी कई लोग होते थे। तो देखो हम लोग पैसों की चिंता नहीं, हम देखते हैं हमारी जनता के साथ में कितने जुड़ाव रेडियो के माध्यम से होता, वो हम लोग का बहुत हुआ। तो हमें तो आज भी बड़ी प्रसन्नता है। तो मैं तो ये स्थापना के जो 90 वर्ष हो रहे हैं, इसके लिए

0: श्रोताओं, हमारे साथ हैं उदयन वाजपेयी। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बल्कि हम यूं कहेंगे कि उनकी पारखी दृष्टि समाज के हर अंग पर, हर वर्ग पर, हर आयाम पर पड़ती है। आकाशवाणी के 90 वर्ष की इस यात्रा में रेडियो के या आकाशवाणी के समाज के प्रति योगदान की बात जानना चाहेंगे, और सुनने वालों का क्या रिश्ता बन पाया आकाशवाणी से।
1: एक तो पहले मैं आपको ये चीज स्पष्ट करूं कि कभी भी रेडियो जो है वो, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में आकाशवाणी है, वो कभी भी टेलीविजन से ज्यादा दूर तक और देर तक रहने वाला मीडिया है। उसका सीधा कारण ये है कि दृश्य से ऊब और थकान दोनों होती है, जबकि सुनने से जो कल्पनाशीलता है वो जागृत होती है। इसीलिए सिनेमा में भी, जो कि दृश्य का और सुनने का माध्यम है, उसमें जो साउंड है, आवाज है, उसकी कहीं अधिक अर्थवत्ता होती है बनस्पत दृश्य के। तो इसलिए आकाशवाणी, क्योंकि ये सुनने का, श्रवण का माध्यम है, इसलिए इसका कभी भी ज्यादा महत्व बहुत सारे लोगों का के जीवन में रहा है। और एक जमाने तक तो केवल आकाशवाणी ही था, और आज भी बहुत हद तक आकाशवाणी ने कम से कम संगीत के क्षेत्र में और बातचीतों के क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता बना के रखी है। कई जगह विश्वसनीयता प्रश्नांकित उसकी हुई है, लेकिन ये होता है लंबे दौर में, अलग अलग किस्म के जब आप तंत्रों में रहते हैं तो ये सब तो होता है। बचपन से हमारे घर में उदाहरण के लिए फिल्मी संगीत सुनने की इजाजत नहीं थी जब हम बच्चे थे। आप समझिए 1966 या 70 के आसपास की बात है। आकाशवाणी पर उन दिनों फिल्मी गीत सुनना, कम से कम मेरी बहनों के लिए, एक तरह से उनकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति थी।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वो छुप के सुनती थी
0: जी, जी।
1: माता पिता से छिप के, लेकिन माता पिता से छिप कर जो आप काम करते हैं वो एक तरह से बचपन से ही आपकी स्वतंत्रता का प्रशिक्षण होता है कि आपकी अपनी दुनिया क्या है। आप अन्यों से, अपने माता पिता से, अपने चाचा चाची से, ताऊ वगैरह से भिन्न कहाँ हैं। तो आकाशवाणी एक तरह से बहुत लोगों का, सिर्फ मेरी बहनें हो उसमें उदाहरण हो ये नहीं है, बहुत लोगों के लिए आकाशवाणी को सुनना उनके स्वातंत्र का प्रशिक्षण जैसा था, जो बाद में उन्होंने कई तरह से प्रकट हुआ होगा। दूसरा, उसमें शास्त्रीय संगीत जो आता था और उसमें जो बहसें हुई हैं आकाशवाणी की शुरुआत में, केसकर जब थे, अगर मुझे ठीक याद है, पहले डायरेक्टर जनरल
0: जी। सर, यहाँ पे मैं एक छोटा सा करेक्शन कह लीजिए या ये दोहराना चाहूंगी कि केसकर साहब उस समय INB मिनिस्टर हुआ करते थे।
1: अच्छा,
0: और,
1: अच्छा, अच्छा।
0: जी, और पहले जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो
2: गिरिजा कुमार माथुर
0: साहब थे।
1: हाँ, ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। तो उन्होंने जब ये बात कही, साहब हम हारमोनियम को इजाजत नहीं देंगे, ये कोई एक ऐसा निर्णय नहीं था जो एक किस्म का अपने आप ले लिया गया निर्णय हो। उसके पीछे भारतीय संगीत की एक गहरी समझ थी, उसके भीतर जो परिवर्तन हुए हैं शास्त्रीय संगीत में उसकी जरूर अनदेखी थी, लेकिन फिर भी एक गहरी समझ थी। वैसे बड़ी दिलचस्प होती थी, हम चूंकि शुरू में हमारा जो परिवार है वो साहित्य, कला, संस्कृति आदि का केंद्र जैसा रहा है, हम सारे लोग लेखक, कलाकार या नर्तक वगैरह रहे हैं तो, और हैं, तो उसमें ये बहसें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती थी कि हारमोनियम में क्या सीमा है।
0: जी,
1: तो फिर पता लगा कि भाई उसमें श्रुति नहीं सुनाई पड़ती, स्वर से स्वर पे आप जाते हैं, और वो हमारे यहाँ संगीत में उतना महत्व का नहीं होता। हमारे यहाँ श्रुतियों की केंद्रीयता है नृत्य संगीत। वो बहुत सोच के, संगीत के स्वरूप को समझ के वो बंदिश लगाई गई थी। हमारे यहाँ ध्रुपद में आज भी हारमोनियम नहीं बजता, ध्रुपद में केवल ज्यादा से ज्यादा तानपुरा बजता है, और अगर थोड़ा बहुत उसको आप विस्तार करें तो थोड़ा बहुत सारंगी बजती, लेकिन ध्रुपद में आज भी हारमोनियम नहीं होता। उसका कारण है कि ध्रुपद में जो श्रुति है उसकी केंद्रीयता बहुत अधिक है। ये बहस बड़ी पुरानी, और ये संगीत पर बहस आकाशवाणी से पैदा हुई थी।
0: जी,
1: ये
0: जी।
1: संगीत पर एक किस्म की दार्शनिक बहस है, सौंदर्य शास्त्रीय बहस है। ऐसी बहसें आपको दूरदर्शन पर या आजकल जो बहुत सारे हजारों चैनल्स हैं जो ज्यादातर बिके हुए हैं, उनमें कोई नहीं समझ में आएगी आपको, उसमें कोई ऐसी बहस होती ही नहीं। दूसरा, आकाशवाणी ने अपने को बाजार से बहुत हद तक स्वतंत्र रखा था, क्योंकि आकाशवाणी में जो लोग हैं, यहाँ भारतीय जो नागरिक हैं, समुदाय है, जो सामुदायिक जीवन है वो केंद्रीय था, बाजार केंद्रीय नहीं था। दूरदर्शन के पहले क्षण से
0: जी।
1: बाजार केंद्र में आ गया, समाज केंद्र से विस्थापित हो गया। तो दूसरी बात ये थी कि आकाशवाणी ने अपने को भारतीय लोगों की आवाज के रूप में, उनके मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किया था और अपना आकार ग्रहण किया था। ये बहुत बड़ी बात है। आज ये बात हमें समझने में बहुत सारे युवा लोगों को असंभव जान पड़ेगी।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा कुछ भी हो सकता है इसका बाजार से कोई संबंध ना हो, क्योंकि आज तो बाजार का जो प्राधान्य है वो डरावना है, लेकिन आकाशवाणी में नहीं था, एक हद तक आज भी नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा, मुझे खुद बहुत बार अवसर मिला अपनी कहानी पढ़ने का, कविताएं पढ़ने का, तो मुझे अक्सर कई बार छोटी छोटी जगहों पे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनमें जो आपको हमको बताते हैं कि साहब आपकी हमने फलानी कहानी सुनी थी आकाशवाणी पे। ये वो लोग हैं जिन तक पत्रिकाएं नहीं पहुंचती। साहित्यिक पत्रिकाओं की वैसे भी हालत हमारे यहाँ बहुत खराब है, हमारा मध्य वर्ग तो पढ़ता लिखता नहीं है, तो हमारे साहित्य तो एक किस्म का बेघर साहित्य है। इस बेघर साहित्य को थोड़ी सी देर के लिए आश्रय या शरण आकाशवाणी देता रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। साहित्य के लिए भी बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी या कोई पत्रिका लेखक पैदा नहीं कर देती, लेकिन एक तरह से उन लेखकों को या उस संगीत को, उसका उसके फैलाव के लिए को दूर तक ले जाने की जो जिम्मेदारी आकाशवाणी ने लंबे समय तक निभाई है, उसका हम सबको कृतज्ञ होना चाहिए। कम से कम मैं एक लेखक के रूप में बहुत कृतज्ञ हूँ उसका। अगली और अंतिम बात यह है कि आकाशवाणी सुनते हुए आपके आप सोचने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी वो इस तरह की, क्योंकि वो आवाज है, आवाज मूल है उसमें, उस वो आपको बांधता नहीं है, वो आपको खोलता है। तो आप सुनते समय आकाशवाणी का, भले संगीत सुन रहे हो, आप भले कोई बातचीत सुन रहे हो, कोई लेक्चर सुन रहे हो, कोई नाटक सुन रहे हो, कोई कहानी सुन रहे हो, आप खुलते हैं
0: जी।
1: और ये खुलाव भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के लिए खुला हुआ नागरिक जरूरी है। एक बंद आज्ञाकारी नागरिक जो है वो डरावना होता है लोकतंत्र के लिए, वो कभी नहीं लोकतंत्र को चला सकता। तो आकाशवाणी ने एक तरह से भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में एक हद तक भूमिका निभाई है, और हम सबको उसका कृतज्ञ होना ही चाहिए।
0: बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी है। आप आगे आने वाले समय के लिए क्या शुभकामना आकाशवाणी को देना चाहेंगे?
1: मैं सोचता हूँ, एक तो बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, आकाशवाणी कभी बंद

0: ना हो, जिस तेजी से हमारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस खत्म होते जाते हैं, उसके मैं बहुत ज्यादा उसके लिए आशान्वित हूँ कि ये बचा रहेगा। दूसरी बात ये मैं सोचता हूँ कि आकाशवाणी जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, उसका विकास होता है, उसे अधिक से अधिक स्वतंत्र स्वयं में होती जाना चाहिए। और ये सबके लिए सही है, ये बच्चे के लिए भी सही होता है, मेरे आपके लिए भी सही होता है। हम सारे लोग अगर स्वतंत्र की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो हमारा हमारा हमारी ग्रोथ, हमारा विकास नहीं हो रहा है। उसमें ज्यादा संगीत शामिल हो, ज्यादा लेखक कवि उसमें शामिल हो, ज्यादा उसमें तरह की बातचीत हो, जितनी अभी हो रही है उसे और ज्यादा हो, तो जैसे जैसे इस तरह का फैलाव आकाशवाणी का क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा, आकाशवाणी की पहुंच भी बढ़ेगी और हम भारत को एक दूसरे एक जगह को भारत की दूसरी जगह से जोड़ने का जो उसने दायित्व तो निभाया है उसका स्तर भी गहरा होता जाए, ऐसा मैं शुभकामनाएं आकाशवाणी को देता हूँ।
1: बहुत धन्यवाद, हम भी यही चाहेंगे और उम्मीद करेंगे, बल्कि यूं कहिए कि सक्रिय कोशिश करेंगे कि ये व्यापकता निरंतर बढ़ती रहे।

0: था। सिंधी कार्यक्रमों के हमारे कंपेयर है नारी लच्छवानी, जो लगभग पिछले 25 वर्षों तक कार्यक्रम को प्रस्तुत करते रहे और स्वयं आकाशवाणी के एक बहुत अच्छे श्रोता हैं। हमने बात की आपसे।
1: स्वागत है, आज हम बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा में, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कौन

0: से प्रेम करना सिखाया
1: जी,
0: स्वच्छता का पाठ, संस्कारवान बनाया और अच्छा साहित्य लेखन, कविता लेखन, कहानी लेखन, मतलब हर तरह से हर वर्ग के लिए आकाशवाणी ने अपना योगदान दिया है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, महिलाओं से युवा तक, वृद्धजनों तक, किसानों तक, ग्रामीण लोगों तक, मतलब कोई भी ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जो आकाशवाणी से अछूता रहा हो
1: जी।
0: तो ये सबसे बड़ी देन है हमारे जीवन में, हम जीवन भर आकाशवाणी के सानिध्य को भूल नहीं सकते, भुला नहीं सकते, उसी के बल पर हम अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। जीवन में आकाशवाणी उत्कृष्टता का प्रतीक।

0: रहना।
1: 90 वर्ष की ये यात्रा समय में बांधी नहीं जा सकती, लेकिन हाँ कुछ घटनाएं, कुछ बातें, कुछ व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़कर इसके कई आयामों को हम तक पहुंचा सकते हैं। और अब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ला। आकाशवाणी को किस रूप में आप देखते हैं और क्या इसकी अपनी भूमिका रही है?
2: मैं आकाशवाणी को इस तरह से याद करता हूं कि जब 15 अगस्त 1947 को आधी रात भारत आजाद हो रहा था, उस दौरान आकाशवाणी ही वो स्वर था जिसने देश भर में आजादी की खुशी को पहुंचाया था। वहां से लेकर अभी तक की जो यात्रा है पूरी 90 वर्षों की, जितना विविध हमारा देश है, जिस सांस्कृतिक विविधता के साथ में, कला रूपों के साथ में हम जीते हैं, तो पूरे देश को एक सूत्र में जोड़े रखने वाले जो जो कारक हैं, उसमें आकाशवाणी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक की तरह मुझे दिखाई देता है। चाहे वो

0: से लेकर दक्षिण तक की बात हो, चाहे वो हम पश्चिम से लेकर पूर्व तक की बात करें, देश अगर बंधा है तो जिन कारकों में बंधा है उसमें एक आकाशवाणी भी है।
1: इस आकाशवाणी का जो वो समय था जिसे आप अपनी पहली याद के रूप में महसूस करते हैं और अभी तक की जो यात्रा है, इसमें समय में बहुत सारे बदलाव आए हैं, तकनीक में बदलाव आए हैं और उससे बढ़कर हमारे आपके सोचने के तरीके और आवश्यकताओं और ज़रूरतों में भी बदलाव आए हैं। इस दृष्टि से आकाशवाणी किस रूप में आपको महसूस होती है?
0: क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी सूचना की विश्वसनीयता आकाशवाणी ने शुरू से लेकर अंत तक विश्वास की परंपरा को बनाकर रखा है। आज जबकि हर हाथ में मोबाइल है, सूचना का विस्फोट का समय है, AI हमारे ऊपर आ चुका है, ऐसे समय में जब हर जगह संदेह है, हर जगह हमको अविश्वास दिखाई देता है, वहां अगर विश्वसनीयता की बात हो तो अपने तमाम प्रोग्राम्स में, चाहे वो संगीत के कार्यक्रम हो, चाहे वो वार्ताएं हैं, चाहे वो चर्चाएं हैं, चाहे वो समीक्षाएं हैं या खबरों को पहुंचाने तक का पूरा मामला है, आकाशवाणी ने विश्वास की परंपरा को कायम रखा है, जिसके आधार पर पत्रकारिता कही है या ये कही है कि खबरों को पहुंचाने का जो तरीका है, ढंग भले बदला है लेकिन विश्वास की जो बात है वो आकाशवाणी के पर्याय के रूप में हम देख सकते हैं।
1: ये वाकई में आकाशवाणी के लिए और आकाशवाणी से जुड़े हर एक व्यक्ति के लिए बहुत गौरव का विषय है कि जो चीज हमारे घर परिवार और समाज से भी थोड़ी थोड़ी दूर होती जा रही है, कम होती जा रही है, वो विश्वास आज भी आकाशवाणी सहेज कर चल रहा है। उसकी अगली यात्रा को लेकर जहां पर बहुत चुनौतियां हैं, क्या भविष्य या क्या अपेक्षा आप आकाशवाणी से रखते हैं?
0: जैसे मैं शुरू से एक बात जो रेखांकित कर रहा हूँ कि जितनी देश में विविधता है, आकाशवाणी उस महासागर की तरह है जिसने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़े रखा है। चाहे वो फिल्म संगीत की बात हो, चाहे वो हम क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, चाहे खेल, कृषि, हमारी हेलो फरमाइश, तमाम प्रोग्राम्स जो हैं, उसने देश की धड़कन को, देश की स्पंदन को महसूस किया है। अब ऐसे समय में जबकि तकनीकी रूप से बहुत सारी चुनौतियां हैं, मैंने कहा कि कई तरह के अलग अलग तरह के चैनल्स भी आए हैं, उस दौर में अभी भी एक समाज है हमारा जहां तक आकाशवाणी के अलावा कोई पहुंचा नहीं है। यहाँ वो समाज केवल पहुंच वाला नहीं है, वो समाज है विश्वास वाला समाज, वो जो आप कहां बात कही जा रही है जिस पर भरोसा करता है। और आप ये अचरज की बात नहीं है कि इतनी खूबसूरत बात है कि लोग जो अपने पड़ोस में अपनी बात कहने से हिचकते हैं, वे आकाशवाणी में फोन लगाकर अपनी बात कहते हैं, अपने परिवार की, अपनी समस्याएं, अपने मनोदशा को वो व्यक्त करते हैं। तो तकनीकी रूप से इस चुनौती के बीच में, जैसे पत्थरों के बीच में नदी बहती है, आकाशवाणी को शायद इस परंपरा को बनाए रखते हुए पहुंच को और विस्तारित करना होगा और विविधता को बनाए रखना होगा। मुझे लगता है कि उन तमाम चीजों के बीच में हम जैसे लौट रहे हैं पुरानी तरफ, उस तरह से आकाशवाणी का एरा भी उसने स्वर्णिम युग को फिर से दोहराएगा।
1: आपके इस बात को सुनके सिर्फ तथास्तु कहने का दिल चाह रहा है, क्योंकि हम खुद भी चाहेंगे कि हमारी ये नदी कल कल बहती रहे, लोगों की प्यास बुझाती रहे, अपने किनारों पर हरियाली देती रहे। और कहते हैं ना कि गौमुख से निकली गंगा जब तक गंगा सागर तक नहीं पहुंचती तब तक अपनी यात्रा पूरी नहीं करती है, तो ये निर्बाध चलती रहे। बस एक बात और आपसे जानने का मन हो रहा है कि एक व्यक्ति के रूप में, एक श्रोता के रूप में, आकाशवाणी की कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है आपको या जिससे आप जुड़ा महसूस करते हैं?
0: जैसे परिवार का एक, मतलब आकाशवाणी परिवार का हिस्सा है। हमारे परिवार के बुजुर्गों ने रेडियो सुनकर, रेडियो घर में होना एक अनिवार्यता की तरह होता था। आज जब हम गाड़ी में निकलते हैं और तमाम चैनल्स के बीच में अगर विविध भारती पर आकर ट्यून हो जाता है, रेडियो लंबे समय तक वो चलता है, तो वो एक परिवार के सदस्य की तरह जो हमें सहजता है, जो हमें मार्गदर्शन करता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, जो मनोरंजन करता है, जो ज्ञान देता है, तो ऐसे तमाम चीजें एक जगह से अगर कहीं मिल रही है तो उसमें मुझे आकाशवाणी दिखाई देता है। और इसीलिए उसको हम बहुत अपनापे के साथ में, बहुत उस स्नेह के साथ में हम आकाशवाणी का नाम भी लेते हैं, उसके साथ जुड़ाव भी महसूस करते हैं।
1: आकाशवाणी का ये जुड़ाव, परिवार का ये एक अपनापन आपसे, हमसे, कार्यक्रमों से बना रहे सदा, यही कामना हमारी भी है। आकाशवाणी की इस यात्रा में, या यूं कहिए कि कार्यक्रम की इस यात्रा में अब हम आ पहुंचे हैं हमारे एक युवा शायर की ओर, जो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भी आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं अपनी शायरी को लेकर। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस कार्यक्रम में जो केंद्रित है आकाशवाणी की 90 वर्ष की यात्रा में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आकाशवाणी की याद को लेकर।
0: सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस इतने अहम प्रोग्राम में मुझे भी याद रखा। वैसे तो हमारे घर में रेडियो बहुत पहले आ गया था, जब मैंने होश संभाला तो हमारे यहाँ रेडियो मौजूद था
1: जी,
0: और उसमें हमारे घर में अक्सर मिलकर रोजाना सुबह का समाचार बुलेटिन और रात का समाचार बुलेटिन बहुत पाबंदी से सुना जाता था।
1: जी जी।
0: उसके अलावा हवा महल, और हवा महल का एक कैरेक्टर मुंशी इतवारी लाल मुझे आज भी याद है। मैं उनकी अक्सर नकल किया करता था, लोगों को हंसाया करता था उनको सुना सुना के।
1: जी।
0: फिर सबसे ज्यादा जो एक चीज मुझे अट्रैक्ट करती थी, रोमांचित करती थी, वो थी हॉकी की कॉमेंट्री। कॉमेंट्री जो आती थी वो ऐसा लगता था कि पूरे हम मैदान में बैठे हुए, सामने हमारे मैच हो रहा है। और वहीं से फिर मेरे अंदर हॉकी खेलने का शौक भी पैदा हुआ, मैंने हॉकी भी खेली।
1: जी।
0: फिर उर्दू के जो प्रोग्राम, हाँ नहीं उससे पहले तो बच्चों के प्रोग्राम गोपल और बाल सभा, वो मैं सुनता था जरूर, हमें सुनाया जाता था, बल्कि हमारी मदर कि ये सुनो देखो इसमें बच्चे कैसे बोलते हैं, क्या सुनाते हैं, तुम भी जाना है।
1: जी।
0: तो खैर जा तो नहीं पाया उसमें, लेकिन उसके बाद फिर मैं 83-84 में मैंने ऑडिशन दिया ड्रामा के लिए।
1: जी।
0: तो 85 में मैं कामयाब हुआ और 85 से मैं आकाशवाणी का आर्टिस्ट भी बन गया, ड्रामा आर्टिस्ट। काफी ड्रामा किए उसमें, बड़े अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका मिला। सबसे बड़ा जो फायदा मुझे आकाशवाणी को सुनने का, पहले सुनने का फिर बाद में जुड़ने का, ये हुआ कि भोपाल में रहने के नाते जो हमारी शैली है बोलने की या लहजा है, उस पर जो एक एतराज या किया जाता है या मजाक उड़ाया जाता है कि भोपाली ऐसे बोलने, सारे लोग नहीं, जो दूसरे लोग जो लोग बोलते हैं आकाशवाणी से, उनका बोलने का लहजा सीखा, कहाँ है और है में क्या फर्क है, मैं और मैं में क्या फर्क है। फिर मैं थिएटर से भी इसी वजह से जुड़ा, बल्कि पहले थिएटर में जुड़ गया था, बाद में आकाशवाणी में आया। तो आकाशवाणी ने सबसे ज्यादा मुझे सिखाया जैसे बोलना है। और दूसरी एक चीज बहुत जो सबसे ज्यादा अहम चीज है, वो है वक्त की पाबंदी।
1: बिल्कुल।
0: दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर 9 बजे का कोई प्रोग्राम है तो 9 बजे ही वो प्रसारित होगा।
1: जी जी।
0: तो ये चीज हमें अपनी लाइफ में भी मैंने उतारी, उसको सीखी, और मुझे उसका जो इनाम मिला वो ये है कि मेरी बहनें जो है वो मुझ पे इतना भरोसा करती है कि नहीं इसने अगर कह दिया इस वक्त तो ये आएगा,
1: क्या बात है,
0: और इसने अगर ये काम करने का ठान लिया है तो ये करेगा। मतलब मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ अगर कहीं से सीखा है तो उसका इनाम मुझे घर से ही मिल गया। दूसरी तो खैर तभी जानते हैं कि आज तक दुनिया का जो सबसे ज्यादा पहुंचने वाली आवाज है वो आकाशवाणी ही पहुंचती है, भले ही कितने मीडिया आ जाए, सोशल मीडिया और ये वो सब, लेकिन सबसे ज्यादा जो पहुंच है वो आकाशवाणी की है। और आकाशवाणी का से बहुत फायदा मुझे ये भी हुआ कि मेरा नाम भी बड़ी दूर दूर तक लोग जानने पहचानने लगे, अगर कहीं मैंने जाके अपना नाम बोले हाँ सुना है आपका नाम, जानते हैं।
1: जी जी जी। कुछ और कहना चाहेंगे?
0: शुभकामनाएं तो ये है कि जो लोग अगर किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो आकाशवाणी से जुड़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिखने पढ़ने का शौक पैदा होगा और उससे ये है कि कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और हाँ सबसे बड़ी चीज, नपीतुली बात करने का सलीका भी वो लोग सीख सकते हैं आकाशवाणी से जुड़ करके, जो आमतौर पर लोगों में होता नहीं, लेकिन यहाँ पर टाइम की जो लिमिट है वो हमको बहुत कुछ सिखाती है। सबसे बड़ी चीज वक्त की पाबंदी, और वक्त की उस लिमिट में बहुत बड़ी और बहुत सारी बात कह देना। जो नए बच्चे हैं, नए लोग हैं, वो अच्छी तरह आकाशवाणी से जुड़ सकते हैं तो जरूर जुड़े, और अगर नहीं जुड़ते तो उसको आकाशवाणी को सुने। दूसरे जो आजकल चैनल आ गए हैं उनका अपना स्टाइल है, वो कमर्शियल है, लेकिन आकाशवाणी ने हमेशा सकारात्मक संदेश दिए हैं। मैं 2-4 शेर आपको सुना देता हूँ।
1: स्वागत है
0: जी। मेरी बड़ी मशहूर गजल है, मतलब उसका है कि बुरा होकर भी वो अच्छा बहुत है, बुरा होकर भी वो अच्छा बहुत है, वो जैसा है नहीं बनता बहुत है, वो जैसा है नहीं बनता बहुत है। और 2-3 शेर ही सुनाऊंगा इसके, कि उसी से बात करना है कि जिसने, उसी से बात करना है कि जिसने हमें समझा नहीं पूछा बहुत है, हमें समझा नहीं पूछा बहुत है। और एक ये शेर आखिरी शेर है कि हमें कुछ देर में मंजिल मिलेगी, हमें कुछ देर में मंजिल मिलेगी, हमारा रास्ता सीधा बहुत है, हमारा रास्ता सीधा बहुत है।
1: बहुत खूब।

0: हमारे साथ हैं अभय फगरे। आप ख्यात बांसुरी वादक, जिनकी बांसुरी की मधुर तान आपने कईयों बार आकाशवाणी से सुनी होगी। स्वागत है प्रिय जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जो आकाशवाणी के 90 वर्ष के उत्सव के रूप में हम सब मना रहे हैं। आप आकाशवाणी को लेकर क्या महसूस करते हैं, या वो क्या अनुभव है आपका जिसे आप परिभाषित कर सकते हैं?
1: नमस्कार मिता जी, सबसे पहले तो आकाशवाणी के सारे परिवार को बधाइयां देता हूँ कि 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं आकाशवाणी के और आप उसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और जहाँ तक आकाशवाणी का मेरे दिल में या मेरे कार्य में योगदान है और मेरा इसके अंदर योगदान है, इसके अंदर तो बड़ी लंबी बातचीत हो सकती है, पर बहरहाल संक्षेप में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ।
0: स्वागत।
1: और आकाशवाणी का मैं शायद संगीतकार के रूप में हम लोगों की जनरेशन लगभग मतलब जो स्टाफ आर्टिस्ट भी रहे हैं उन लोगों की लगभग अंतिम जनरेशन है हम लोगों की
0: जी।
1: और हम लोगों ने जितना हमारे जीवन में आकाशवाणी का क्या इतना अद्भुत महत्व है कि हम बयान करना बड़ा मुश्किल होता है, पर आकाशवाणी ने जैसे हम लोगों को संगीत के लिए प्रेरित किया है और संगीतकार बनने के लिए प्रेरित किया है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। इतना अधिक संगीत और खासकर शास्त्रीय संगीत जिसे हम राग संगीत कहते हैं, ये हमने रेडियो से आकाशवाणी के माध्यम से ही हमें सब समझ में आया है। और ये हमारी मेरा सौभाग्य है कि मैं अंततः आकाशवाणी कलाकार के रूप में अपने सेवाएं आकाशवाणी को दे पाया और वहीं से फिर मैं अंततः रिटायर हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे संगीत जगत में और संस्कृति में अगर हम और बृहत रूप से देखेंगे तो भारतीय संस्कृति को सहेजने के माध्यम के रूप में देखेंगे तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है
0: जी। आप आकाशवाणी कलाकार के रूप में भी आपने सेवाएं लंबे समय तक दी हैं। यदि इससे अलहदा बात की जाए तो पूरे आकाशवाणी के कार्यक्रमों को लेकर या उसके कल्चर को लेकर या उसकी किसी विशेषता को लेकर आप कौन सी बात ऐसी महसूस करते हैं जिससे आप आकाशवाणी से जुड़े रहे, जुड़ना चाहते हैं या आज भी अपनापन महसूस करते हैं?
1: सबसे बड़ी बात तो है कि इसका धरातल पूरा का पूरा भारतीय है
0: जी।
1: मतलब ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हमने आइडियाज कहीं से बाहर से बारो नहीं करते थे। यहाँ का जो भी प्रोडक्शन होता था उसकी वैल्यू में भारतीयता सबसे ज्यादा झलकती थी, ये मुझे हमेशा लगा है। और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाता था, जैसे कि हमारे उत्सवों के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनते थे पहले और वो उत्सव मतलब पूरे साल भर में जितने भी उत्सव होते थे उनके प्रोडक्शन हुआ करते थे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में रेडियो पे होते थे, वो उसका कोई पैरेलल नहीं था।
0: भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और जो हमारे जीने का आधार है वो यदि हमें कहीं से मिलता रहता है तो बहुत सीधी सी बात है कि उसका आकर्षण, उसका लगाव या उसकी आत्मीयता हमें बांध कर रखती है।

0: आज
1: बिल्कुल
0: एक उत्सव की तरह हम आकाशवाणी के 90 वर्ष की इस यात्रा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। आप एक ख्यात बांसुरी वादक रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि क्यों ना आपकी बात का समापन और इस कार्यक्रम का समापन एक उस छोटी सी बांसुरी की धुन से किया जाए, जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध होते हैं, कार्यक्रम का समापन कर सकें।
1: जरूर जरूर मैं

बांसुरी की मधुर तान माहौल में रस घोल रही है। उत्सव की बेला अपने उत्कर्ष पर है। उत्सव जो 9 दशकों की यात्रा की निरंतरता का है। उत्सव है हमारे आपके भरोसे का, हमारे आपके साथ का, प्रीत की डोर से बंधे हमारे सपनों, उम्मीदों और प्रेम का, आने वाले समय और रोशनी का, जिसकी उजास दे रही है ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, मुबारकबाद आपको

0: आइए इस मौके को साकार करते हुए हमने बात की आकाशवाणी से जुड़े सुधीर श्रोताओं से, कलाकारों से, साहित्यकारों से।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष फोन आउट कार्यक्रम। प्रस्तुति थी अमिता त्रिवेदी की। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत झुक गया आसमां। इस फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज़ है, हसरत जयपुरी ने गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।

0: रोजा फिल्म के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए एक सूचना सुन लीजिएगा। आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित एवं स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटिस आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदन ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in और hopeyear@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: फॉरेक्स ट्रेडिंग, अभी एक ट्रेड में 6
7: ए हक्का
8: प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर,
6: मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: मालवा की शान।
1: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत,
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: जल्दी चलो, अरे गाड़ी आ गई है, अरे शादी में चलना है ना।
1: अरे मैं नहीं आता कहीं शादी में, मैं तो सुन रहा हूँ मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। तुम जाओ शादी में जाना हो तो।
2: रमा 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
3: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
2: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
4: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी है। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
3: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
5: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
7: और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना नारायणी बसुमती के सामने लोक निंदा के भय से आत्महत्या करने की बात कहती है। बसुमती उसे गर्भवती होने की बात छिपाकर शिबू के साथ गौना करने का सुझाव देती है। शिबू गौना कराकर नारायणी को अपने घर ले आता है। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और भविष्य के सपने समझौते हैं। यूनियन की आम सभा में यशवंत को यूनियन का प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। ब्राह्मण महाराज की मौत हो जाती है तो शिबू बेकार हो जाता है। बसुमती शिबू के घर आती है और 50 मजदूरों को साई नदी की साइड पर चल रहे काम पर ट्रांसफर करने की बात बताती है। उसी समय नारायणी को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। बसुमती नारायणी की गर्भवती होने की खबर सुनाती है तो शिबू बहुत खुश होता है। साई नदी की साइड पर आने के बाद शिबू की लिचू से मुलाकात होती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। लोकल लीडर शास्त्री जी का सहायक बलबीर स्वामी यशवंत से मिलता है और मजदूर हड़ताल की सूचना देता है। ये सुनकर यशवंत चौंक जाता है। अब

0: महारानी,
1: बहुत दर्द हो रहा है।
0: नारायणी क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: मुझे लगता है प्रसव का समय आ गया।
0: हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे किसके पास जाऊं मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं?
1: सुनो जी, तुम जल्दी से जाकर काकी को बुला लो।
0: ठीक है, मैं जाता हूँ काकी को बुलाने। तुम चिंता मत करना, मैं अभी काकी को बुलाकर जाता हूँ।
1: क्या करूं, क्या करूं मैं? पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि काकी के आने से पहले ही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ विद्यावासिनी, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो माँ मेरी।
2: नारायणी चिंता ना कर, नारायणी हम आ गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं बेटी।
1: काकी, मेरी जान निकलती जा रही है, बहुत पीड़ा हो रही है काकी।
2: बस बेटिया बस, पीड़ा से ही।
0: नारायणी
2: शिबुआ, अरे तू क्या कर रहा है यहाँ? चल जा, जा बाहर जा।
0: अच्छा अच्छा काकी।
2: बस नारायणी, बस बस बस बस बस बस, प्रसव होने वाला है। हाँ, तू चिंता न कर। माँ विंध्यवासिनी का नाम जप कर, माँ विंध्यवासिनी तेरा सब कष्ट हर लेगी। ये क्या हुआ? अरे अरे, बच्चा तो पैदा होते ही मर गया। और नारायणी, नारायणी को भी होश नहीं है। क्या करें हम? हे भगवान, क्या करें हम? ये पानी का छींटा इसके मुंह पर डालते हैं, होश आ जाएगा। ये ठीक रहेगा। नारायणी, नारायणी, नारायणी, मेरी बच्ची,
1: मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कैसा है काकी? बोलो ना काकी, मेरा बच्चा कैसा है?
2: छाती पर पत्थर रख ले नारायणी, छाती पर पत्थर रख ले।
1: क्यों?
2: तेरा लड़का पैदा होते ही भगवान को प्यारा हो गया।
1: नहीं,
2: ना बिटिया ना, ना रो बिटिया। अरे बिटिया ना, अरे जो भगवान को मंजूर है वो ही होता है। अरे अपने को संभाल नारायणी,
1: नारायणी
2: अपने शरीर को तो देख। हाय हाय, कितना कमजोर है। ना बेटी, ना ना मेरी बच्ची, ना।
1: आप ठीक कहती है काकी, मैं अपने को संभालने की कोशिश करती हूँ।
2: हाँ बेटी,
1: वैसे भी वो मेरे पाप की निशानी थी।
2: बेटी तो
1: भगवान ने, माँ विंध्यावासिनी ने मुझे इस पाप के बोझ से मुक्त कर दिया। बेटी, लेकिन काकी मैं क्या करूँ? मेरे सीने में जो माँ का दिल धड़क रहा है, उस दिल को कैसे समझाऊं काकी?
2: भगवान पर विश्वास रख नारायणी, भगवान पर विश्वास रख, भगवान सब भला करेंगे। बस बेटी,
1: आती हूँ
0: काकी। काकी, काकी, क्या हुआ काकी? नारायणी तो ठीक है ना?
2: हाँ बेटा, नारायणी तो बिल्कुल ठीक है, पर बेटा
0: क्या हुआ?
2: बेटा तुम्हारा बच्चा पैदा होते ही मर गया।
0: क्या क्या बोले जो? क्या बोले?
2: हाँ बेटा,
0: नहीं नहीं, अरे
2: नारायणी बड़ी बलवान है बेटा।
0: अरे नहीं,
2: होनी बड़ी बलवान है।
0: अरे नहीं काकी,
2: होनी बड़ी बलवान है।

0: नारायणी, ए नारायणी, कहाँ जा रही हो?
1: मजूरी करने।
0: मजूरी करने? पर अभी दो दिन पहले ही तो। नहीं नारायणी, नहीं, मैं तुझे मजूरी करने नहीं जाने दूंगा। अरे देख तो, तू कितनी कमजोर है, अभी अभी मजूरी? नहीं, देख तू अभी मजूरी नहीं कर पाएगी।
1: नहीं, मुझे जाना ही होगा।
0: नहीं नारायणी, नहीं, देख इस हालत में मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा।
1: आप समझते क्यों नहीं, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भूख से तड़प कर मरने से तो अच्छा है कि मजूरी करते हुए मर जाऊं। मुझे काम पर जाना ही होगा।
0: नारायणी, नारायणी। भगवान, हम गरीबों के भाग्य में दुखों का अंबार लगा हुआ है। अरे मुझसे बड़ा बदकिस्मत भला इस संसार में और कौन होगा? अरे मैं हट्टा कट्टा जवान, जवान मरण बेकार पड़ा हूं, और मेरी एक पसली की कमजोर पत्नी, अरे वो मजूरी करने गई है। ओ भगवान, भगवान मैं क्या करूं? संतान का मुख देखने के लिए कितनी उतावली थी मेरी नारायणी, मगर मगर भगवान तूने वो सबला से

0: वो सुख भी छीन लिया? क्यों क्यों छीना तूने उससे वो सुख? हे भगवान, अरे तेरी इच्छा के चलते ही अपनी संतान को साई में बहा देना पड़ा मुझे। अगर उसे कुछ हो गया ना, अगर उसे कुछ हो गया तो नहीं नहीं, उसे उसे उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो, अगर उसे कुछ हो गया ना तो भगवान मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, तुझे कभी माफ नहीं करूंगा भगवान। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भगवान, उसे कुछ नहीं
1: होगा। शंभू काका, शंभू काका,
2: तू आ गया यशवंत।
1: अरे आपका बुलावा सुनकर नंगे पैर दौड़ा आया हूँ। कोई विशेष काम है मुझसे काका?
2: अरे पहले बैठ तो सही।
1: अब कहो शंभू काका, किस प्रयोजन से बुलाया है तुमने मुझे?
2: देखो बेटा, मैंने मनोती मांगी थी कि दलित समाज से यूनियन का प्रतिनिधि बनने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करूंगा।
1: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है काका। बताइए कब करना है कथा पूजा का आयोजन?
2: परसों बेटा।
1: पंडित जी को कथा बांचने का निमंत्रण दिया कि नहीं?
2: गया था लेकिन निराश होकर वापस लौटना पड़ा।
1: क्यों काका?
2: अरे हम दलित जो हैं, पहले तो आने के लिए बमहनाई की दुहाई देकर आने से मना करता रहा, हाथ पैर जोड़ने पर किसी तरह माना तो मुंह फाड़ कर दक्षिणा की मांग कर बैठा, अन वस्त्र अलग से।
1: काका तो फिर पूजा कैसे होगी?
2: क्यों, क्या तू पढ़ा लिखा नहीं है?
1: अरे सो तो ठीक है काका, लेकिन ये मंत्र वंत्र मुझे कहाँ आता है?
2: क्या पंडित माँ के पेट से मंत्र सीख कर आता है?
1: नहीं तो।
2: अरे पंडित भी कथा की पुस्तकें पढ़कर ही मंत्र बांचता है, क्या तू ऐसा नहीं कर सकता?
1: मैं समझ गया काका, सब समझ गया। आप कथा के आयोजन की तैयारियां कीजिए। और हाँ काका, दलित मजदूरों के अलावा दूसरे मजदूरों और कंपनी के अफसरों को भी कथा में आने का न्योता दिया ना।
2: अरे पागलों वाली बात ना कर यशवंत, हम दलितों की लाइन में भला कौन आएगा, हम छोटी जात जो ठहरे।
1: अरे सुनो काका, दूसरे लोग भले ही हमें ईश्वर के सामने समान नहीं मानते हो, मगर हमारी नजर में सब समान हैं। हम सभी के बीच इंसानियत का रिश्ता जो है काका, और फिर न्योता देना तो हमारा कर्तव्य है, आना या ना आना उनकी अपनी इच्छा।
2: ठीक है यशवंत बेटा, मैं सभी को न्योता दे आऊंगा।
1: हाँ ठीक, ये हुई ना बात काका।
3: सुन भाई बामू,
4: बोल रहा हूँ,
3: अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम चील गिद्धों का आहार बनकर रह जाएंगे।
4: क्यों भाई रामू, क्यों?
3: देख बामू, जब हम चारे खेरा पर थे तो ठाकुर साहब की चापलूसी करके उनका विश्वास जीत लिया था। उसके बाद हमने वहाँ खूब चोरियाँ की, मगर भला हो ठाकुर साहब का, हम कभी पकड़े नहीं गए।
4: तू बिल्कुल ठीक कहता है रामू, यहाँ तो काम करना पड़ता है तब जाकर हमारा पेट भरता है।
3: और भैया बामू, काम करना हमारे बस का रोग है नहीं। काम किए बिना हम भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, तब क्या हमारी लाश को चील और गिद्ध नोच नोच कर नहीं खाएंगे?
4: अरे नहीं रामू भाई नहीं, अरे तेरी बात सुनकर मेरी आत्मा कांप उठती है, मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता भाई, कुछ सोच सोच भैया।
3: अरे चुप तो कर पहले, मुझे कुछ सोचने दे।
4: सोच ना। भाई तूने कुछ देखा?
3: हाँ हाँ देखा, अभी अभी एक जीप आकर रुकी है।
4: हाँ पर रामू भाई, ये जीप में कौन आया होगा?
3: अरे बामू, वो देख, जीप से कोई उतर रहा है।
4: हाँ, अरे वो तो अपने ठाकुर साहब हैं। रामू कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे?
3: अरे सपना नहीं बामू, ये सचमुच के ठाकुर साहब हैं।
4: अच्छा?
3: अरे अपने चारे घेरा वाले ठाकुर साहब।
4: अरे तो फिर जल्दी कर, ठाकुर साहब के कदमों में गिर जा।
3: चल चल चल चल बाबू, चल चल
4: पाए लागू ठाकुर साहब।
5: अरे रामू बामू तुम दोनों।
3: ठाकुर साहब हमने तो आपको देखते ही पहचान लिया था।
4: अब देखिए ना ठाकुर साहब, आपके बिना हमारी क्या हालत हो गई है, सूख कर कांटा हो गए। सरकार
3: सरकार आप यहीं पर रहने आए हैं ना?
4: अबे चुप। अरे खुद ही बोले जाएगा या ठाकुर साहब को भी कुछ बोलने देगा, हमें आशीर्वाद लेने देगा या नहीं? ठाकुर साहब ये तो नादान है
3: मालिक।
4: आप बताइए ये चारे खेरा से यहाँ कैसे आना हुआ हुजूर?
3: सरकार
5: मेरा ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर,
4: ट्रांसफर
5: चार्ज लेने आया हूँ।
3: कितना दया कितनी जल्दी हमारी भगवान। जब ठाकुर साहब यहाँ आ गए हैं तो हमारे दुखों का अंत समझो।
4: ठाकुर साहब हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं?

पूजा संपन्न हुई, आरती का समय हो गया है। सभी भक्तगण खड़े हो जाएं, भगवान सत्यनारायण की आरती गाएं।

0: बोलो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की
1: जय।
2: शंभु काका, अब आप सभी भक्तों में चरणामृत और प्रसाद का वितरण कर दीजिए।
3: ठीक है, लो भाई लो, चरणामृत लो, प्रसाद लो, लो लो, तुम भी लो,
4: मुझे भी दीजिए।
5: चरणामृत

0: एसपी साहब, आप
1: मुझे बुलवा लिया होता। आइए आइए आइए, कुर्सी पर बैठिए, आइए आइए।
2: देखो ठाकुर, अगर तुम्हें बुलाने से काम निकल सकता तो मैं ऐसा ही करता। अगर ऐसा नहीं किया तो इसलिए कि यहाँ आए बिना मेरा मकसद हल हो ही नहीं सकता था।
1: ठीक है सरकार, तो कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ।
2: ठाकुर, जानते हो मेरी पोस्टिंग विजिलेंस ब्रांच में है।
1: जी, क्या विजिलेंस ब्रांच?
2: हाँ।
1: लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिर विजिलेंस वालों को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई?
2: एक बात बताओ ठाकुर।
1: कही सरकार।
2: जिस समय साई एक्वेडक्ट की आधारशिला रखवाई गई थी, उस समय मंत्री जी के लिए आप लोगों ने एक मंच बनवाया था।
1: देखिए एसपी साहब, यहाँ पर मेरी नई नई पोस्टिंग हुई है, फिर भी दूसरे अफसरों से पता चला है कि मंत्री जी के लिए यहाँ पर एक मंच बनवाया गया था।
2: इस मंच को बनवाने में कितना समय लगा था?
1: सर, वो इस सवाल का जवाब तो मैं स्टोर कीपर से ही पूछकर दे सकता हूँ।
2: ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सीमेंट का खर्चा किसने दिया था? कंपनी ने या सरकार ने?
1: मेरे ख्याल से सीमेंट सरकार ने दिया था और बाकी काम हमारे मजदूरों ने किया था।
2: तो ये खर्च का हिसाब किताब कहाँ है?
1: वो स्टोर कीपर के पास।
2: स्टोर कीपर के पास, ठीक है, हिसाब किताब की फाइल मंगवाइए।
1: फाइल? आप बिल्कुल चिंता ना करें साहब, मैं फाइल लेकर खुद आपके दफ्तर में हाजिर हो जाऊंगा।
2: हाँ, ताकि तुम फाइल में मन माफिक फिर बदल कर सको।
1: अरे नहीं नहीं एसपी साहब, आप गलत समझ रहे हैं।
2: हम बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं ठाकुर, अभी इसी समय फाइल मंगवाओ, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा।
1: आप नाराज मत होइए सरकार, मैं अभी मंगवाता हूँ।
0: रामू बामू, अरे ओ रामू बामू, कहाँ मर गए दोनों? रामू बामू।
1: रामू, तू एसपी साहब के लिए जाकर चाय लेकर।
3: बिल्कुल सरकार।
1: बामू
4: जी सरकार,
1: तू स्टोर कीपर से सन 1974 की फाइल मांग कर ला।
4: 1974 की फाइल?
1: हाँ। एसपी साहब, ये फाइल 4 साल पहले की है, तब मेरी नियुक्ति यहाँ पर नहीं हुई थी। देखिए, मेरा कोई दोष नहीं है।
2: ये तो हम देख लेंगे, जिसका भी दोष होगा, जिसने भी सीमेंट का गबन किया होगा, सरकार उसी को तलब करेगी। तुम्हें सूख कर काटा होने की कोई जरूरत नहीं है।
4: लीजिए लीजिए डॉक्टर साहब, मैं ये फाइल ले आया। लीजिए डॉक्टर साहब।
2: ए बामू, फाइल मुझे दो। सुना नहीं तुमने?
1: दे दे बामू, फाइल एसपी साहब को दे दे।
4: लीजिए लीजिए ये लीजिए।
2: सन 1974, हाँ यही है वो फाइल ठाकुर। अब ये फाइल हमारे पास रहेगी।
1: मगर एसपी साहब, कंपनी की बदनामी तो होगी ही।
2: तुम अपना काम करो ठाकुर, विजिलेंस अपना काम करेगी। अगर सरकारी काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे?
1: समझ गया एसपी साहब, बिल्कुल समझ गया।
2: अब हम चलते हैं।
1: वो चाय आ रही सरकार।
2: चाय तुम पी लेना, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, समझे?
4: सरकार, एसपी साहब का फाइल भी लगा।
3: लेकिन सरकार, ये चाय
1: तू पी ले।
5: नारायणी नारायणी,

0: नारायणी
1: चिल्ला कह रहा है शिबू।
0: काकी तुम, काकी मेरी नारायणी को क्या हुआ है? वो लीजू है ना, वो कह रहा था कि नारायणी की तबीयत ठीक नहीं है।
1: हमने ही तो भेजा था उसे।
0: नारायणी है कहाँ काकी?
1: सो रही है।
0: सो रही है? पर काकी वो ठीक तो है ना?
1: हाँ हाँ ठीक है नारायणी, ठीक है।
0: पर काकी वो लीजू, काकी तुमने लीजू से ऐसा क्यों कलवाया?
1: अरे भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली शिबू। हाँ भगवान ने तेरी सुन ली। नारायणी का पैर भारी है।
0: अरे काकी काकी काकी।
1: अरे देखो मेरी बात सुन लेना, लेकिन अपने दिमाग से सोच कर।
2: मजदूर भाइयों, यूनियन के नेताओं ने कंपनी के अधिकारियों से कई बार बात की, लेकिन कंपनी हमारी मांगों पर गौर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अब हमारे पास अंतिम हथियार सिर्फ एक ही है और वो है हड़ताल।
3: सुनिए, हमारे मजदूर भाई जानना चाहते हैं कि कंपनी के साथ यूनियन की किन मुद्दों पर बातचीत हुई है।
2: बहुत अच्छा सवाल किया यशवंत तुमने। यूनियन कंपनी के साथ 1975 में हुआ समझौता रद्द करवाना चाहती है।
0: लेकिन यूनियन ऐसा क्यों चाहती है?
2: क्योंकि ये समझौता मजदूर विरोधी है।
3: और मैंने सुना है कि ये समझौता भी यूनियन ने ही किया था।
2: ठीक सुना है तुमने। दरअसल तब के यूनियन नेताओं को कंपनी ने खरीद लिया था। जब इस बात का पता चला तो पुराने नेताओं को बर्खास्त कर दिया गया, यूनियन में नए नेताओं को रखा गया। हम 1976 से ही इस समझौते को रद्द करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 साल के बाद भी इसका कोई परिणाम नहीं निकला। पानी अब सिर के ऊपर से निकल चुका है। अब हड़ताल होगी, आर पार की लड़ाई होगी।
1: ना ना नहीं नहीं, अरे हम हड़ताल नहीं करेंगे।
0: अरे काकी ये तू क्या कह रही है?
1: हम ठीक कह रहे हैं, हड़ताल से हिंसा होती है। अरे गांधी भगवान अहिंसा के पुजारी रहे ना, हा? तो हम सभी को अहिंसा का पालन करना चाहिए।
0: अरे चुप रह बुढ़िया तू।
3: बिल्कुल गलत बात कर रहे हो बलवीर बाबू तुम। तुमने काकी को बुढ़िया कहा? अरे बसुमती काकी हम सबकी माँ की उम्र से भी बड़ी हैं। कम से कम उनसे तो तुम्हें तमीज से बोलना चाहिए। यो मजदूर भाइयों, क्या मैंने कुछ गलत कहा?
0: नहीं बिल्कुल गलत नहीं कहा, बिल्कुल गलत नहीं कहा।
4: हम किसी मजदूर का अपमान सहन नहीं करेंगे,
0: नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।
2: शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। ये सभा आप लोगों के हित के लिए बुलाई गई है। हड़ताल आप लोगों के हित में होगी। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सभी यूनियन का साथ दें, यूनियन का विरोध न करें और जोर से नारा लगाएं हमारे साथ, मजदूर एकता
5: जिंदाबाद,
2: मजदूर एकता
5: जिंदाबाद,
2: मजदूरों पर अत्याचार
5: बंद करो, बंद करो।
2: मजदूर भाइयों, हड़ताल करने के लिए हमें किसानों का भी सहयोग लेना चाहिए, वो भी हमारी ही तरह मजदूर हैं। अगर मजदूर किसान एक हो जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी।
3: किसान मजदूर एकता
5: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
3: किसान मजदूर एकता
5: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
6: चल भाई बामू, चुपचाप यहाँ से खिसक ले। हाँ। अरे अब हमारा यहाँ क्या काम?
7: हाँ, भाई तू ठीक कहता है रामू, ठाकुर साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जब हम हड़ताल की खबर सुनाएंगे तो वो हमें अंग्रेजी शराब पीने को देंगे।
6: अरे तो जल्दी चल, मेरी तो अभी से लार टपक रही है।
7: चल, चल, चल, चल।
2: तो मजदूर भाइयों, हमारी अगली सभा अब खेत में होगी। वहाँ पर लोकल लीडर शास्त्री जी भी आएंगे। आज की सभा संपन्न होती है, सब लोग अपने अपने घर लौट जाएं।
0: चलो भाई, चलो।
2: मजदूर एकता, मजदूर एकता।
1: हड़ताल करने चले हैं। अरे जब भूखा मरने की नौबत आएगी ना, तब पता चलेगा। कर लो हड़ताल, हड़ताल करेंगे।

0: आई हो। अरे औरतों को इकट्ठा करो, अरे गीत गवाओ, सोहर गवाओ, अरे खुशियां बनाओ, अरे खुशियां बनाओ।
1: काकी काकी ये तो बता क्या हुआ, लड़का या लड़की?
0: अरे चाचा राम पधारे तुम्हारे घर।
1: अरे वाह सच काकी, लो लो काकी ये लो, अरे गांव में ये सिर्फ 5 का नोट है, अरे रख लो रख लो। मैं सभी लोगों को खुशखबरी सुनाकर आता हूँ, अभी आता हूँ। अरे बाबा, अरे मैं बाप बन गया।

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें आपने सुना जंग लगी तलवार का भाग 3। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के हित में एनडीए सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक मदद पारदर्शी तरीके से पहुंच रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के विकासखंडों और नगरीय निकायों में 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। वर्ष 1956 में इसे बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी के 591 रेडियो स्टेशनों से 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा हर दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में विश्वसनीय समाचार प्रसारित किए जाते हैं। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच दस्तक दे सकता है। विभाग ने आज राज्य के करीब 29 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का आज के स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं अर्चना सक्सेना और आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हम सभी जीवन में खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही हमें ऊर्जा देता है, आत्मविश्वास देता है और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से जीने की प्रेरणा देता है। श्रोताओं, हमारा स्वास्थ्य काफी हद तक हमारी दिनचर्या, खानपान, स्वच्छता के साथ ही बदलते मौसम के अनुसार बढ़ती गई सावधानियों पर भी निर्भर करता है। मौसम बदलते ही कई तरह की मौसमी बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। कभी तेज गर्मी, कभी उमस, कभी बारिश तो कभी अचानक तापमान में बदलाव, और यही बदलाव सर्दी, जुकाम, वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया और पेट संबंधी संक्रमण जैसी कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी सावधानी अपनाकर हम इन बीमारियों से काफी हद तक बच सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखना। इसके लिए हमें अपने भोजन में ताजे मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और पौष्टिक आहार शामिल करना बहुत आवश्यक है। विटामिन और खनिज तत्वों से भरपूर भोजन शरीर को संक्रमणों से लड़ने की शक्ति देता है। श्रोताओं, इसके साथ ही हमें बाहर खुले में रखे कटे हुए फल, बासी या अस्वच्छ भोजन से भी बचना चाहिए। पीने के लिए हमेशा साफ, फिल्टर किया हुआ या उबला हुआ पानी ही उपयोग में लाना चाहिए। कई बीमारियां श्रोताओं केवल स्वच्छता की कमी के कारण भी फैलती हैं, इसीलिए स्वच्छता का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। खासकर बरसात के मौसम में घर और घर के आसपास पानी जमा बिल्कुल ना होने दें। कूलर, गमले, खुले बर्तन या गड्ढों में जमे पानी में ही अक्सर मच्छर पनपते हैं, जो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करना भी श्रोताओं लाभदायक होता है। इसके साथ ही अपनी उम्र और शारीरिक क्षमता के अनुसार व्यायाम, योग या सुबह शाम टहलना भी शरीर को सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। श्रोताओं, एक और जरूरी बात ये कि आपको यदि लगातार बुखार, सर दर्द, शरीर में दर्द, खांसी या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही हो तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए आपको। स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना बेहतर होता है। समय पर उपचार कई गंभीर समस्याओं से हमें बचा सकता है। श्रोताओं, अक्सर हमारी छोटी छोटी लापरवाहियां ही बड़ी परेशानियों का कारण बन जाती हैं, इसीलिए यदि हम छोटी छोटी सावधानियों को अपनी आदत बना लें तो न केवल स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं बल्कि अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं, खुशहाल रख सकते हैं। और जब परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ होते हैं, खुशहाल होते हैं, तो जीवन का हर मौसम सुहाना लगता है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है एक भेंट वार्ता का। चलिए तो आपको सुनवाते हैं फिजियोथेरेपी से दर्द प्रबंधन के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी। डॉक्टर अभिनव साठे से बातचीत कर रहे हैं मनीष कजबीये।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूँ मनीष कजबीये। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो वर्तमान समय में लगभग हर आयु वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बदलती जीवन शैली, लंबे समय तक बैठकर काम करने की आदत, खेलकूद में चोट या बढ़ती उम्र के कारण होने वाले दर्द आज एक आम समस्या बन चुके हैं। ऐसे में फिजियोथेरेपी न केवल दर्द से राहत दिलाने में मदद करती है बल्कि व्यक्ति को सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करती है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फिजियोथेरेपी से दर्द प्रबंधन के आधुनिक तरीके विषय पर। इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव साठे जी को। अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार सर।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी के बारे में, कि आखिर ये फिजियोथेरेपी क्या है और दर्द प्रबंधन में इसकी क्या भूमिका रहती है।
2: मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा, फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ऐसा संकाय है जिसमें जो पेशेंट है उनको फिजिकल थेरेपी द्वारा, मतलब व्यायाम के द्वारा, एवं उसमें जो एडवांस तकनीक है उसके द्वारा उनके दर्द का प्रबंधन किया जाता है। और दर्द जैसे कि हमें पता है कई प्रकार के होते हैं, तो मान के चलें मांसपेशियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, एवं खेल के बाद कोई चोट जो लगती है उसके दर्द के निवारण में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान है।
1: जी जी जी, जो फिजियोथेरेपी होती है वह, उसको अगर हम सरल भाषा में अपने श्रोताओं को समझाना चाहे तो वह सिर्फ एक्सरसाइज के माध्यम से उन चोटों को ठीक किया जाता है। किसी तरह की कोई मशीनरीज वगैरह होती है जिनकी हेल्प लेकर भी हम इलाज करते हैं जो भी पेशेंट है उनका।
2: जी सर, मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा विस्तार में उत्तर देना चाहूंगा। फिजियोथेरेपी जैसे कि अपने आप में एक इंडिपेंडेंट संकाय है, स्वतंत्र रूप से इसमें कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो जिस प्रकार का पेशेंट है, मान लीजिए ऑर्थोपेडिक पेशेंट है, मान लीजिए न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड या कार्डियक इवन कुछ वेल्व सर्जरी के बाद, तो उस परेशानी से जब वो बाहर आ रहा है उसके अनुसार फिर फिजियोथेरेपी में कुछ प्रकार की एक्सरसाइजेज हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो परेशानी होने से पहले, हम एक उदाहरण स्वरूप देख लें, जैसे उम्र के साथ जोड़ों में परेशानी आते हैं, तो हम पेशेंट जब हमारे पास आते हैं दर्द के साथ तो हम उनको पहले ही ऐसे एक्सरसाइज बता देते हैं जिससे डिटियोरेशन, जो कि जोड़ों में विकार आना है आगे चल के, वो कम से कम रहे। इसके अलावा इलेक्ट्रोथेरेपी, जो कि एक अगेन

0: पार्ट है हमारे फिजियोथेरेपी का ही, तो जिसमें एडवांस तकनीकों से, मशीनों से इसमें दर्द का निवारण एवं परेशानियों को दूर किया जाता
1: है। जैसे अभी आपने बात करी हमसे इलेक्ट्रोथेरेपी की, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है और ये किस तरह से काम करती है।
0: जी, इसको भी मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा श्रोताओं के लिए। तो जब फिजियोथेरेपी संकाय सन 1950-60 के दौरान यूरोप प्रांत में जब ये डेवलप हो रहा था, तो उस समय फिजिकल थेरेपी के नाम से पहले जाना गया और फिर ये फिजियोथेरेपी की ओर आया। तो उस समय जो फिजिक्स, भौतिक चिकित्सा, इसलिए हम लोग हिंदी भाषा में इसको भौतिक चिकित्सक के रूप में भी हमको बताया जाता है, तो इसमें फिजिकल थेरेपी में, इलेक्ट्रोथेरेपी में जो मशीनें हैं, उदाहरण स्वरूप अल्ट्रासाउंड बता दूं, जो कि थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, एक जांच वाला अलग होता है, ये ट्रीटमेंट वाला अल्ट्रासाउंड होता है, लो लेजर करके एक थेरेपी होती है लो एम्पलीट्यूड पे उपयोग की जाने वाली, फिर कुछ ऐसे आइस थेरेपी, हीट थेरेपी, वैक्स थेरेपी, ये अलग अलग, या फिर डायथर्मी, एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसमें बहुत सारे चीजें आ जाती हैं। तो डायथर्मी को अगर मैं विस्तार से बताऊं तो इसका अर्थ होता है थ्रू हीट, तो हीट के द्वारा ट्रीटमेंट करना, जिसमें किसी ना किसी फिजिकल वे में, मतलब फिजिक्स के किसी सिद्धांत के ऊपर वो मशीन बनी होती है और अंत में उसका काम यही रहता है। मान लीजिए एक बैक एरिया है, पीठ का एरिया जहां दर्द है, उसको लगाने के कारण वहां का दर्द ठीक होता है, वहां की जो मांसपेशी है उसमें लचीलापन आता है, उस मांसपेशी में जो जकड़न आ गई है तो वहां पर खून का प्रवाह बढ़ाने से वहां पर वो लचीलापन भी वापस आ जाता है। तो इस तरीके से एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे एविडेंस बेस्ड इलेक्ट्रोथेरेपी भी हमें हेल्प करती है।
1: डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा किस तरह के दर्द से पीड़ित है और अधिकतर ऐसे कौन से दर्द लोगों में देखे जा रहे हैं, फिजियोथेरेपी के माध्यम से उन दर्द का निवारण संभव है।
0: जी, तो जैसे कि आजकल की हम जीवन शैली देख रहे हैं, काफी भागदौड़ वाली जीवन शैली है, और इसमें मैं विस्तार से बताना चाहूंगा, पहले यह देखा जाता था एक उम्र के बाद ही कुछ प्रकार के दर्द होते थे, बट आज के समय में जो हमारे मेन युवा हैं 30 से 45 वर्ष के आयु के, वो काफी प्रकार के दर्द या जिसको हम कहते हैं पेन से अफेक्टेड है, उसके पीछे उनका व्यवसाय, उनका काम करने का तरीका, कंप्यूटर का यूज, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जो आपने मेन सवाल किया कि कौन से दर्द, तो देखा जा रहा है गर्दन से संबंधित, जो कि पोस्चर से रिलेटेड है, शोल्डर हो गया, अत्यधिक ड्राइविंग के कारण जो हमारा टखना है, एंकल है, नीज है, इनमें भी देखा गया। और गलत पोस्चर का सबसे बड़ा कारण जो कि बैक पेन है, वो भी ये कॉमनेस्ट, ये पांच जो कॉमन एरिया बताए, मैं फिर से बताना चाहूंगा श्रोताओं के लिए, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, कमर का दर्द, घुटने और टखने का दर्द, ये ज्यादा करके कॉमन देखा गया और फिजियोथेरेपी इसमें काफी लाभकारी है।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे आधुनिक फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें और पारंपरिक उपचार पद्धति, इन दोनों की बात करें तो दोनों में क्या अंतर है?
0: सर, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। तो जैसे जो हमारी पुरानी थेरेपी का पार्ट थी या उपचार के तरीके थे, वो भी अपने जगह उस समय मानव जीवन के लिए जरूरी थे, बट अब जब हम उसको कंपेयर करते हैं फिजियोथेरेपी के द्वारा, तो पहले का जो पद्धति था उसके पीछे ये था कि दर्द का निवारण बस। आज के समय में जब फिजियोथेरेपी किसी पेशेंट को या किसी रूप में दी जा रही है, तो सिर्फ दर्द का निवारण नहीं, उस दर्द के पीछे का कारण, उस कारण को दूर करना एवं वह कारण के वापसी ना हो और फिर से उस पेशेंट को उसी साइकिल में पेन, फिर ईज, फिर पेन, इसमें ना जाना पड़े, तो ये बहुत बड़ा एक गैप हम कह सकते हैं जो फिल किया है फिजियोथेरेपी ने, कि एविडेंस बेस्ड किसी सिद्धांत या किसी उसके पीछे क्या रोग के पीछे कारण था और वो फिर उसको दर्द में तब्दील हो गया था, उसको ठीक करने में काफी कारगर है फिजियोथेरेपी।
1: जी डॉक्टर साहब के द्वारा जो दी गई जानकारियां है वह निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को उससे लाभ मिलेगा, हम यही उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स में कितना ज्यादा कारगर है फिजियोथेरेपी? रिहैबिलिटेशन की बात करें, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो क्या उसमें भी यह काफी ज्यादा असरदार है? और जो आजकल का जो समय है वो ज्यादा कॉम्पिटिशन का है, सभी लोग आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, तो उसमें यह कितना ज्यादा कारगर है फिटनेस की दृष्टि से भी खिलाड़ियों के?
0: सो सर, जैसे आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है श्रोताओं के लिए। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी या स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है, इसको हम कह सकते हैं जैसे कोच ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल है या खिलाड़ी के प्रदर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, बट उस प्रदर्शन के पीछे फिट रहने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत रोल है। इसको मैं दो भागों में बताना चाहूंगा इस सवाल का जवाब। तो पहली बात तो यह है कि फिजियोथेरेपिस्ट जब एक खिलाड़ी के साथ रहते हैं, तो मान लीजिए खेल के दौरान चोट होना स्वाभाविक है,

0: खेल इतना तेज है या बैक टू बैक मैचेस हैं, तो उसमें तो वो ठीक करने में मदद करता ही है। जब ऐसी कोई इंजरी हो गई, मान लीजिए एक नी का लिगामेंट जैसे हम कहते हैं वो टियर हो गया और उसके उपरांत प्लेयर को सर्जरी के लिए जाना पड़ा, तो सर्जरी के बाद ब्रिंगिंग हिम बैक टू नॉर्मल, उसको नॉर्मलसी पे लाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट बहुत बड़ा उपयोग साबित होता है पुनर्वास में, एवं खेल के दौरान, खेल के बाद, और वह इंजरी या जैसे मान ले बार बार टखने का मुड़ना वो ना हो, तो उसके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग देना। सो प्रीहैब, रिहैबिलिटेशन एंड एट द टाइम ऑफ इंजरी, ये तीनों डोमेन फिजियोथेरेपिस्ट एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी के लिए कवर करते हैं, जो कि उसके करियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं।
1: जी, तो क्या फिजियोथेरेपी दवाओं पर निर्भरता कम करने में भी मदद कर सकती है?
0: जरूर सर, ऐसे कई दर्द देखे गए हैं जहां पर फिजियोथेरेपी बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है और दर्द की दवाओं का उपयोग छोड़े जरूरत ही नहीं पड़ती है।
1: जी जी, शुरुआत में आपने बात करी थी बुजुर्गों की, जो बुजुर्गों में भी किसी तरह के जैसे जोड़ों के दर्द होता है, मांसपेशियों के दर्द होता है, तो आजकल ऐसी कौन सी आधुनिक तकनीकें हैं जिसके उपयोग से इस दर्द से राहत मिलती है, खासकर हम बात करें बुजुर्गों को?
0: जी सर, बहुत ही अच्छा सवाल किया सर। जो नियमित व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम है या हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, यह तो हमारे वृद्धजनों के लिए लाभकारी होती होती है। और जो कि आपने बोला आधुनिक क्या है, तो आज के समय में काफी टेलर्ड या काफी एविडेंस बेस्ड प्रोग्राम है, जिसको मैं पहले बताना चाहूंगा, उसका नाम है फॉल प्रिवेंशन प्रोग्राम। मतलब जैसे कि हमें पता ही है कि वृद्धावस्था में कुछ बैलेंस इशू होने के कारण गिरने की संभावना बढ़ जाती है, मसल की ताकत कम हो जाती है, तो पहले से ही अगर इस फॉल प्रिवेंशन प्रोग्राम को किया जाए, जो कि डेवलप्ड है वर्ल्ड लेवल पे और 8 से 10 एक्सरसाइज का यह प्रोग्राम है, तो ऐसा पहले से ही कराकर वृद्धजनों में जो गिरने की संभावना है उसको कम किया जा सकता है, उससे आगे होने वाली ऑर्थोपेडिक जो परेशानियां, फ्रैक्चर या बोन इंजरीज, वो भी कम हो सकती हैं और एक हेल्थी लाइफ को प्रमोट करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती
1: है। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे अभ्यास भी है जिन्हें लोग घर पर कर सकते हैं?
0: जरूर सर, फिजियोथेरेपी के ऐसे कई व्यायाम हैं जो कि आम जन अपने घर पर कर सकते हैं, बस इसमें यही है कि आपके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए आपको एक योग्य और पंजीकृत फिजियोथेरेपिस्ट को पहले दिखाना है, उसके अनुसार फिर वो आपको एक व्यायाम का पूरा प्रोग्राम डिजाइन कर देंगे और फिर उसे आप अपने घर पर कर सकते हैं।
1: जी, हम अपने श्रोताओं को कहना चाहेंगे, अगर वो किसी भी तरह की कोई फिजियोथेरेपी करना चाहे तो स्वयं से ना करे, सोशल मीडिया से देख कर ना करे, सोशल साइट्स पे जाकर ना करे, बल्कि जो पंजीकृत फिजियोथेरेपिस्ट है उनसे सलाह लेकर ही किसी तरह की कोई एक्सरसाइज घर पर करें। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी उपचार शुरू करने से पहले क्या हमें किन्हीं बातों का ध्यान देने की जरूरत है?
0: बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल है सर, जब फिजियोथेरेपी हमें शुरुआत करनी है तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, आप एक पंजीकृत योग्य फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उनके पास आप अपनी पुरानी कोई रिपोर्ट है, कोई जांच है या कहीं और किसी पद्धति का ट्रीटमेंट लिया है उसकी जानकारी भी फिजियोथेरेपिस्ट को दें, और इसके अलावा और क्या उनकी पूर्व में सर्जरी या कोई और परेशानी है उसके भी फिजियोथेरेपिस्ट को बताएं। इससे क्या होगा सर, फिजियोथेरेपिस्ट जब आंकलन करेगा उस मरीज का तो उसको आसानी हो जाएगी और फिर उसके अनुसार क्या उसको दिया जा सकता है, क्या नहीं दिया जा सकता है, उसमें आसानी होगी। मैं इसको उदाहरण स्वरूप बताना चाहूंगा क्यों जरूरी है। जैसे कि एक हार्ट का पेशेंट आता है, हार्ट के पेशेंट में कोई वेल्व की सर्जरी हुई है जो कि एक मैग्नेटिक डिवाइस लगा है, तो हमारी फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी जो संकाय है वह कई जगह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जिसका अर्थ है वेल्व जैसे सर्जरी है वहां पर नहीं दिया जा सकता, या कोई महिला है जो गर्भावस्था में है उन्हें भी कई ऐसी मशीनें हैं, जब देखा जाए तो लगभग सभी मशीनें नहीं दी जा सकती। तो जितना डिटेल्ड में, जितना विस्तार से पेशेंट अपने फिजियोथेरेपिस्ट को अपनी जानकारियां देगा, तो एक तो आंकलन करने में, असेसमेंट करने में, दूसरा ट्रीटमेंट डिजाइन करने में भी काफी मदद होगी।
1: जी, निश्चित तौर पर हम यही कह सकते हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में फिजियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। अब चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को, जो भी यह कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे ताकि वे दर्द से बचाव और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रख सके?
0: मेरा हमारे श्रोताओं से यही कहना है कि आहार बहुत अच्छे से लें, संपूर्ण आहार लें, नींद अच्छी लें, ये बहुत बड़ा एक पहलू है हमारे स्वस्थ जीवन का। रोजमर्रा में कोई ना कोई तरीके का, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वॉकिंग हो, इस प्रकार का कुछ व्यायाम करे, एवं कम से कम हमारे शरीर के जितने हमारे जो मेजर मेजर जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं, उनको मूवमेंट करने की कोशिश करें, बैलेंस ट्रेनिंग करें, और इससे आप स्वस्थ रहेंगे और जो हमारा फिट इंडिया का सपना है वो जरूर पूरा हो।
1: बिल्कुल अभिनव जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मनीष जी।
2: श्रोताओं, अभी हमने डॉक्टर अभिनव साठे से फिजियोथेरेपी से दर्द प्रबंधन के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी ली और यही उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। और श्रोताओं, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब एक बार फिर रुख करते हैं मनोरंजन की ओर और साथ मिलकर सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, टेक्नोलॉजी आज केवल हमारी सुविधा का माध्यम ही नहीं रही है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी पहले से अधिक आसान और प्रभावी बना रही है। इन्हीं से एक जो खास है इनमें, डिजिटल बायोमार्कर, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी जानकारी या संकेत जो डिजिटल उपकरणों के माध्यम से एकत्र की जाती है, श्रोताओं, डिजिटल बायोमार्कर कहलाती है। सरल भाषा में कहें तो जब कोई स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड, मोबाइल हेल्थ ऐप या अन्य कोई डिजिटल डिवाइस जो हमारे शरीर की गतिविधियों और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को लगातार रिकॉर्ड करती है, तो उससे मिलने वाली जानकारियों को बायोमार्कर कहा जाता है। इनके द्वारा हार्ट रेट हमारा, नींद, चलने के कदम, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग या शरीर की अन्य गतिविधियों को स्वास्थ्य की स्थिति से समझने में मदद मिलती है। यानी श्रोताओं, सेहत अब जो है तकनीक से बेहतर होती जा रही है, या ये कहें कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बन रही है। चलिए तो एक और गीत

0: श्रोताओं, अब समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते यही कहेंगे, कार्यक्रम यूं ही सुनते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर भेजते रहें। पत्र लिखने का पता है, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल, पिन 462002। और अब फिर मिलने के वादे के साथ एक बार फिर हम करते हैं नमस्कार।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: ओहो, क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
6: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
7: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
6: तो सुनते रहिए मालवा किसान,
8: आकाशवाणी इंदौर।
7: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
9: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। कलाकार हैं आशीष श्रीवास्तव और साथी। इनसे सुनते हैं बुंदेली लोकगीत। पहले सुनते हैं स्वांग गीत।

आशीष श्रीवास्तव और साथियों के गाए इस बुंदेली लोकगीत के साथ ही लोक संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज के कलाकार हैं राजेंद्र पारिख। इनसे सुनते हैं गीत और भजन। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। पहले सुनते हैं इन्हीं का गाया गीत।

0: राजेंद्र पारिक के गए इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: ओहो क्या है बात, अब तो हर पल हम हैं आपके साथ। आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर सुने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं। ये ऐप ऑनलाइन एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस तरह आप और हम हुए एक साथ, तो सुनते रहिए आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है मुकेश का गाया हुआ। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम संगम।

0: मुकेश की आवाज़ में गाए फूल बने अंगारे फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 2:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है।

0: उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे हैं। इंदौर में कल से ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय वृद्धि जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो, कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मौके पर आकाशवाणी को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट के लिए उनका कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन से मुकाबला होगा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें रिक्त होने जा रही हैं। इन 3 सीटों की पूर्ति के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन प्रक्रिया के तहत आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है। भाजपा पहले ही 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि 1 सीट के लिए कांग्रेस द्वारा घोषित उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। जून के शुरुआती दिनों में ही प्रदेश में औसत से 65% से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक पूरे प्रदेश में औसतन आधा इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश केवल 8.3 मिलीमीटर मानी जाती है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। वहीं आज प्रदेश के करीब आधे हिस्से में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जलगंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में लखुंदर नदी पर स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवपुरी में कल 35वीं एनसीसी बटालियन के द्वारा आयोजित एनसीसी शिविर में कैडेटों ने रक्तदान किया। जबलपुर में बारिश से जलभराव की परेशानी से निपटने के लिए निगम आयुक्त ने आगामी 15 दिनों में नालों और नालियों की सफाई तथा जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर नर्मदापुरम के बनखेड़ी में साइकिल रैली का आयोजन कल किया गया। कटनी में पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने पर 30 जून तक लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
4: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
3: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
5: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
6: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.

0: newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी।

0: समाचार दिल्ली।
1: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और इसराइल के बीच हालिय सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद से बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से ये पत्र आया। रामचंद माखीजा काफिर, सविता, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद, श्रेया, पूनम वाधवानी और समस्त माखीजा परिवार। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दत्तनेगी से भागवत वर्मा। इन सभी श्रोताओं की पसंद है आनंद बख्शी की शब्द रचना, धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाज़ किशोर कुमार की है और फिल्म है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

अगला गीत इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा है, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरोल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, अलिया, शोएब खान पोत्रा, मुश्ताबा खान, राउफ भाई शाहिद, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, महाराष्ट्र बीड शहर से ये पत्र आया, प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया और प्रदीप और केशव पटेल का। इन सभी श्रोताओं ने सुना चाहा वक्त फिल्म का गाना, जिसे गाया आशा भोसले ने, धुन तैयार की रवि ने और गीत लिखा साहिल लुधियानवी ने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश के फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का अगला गीत कर्तव्य फिल्म का है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। कफी लजर ने इस गीत को लिखा, धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहा है उपाध्याय नगर देवास से मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा शिवम, सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद जसवानी, पंकज और रानी सनी जसवानी, गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल भगवान, गोविंद सालिग्राम, दशरथ बागवान, लोकेंद्र वर्मा, राजाराम नगर देवास से पत्र है राजू अग्रवाल, मधु राकेश अग्रवाल का। इसी गीत को सुनना चाहा है जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा और कालू भैया ने।

प्रेम गीत फिल्म का अगला गीत गाया जगजीत सिंह ने। इंदिवर ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया जगजीत सिंह ने ही। सुनना चाहा है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, यहीं से दान सिंह रावत, रानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ रावत। तो आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पर प्रेम गीत का गाना।

भाटापारा दत्रेंगी से पत्र आया द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झवेंद्र कुमार वर्मा का। इन श्रोताओं ने सुनना चाहा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं इन श्रोताओं की पसंद का अगला गीत। धोरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू, भूपेन साहू। राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, एमपी शाजापुर से ये पत्र आया। मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशिद रक्षित और समस्त राजावत परिवार का। इन श्रोताओं की पसंद है साथी फिल्म का गीत, जिसे गाया मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने। संगीत नौशाद का और इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने।

0: साथी फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में जानकारी दी कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि आज पूरा राष्ट्र आकाशवाणी से जुड़ा है। आकाशवाणी के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त हो रही है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित की जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। प्रदेश के विकास खंडों और नगरीय निकायों में 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है और मौसम विभाग ने प्रदेश के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभागों के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए आपको जानकारी दे दें आज शाम प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति रहेगा, जिसमें आज आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल द्वारा शासकीय सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल में 5 जून 2026 को आयोजित तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:33, शाम 6:30 और रात 8:35 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6:00। आजकल इसका समय है 6:40 पर। 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन। आकाशवाणी भोपाल से 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा, जिसमें सुनिएगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष किसान सशक्तिकरण, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 8:00। रात 9:30 पब्लिक स्पीक हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। समय रहेगा रात 10:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में

रात 10:30 बजे सुनिएगा रसिक लाल अंधारिया का ख्याल गायन। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय 2:01:51 हुए हैं। अब मीडियम वेव पर हमारा ट्रांसमिशन कुछ देर के लिए बंद होता है। इस बीच कार्यक्रम डीटीएच पर जारी रहेगा। शाम 5 बजे से आप हमारे कार्यक्रम पुनः मीडियम वेव 188.32 मीटर्स पर सुन सकेंगे।

राजेंद्र परिक की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये राम स्तुति। इसके साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण, डीजे सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है, जिसे हमने लिया घर फिल्म से, गुलजार की शब्द रचना, संगीत आर डी बर्मन का।

0: लगता है कि यहाँ मिल गया।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में हंसते जख्म का फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत सिर्फ तुम फिल्म से हमने लिया है, जिसे लिखा समीर ने, नदीम श्रवण का संगीत है, आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की है।

0: हम तुम्हारे हैं सनम, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल को। प्रवीण भारद्वाज ने इस गीत को लिखा था, संगीत था डब्बू मलिक का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास, जनधन, मुद्रा और प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं, वित्तीय सुरक्षा और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में कल से 13 जून तक चलेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में बताया कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। प्रदेश के विकास खंडों और नगरीय निकायों में 12 से 18 जून तक जन कल्याण शिविर आयोजित कर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों का पंजीयन और लाभ वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत अब तक 2,12,000 से अधिक जल संरचनाएं बनाई जा चुकी हैं और 3,66,000 तक पहुंचने का लक्ष्य है। और मौसम विभाग ने प्रदेश के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभागों के कई जिलों में आज आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये डीटीएच का प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। लीजिए अब सुनिए उर्दू कार्यक्रम आईना।

0: आदाब सामईन, आकाशवाणी भोपाल के उर्दू प्रोग्राम आईना में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी दोस्त आफरीन बानो। आज के प्रोग्राम में हम उर्दू अदब की एक अहम अदबी रिवायत यानी तरक्की पसंद तहरीक और उसके असरात पर गुफ्तगू करेंगे। सामईन, उर्दू अदब की तारीख में तरक्की पसंद तहरीक ने एक नए फिक्री बाब का इजाफा किया। इस तहरीक से वाबस्ता अदीबों और शायरों ने अदब को महज तफरी या जज्बाती इजहार तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे समाजी शऊर और इंसानी मसाइल के इजहार का जरिया बनाया। भोपाल को उर्दू जबान व अदब के एक अहम मरकज की हैसियत हासिल रही है। यहाँ की अदबी फजा, इल्मी इदारे, मुशायरे और अदबी नशस्तें उर्दू अदब की तरक्की में अहम किरदार अदा करती रही हैं। इसी पस मंजर में आज की पहली पेशकश है डॉक्टर मर्जिया आरिफ की तकरीर, तरक्की पसंद मुसन्निफीन और भोपाल। आइए सुनते हैं।
1: उर्दू ज़बान, उसका अदब, ख़ास तौर पर शायरी शुरू से तरक्की पसंदी की नुमाइंदगी करती है। तरक्की पसंद तहरीक ने पूरे इंसानी समाज के तारीख पहलुओं को रोशन करने पर जोर दिया, मगर उसकी तवज्जो ज़बान व अदब पर ज़्यादा रही और यह अपने अहद की इनकलाबी तहरीक तस्लीम की गई, बल्कि निसफ सदी से ज़्यादा मुद्दत तक इसने मुल्क के तालीम याफ्ता तबके को अपने साथ जोड़े रखा और इस तंजीम की शाखें बर सग़ीर में मुनज़्ज़म तौर पर काम करती रहीं। 1935 में सज्जाद ज़हीर और उनके साथियों ने लंदन में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद रखी और हिंदुस्तान में कृष्ण चंद, राजेंद्र सिंह बेदी, इस्मत चुगताई, फैज़ अहमद फैज़, मखदूम

सरदार जाफरी वगैरह ने इसको मकबूल बनाने में अहम हिस्सा लिया। इसके ऐलान नामे में तलकीन की गई कि हर तरक्की पसंद अदीब और शायर अपने माहौल का जायज़ा लेकर समाज के बुनियादी मसाइल को अपनी तख्लीकात का मौजू बनाए। नस्ली तासुब, समाजी पस्ती, गरीबी, फ़िरका परस्ती को ख़त्म करने की कोशिश करे। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली आल इंडिया कॉन्फ्रेंस 1936 में प्रेमचंद की ज़ेर सदारत लखनऊ में हुई, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि सच्चा अदब उन तख्लीकात को ही कहा जा सकता है जिसके ज़रिए क़ुव्वत और अमल की तहरीक पैदा हो। तरक्की पसंद अदब बेदारी का आयनादार होते हुए रूहानी और ज़हनी तस्कीन का बाइस भी होता है। प्रेमचंद ने तरक्की पसंद अदब को माशरे की इस्लाह के लिए ज़रूरी बताया, लेकिन कॉन्फ्रेंस की बाजगश्त अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि सज्जाद ज़हीर और सरदार जाफरी के करीबी हलके ने तरक्की पसंद मुसन्निफीन तहरीक को अदब से ज़्यादा सियासत का तर्जुमान बना दिया और यह इश्तराकियत की अलमबरदार बनकर रह गई। मजबूरन इससे नाराज़ कलमकारों को तहरीक से अलहदा होना पड़ा, क्योंकि तंजीम अपने बुनियादी मकासद समाज की फलाह बहबूद से हटकर इश्तराकियत के लिए काम करने लगी। पहले उसका मकसद साम्राज्यियत का मुकाबला था, अवाम और ख़वास इसीलिए उसके साथ थे, लेकिन आज़ादी के बाद तहरीक की दिलचस्पी कम्युनिस्ट नज़रियात के इशात तक महदूद हो गई। मुल्क की आज़ादी को भी ये लोग धोखा करार देने लगे, लिहाजा हुकूमत भी इसे शुबे की नज़र से देखने लगी। इसके अखबारात और रसाइल पर पाबंदी लगने लगी और रहनुमाओं की पकड़ धकड़ शुरू हो गई। अंजुमन की भेमड़ी कॉन्फ्रेंस ने रही सही कसर पूरी कर दी। 1949 में तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस का जो नया दस्तूर सामने आया वो जमहूरियत के पर्दे में कम्युनिस्ट निज़ाम का तर्जुमान था। 1992 की कराची कॉन्फ्रेंस मौलवी अब्दुल हक की सदारत में हुई तो उसमें सूरत हाल को संभालने की कोशिश के तौर पर माफ़ीनामा जैसी तजावीज़ सामने आईं। जहां तक भोपाल की नवाबी रियासत से अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का ताल्लुक़ है तो उसकी सरगर्मियां यहां कुछ ताखिर से शुरू हुईं और उन्हीं अदीब और शायरों ने इसमें दिलचस्पी ली जो दूसरे नामों से चलने वाली कम्युनिस्ट तहरीकों से मुतासिर या वाबस्ता थे। ये लोग पहले से जागीरदाराना समाज और राजा नवाबों की हुक्मरानी के मुखालिफ थे और चाहते थे कि अंग्रेज़ों की तरह उनका इक़्तदार कभी खात्मा हो जाए। शुरू में उन्हें कबूलियत हासिल नहीं हुई क्योंकि यहाँ की आवाम की अक्सरियत अपनी रियासत के बने बनाए निज़ाम को ख़त्म करना नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में नौजवान इसमें दिलचस्पी लेने लगे। 1945 में जब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का भोपाल में बाज़ाब्ता क़याम हुआ तो कुद्दूस सहबाई उसके सदर और मकसूद इमरानी जनरल सेक्रेटरी बने, लेकिन उसे एतबार और मकबूलियत उस वक्त मिली जब जानिसार अख्तर और उनकी अहलिया सफ़िया अख्तर, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता थे, हमीदिया कॉलेज के असातिज़ा बनकर भोपाल आए। ये पहले अंजुमन में काम कर रहे थे और तजर्बेकार भी थे। उन्होंने भोपाल में इस तहरीक के लिए माहौल बनाया और क़यादत संभाली तो नौजवान उनके पीछे जमा हो गए। इसी ज़माने में मुल्क आज़ाद हुआ था और तकसीम के नतीजे में फ़िरक़ावाराना कशीदगी उरूज पर थी, फिर भी भोपाल इससे महफूज रहा। इसी माहौल में जानिसार अख्तर ने भोपाल में अंजुमन की आल इंडिया कॉन्फ्रेंस करने का इरादा किया। अंजुमन के ज़ाब्ते असरनों मुरतब किए, मरकज़ी क़यादत से इसकी मंजूरी हासिल की। हामिद सईद ख़ान को इस्तक़बालिया कमेटी का सदर चुना गया। इंतज़ामिया कमेटी में हसन अली ख़ान, इब्राहिम यूसुफ़, अख्तर सईद ख़ान, कमर जमाली, अंजुम सुलेमानी, सहबा लखनवी और मोहम्मद अली ताज लिए गए। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के लिए मारूफ अदीब और आलिम काजी सैयद सुलेमान नदवी राज़ी हो गए। तो 25 जनवरी 1949 को शाम 7 बजे मिंटू हाल, जो बाद में हमीदिया कॉलेज बना, में अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने इसका इफ्तिताह फरमाया और उन्होंने नौजवान अदीबों और शायरों को नसीहत की कि अपनी ज़बान और कलम को आग भड़काने में नहीं बल्कि उसको बुझाने के काम में लाएं। अपने मीठे बोल और सुरीले गीतों से गम से भरे हुए दिलों को तस्कीन का पैगाम दें। मैंने तरक्की पसंदों को ये कहते हुए सुना है कि वो चाहते हैं कि हमारा अदब ज़िंदगी का साथ दे। ये बिल्कुल ठीक है। क्या शाहनामा व फर्रुखी व उनसरी के दीवान नहीं बताते सुल्तान महमूद के अहद में उस ममलिकत की क्या फिजा थी और कैसी अस्करियत छाई हुई थी। इसलिए आज के नौजवान अदीब जब अपने ज़माने के ख्यालात की
ترجمان

नहीं करना चाहते हैं तो ये दुनिया का कोई नया वाकया नहीं, यूं ही हुआ है, यूं ही होता आया है और यूं ही होता रहेगा। खुतबा इस्तकबालिया हामिद सईद खान ने पढ़ा और इफ्तिताही इजलास की सदारत किरीच चंद्र ने की। ये कॉन्फ्रेंस 6 इजलासों पर मुश्तमिल थी। इफ्तिताही जलसे के बाद दूसरे इजलास की सदारत शाहिद लतीफ़ ने की और तीसरा इजलास पंडित सुंदरलाल की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास को मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने भी खिताब किया। चौथे इजलास की सदर इसमें चुगताई थी और छठा इजलास जो अदबी तख्लीक़ात का दूसरा इजलास था महेंद्र नाथ की सदारत में मुनक़िद हुआ। छठे इजलास के बाद 28 जनवरी को जोश मली आबादी की सदारत में मशायरा हुआ। मशायरे से कबल जानिसार अख्तर ने इख्तितामिया तकरीर की जिसमें उन्होंने कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ जलसों का जायज़ा लेते हुए तरक्की पसंद अदब और तरक्की पसंद तहरीक के बास पहलुओं पर रोशनी डाली और तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की इस कॉन्फ्रेंस ने भोपाल के नौजवान अदीबों शायरों में हौसला पैदा किया, उनके सीनों को गरमाने के साथ साथ ज़बान अदब और शायरी के मुख्तलिफ मामलात का अहाता किया और गौर व फिक्र की नई राहें खोली। कॉन्फ्रेंस के शुरका में भोपाल के बहुत से अदीबों शायरों के अलावा बैरून शोरा अदीबों में पंडित सुंदरलाल, जोश मली आबादी, इसमत चुगताई, किरीच चंद्र, शाहिद लतीफ़, महेंद्र नाथ के साथ मजरू सुल्तानपुरी, ग़ुलाम रब्बानी ताबा, आदिल रशीद, उद्धव कुमार भी शामिल थे। सरदार जाफरी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिए गए, इसलिए वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो सके। जिन लोगों ने कॉन्फ्रेंस को पैगाम अरसाल किए थे उनमें श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर अब्दुल हक, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन और शाहिद अहमद दहलवी कराची काबिले ज़िक्र हैं। भोपाल में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस की कामयाबी ने जानिसार अख्तर की मकबूलियत में बड़ा इजाफा किया और उससे ख़ुद उनकी इल्मी और अदबी सरगर्मियों में भी तेज़ी आई। इसी के बाद मई 1949 की आखिरी तारीखों में उन्होंने भोपाल की अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ के सदर आसन अली ख़ान और दूसरे लोगों के साथ अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की भेमड़ी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जून 1949 में भोपाल का हुकूमत हिंद में इंजमाम अमल में आया और यहाँ चीफ कमिश्नर राज कायम हुआ तो अंजुमन के मेम्बरान की सख्त निगरानी होने लगी। भेमड़ी अंजुमन ने इंतहा पसंद रवैया अख्तियार किया था, इसलिए हुकूमत तरक्की पसंद मुसन्निफीन की सरगर्मियों को तश्वीश की निगाह से देख रही थी। भोपाल में भी चीफ कमिश्नर राज ने इस सिलसिले में सख्त इकदाम किए, तरक्की पसंदों के घरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी, गिरफ्तारियां भी अमल में आईं। इन नाजुक हालात का अंदाज़ा करके जानिसार अख्तर ने भोपाल छोड़ने का फ़ैसला किया और वो सफ़िया अख्तर को अपना इस्तीफ़ा सौंप कर 19 दिसंबर 1949 को बम्बई के लिए रवाना हो गए। तरक्की पसंदों की भोपाल कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हुई जब तहरीक इतबार की शिकार थी, उस पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, उनका जवाब देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफार्म साबित हुई। इसके ज़रिए हिंदुस्तान की आज़ादी, उर्दू ज़बान के बारे में मौक़िफ़, फ़िरक़ावाराना कत्ल व ग़ारतगिरी, मुल्क की तकसीम जैसे अहम सवालों पर बहस करके उनकी मुनासिब वजाहत करने, नीज़ अंजुमन पर आयद इल्ज़ामात का जवाब देने की जो कोशिश हुई उससे सभी मुतमईन नज़र आए। यूँ बहैसियत मजमूई ये कॉन्फ्रेंस अपने मकासद में कामयाब रही, लेकिन मुकामी तौर पर इसके असरात देर पर साबित नहीं हुए क्योंकि जानिसार अख्तर ने बम्बई जाने से कबल आसन अली ख़ान को अंजुमन के मकामी यूनिट का सदर बनाया था, लेकिन वो उसे मुत्तहिद नहीं रख सके। फिर भी अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन भोपाल के नाम से यहाँ अंजुमनें बनती रहीं और महदूद पैमाने पर उनकी सरगर्मियाँ भी चलती रहीं। नशिस्तों में मकामी शायर, अफसाना निगार, अदीब और सहाफ़ी शिरकत करके अपनी तख्लीकात पेश करते रहे। आखिर ज़माने में इसकी नशिस्तें अख्तर सईद ख़ान, फजल ताबिश के मकानात पर, प्रोफेसर कॉलोनी और लिबर्टी हाउस में होती रहीं, जिनमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सतप्रकाश सिंगर, कमर जमाली, इश्तियाक आरिफ, इशरत कादरी, मकसूद इमरानी, मोहम्मद अली ताज, अंजुम सुलेमानी, इब्राहिम यूसुफ, मतीन नियाज, कासिम नियाजी, नईम कोसर, खालिद आब्दी, वहीद परवाज़,
ज़फ़र सेवाई।

0: और सरफराज दानिश, जीएम नगमी, इम्तियाज़ अंजुम वगैरह हजरत शिरकत करते रहे। काफ़ी अरसा हो गया अब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का भोपाल में नाम भी सुनाई नहीं देता, न उसके ओहदेदार और अरकान मौजूद हैं। एक एक करके सभी रुख्सत हो गए।
1: सामीन, आपने तरक्की पसंद मुसन्निफीन और भोपाल के मौजू पर एक मालूमाती तकरीर समाअत फरमाई डॉक्टर मर्ज़िया आरिफ से। दोस्तों, उर्दू शायरी की रिवायत भी हमारे अदबी वर्से का एक अहम हिस्सा है। बाज़ शायरों का कलाम ज़मानो मकान की हदूद से बुलंद होकर हर दौर के कारी और सामे के दिल तक रसाई हासिल कर लेता है। मिर्ज़ा गालिब का शुमार भी ऐसे ही अजीम शौरा में होता है। उनकी शायरी में फिक्र की गहराई, एहसास की लताफत और इंसानी नफसियात की बारीक तर्जमानी मिलती है। अब पेश खिदमत है मिर्ज़ा गालिब की एक मशहूर गजल, जिसे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने अपनी दिलनशी आवाज में पेश किया है। आइए सुनते हैं।

आपने मिर्ज़ा गालिब की ये लाजवाब गज़ल समात फरमाई। सामईन, अफसाना उर्दू अदब की एक ऐसी सिन्फ है जो मुख्तसर दायरे में जिंदगी की बड़ी हकीकतों को बयां करने की सलाहियत रखती है। एक अच्छा अफसाना न सिर्फ कारी या सामे को मुतासिर करता है बल्कि उसे सोचने पर भी मजबूर कर देता है। आज के प्रोग्राम में शामिल अफसाना इंसानी रवैयों और माशरती अकदार के एक अहम पहलू को मौजू बनाता है जिसका उनवान है

0: दिखावा, आइए सुनते हैं।
1: हैदर अब्बास की साहबजादी महरीन अब्बास नरम मिजाज, खामोश, सादा तबीयत की मालिक थी। उसके ख्वाब छोटे थे लेकिन दिल बहुत बड़ा था। दुनियावी तालीम के साथ साथ उसने दीनी तालीम भी हासिल की थी। वो फर्माबरदार और लाडली बेटी थी, वालदेन के हर फैसले को हंसकर कबूल कर लेती। लेकिन उसके कुछ उसूल थे जिनके साथ वो बिल्कुल भी समझौता नहीं करती थी। उसके दिल में गरीब व बेसहारा लोगों के लिए मोहब्बत व हमदर्दी थी। खाली वक्त में अक्सर मुख्तलिफ़ एनजीओज़ में जाती, वहाँ की बच्चियों के साथ घुल मिल जाती, उनके दिल का हाल सुनती, जो मदद हो सकती वो करती। बच्चियाँ भी उसके साथ खुश रहती। महरीन की तालीम मुकम्मल हो गई थी, हैदर अली अब्बास साहब ने उसकी शादी तय कर दी। चंद ही दिनों बाद उसका निकाह था। घर में मेहमानों का हुजूम था। बी अम्मा अपनी प्यारी सी पोती पर नाज करती थीं, उसके नाम का सदका व खैरात तकसीम कर रही थीं। महरीन अम्मी के कमरे में रखी सिंगार मेज के सामने खड़ी अपनी लोंग उतारने की कोशिश कर रही थी। कभी उसे घुमाती तो कभी तेल लगाकर ढीली करती। काफ़ी देर की कोशिश के बाद लोंग नाक से निकलकर गिर गई। महरीन परेशान हो गई, इतनी मुश्किल से तो निकली थी और गिर गई। आंखों से ऐसी ओझल हुई कि लाख ढूंढने पर भी नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर अम्मी से खौफजदा लहजे में बोली, मेरी सोने की लोंग कहीं खो गई, इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही, अब मैं क्या करूँ। अर्जुमन जो महरीन के दुपट्टे पर टकन कर रही थी, दुपट्टा छोड़कर आईं और कहा, तुम जाओ, मैं देख लूँगी, पार्लर वाली तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। महरीन ने दबी आवाज़ में कहा, अम्मी मुझे पार्लर नहीं जाना, मैं घर पर ही तैयार हो जाऊंगी, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, ऐसी फजूल खर्ची से क्या फ़ायदा। मेरे अब्बू की हक हलाल की कमाई चंद घंटों के दिखावे के वास्ते पानी में बहा दूँ। अर्जुमन ने मोहब्बत भरे अंदाज में उससे कहा, बेटा जिंदगी में एक बार ही तो ऐसा मौका आता है जब लड़की दुल्हन बनती है, सारे ख़ानदान की निगाहें उसके ऊपर होती हैं, वो कितनी खूबसूरत लग रही है, कितने कीमती कपड़े और जेवर पहने हैं, और फिर घर पर इतने भारी कपड़े अकेले खुद पहने भी नहीं जा सकते, पार्लर वाली कपड़ों और जेवर की मैचिंग के हिसाब से दुल्हन को और ज़्यादा खूबसूरती से तैयार कर देती हैं। अब तुम ज़्यादा वक्त मत ज़ाया करो, जल्दी से जाओ, बाहर हाजरा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। महरीन ने सख्ती से मना करते हुए कहा, अम्मी मैं नहीं जाऊंगी, ये झूठी नुमाइश मुझे पसंद नहीं, हाजरा आपा को अंदर बुला लें, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, वो थोड़ा बहुत मेकअप कर देंगी। महरीन अर्जुमन में बात चल ही रही थी कि इतने में फारूक दौड़ता हुआ आया, अम्मी खालम्मी आपको बाहर बुला रही हैं। अर्जुमन गुस्से से बोली, मजाल है, घर का कोई फ़र्द वक्त व मौके की नज़ाकत समझे और मेरा कहना मान ले, हर एक की बातों पर मैं ही लीपा पोती करती रहूं। अब ये तुम्हारी खाला अम्मी 10 बातें सुनाएंगी, पार्लर के पैसे बचा लिए, 2 ही तो लड़कियां हैं, उन पर भी अपने अरमान नहीं निकाल रही, रूखी सूखी शादी कर रही हो। वैसे भी तुम्हारी ज़िद करने पर ना तो हमने स्टेज पर किसी तरह की सजावट करवाई, ना ही तस्वीर वाले को बुलाया, तुम्हारी वजह से क्या क्या सुनना पड़ेगा। अब तुम्हारे अब्बू के माशी हालात इतने गए गुजरे भी नहीं हैं कि वो अपनी बेटी की शादी शान व शौकत से ना कर सकें। महरीन ने कहा, अम्मी बात शान व शौकत की नहीं है, हम इतनी फजूल खर्ची करने के बजाय इस रकम से किसी बेसहारा यतीम बेवा की मदद कर सकते हैं, किसी को रोज़गार से लगा सकते हैं, हमारे एक दिन के दिखावे से बची रकम किसी की ज़िंदगी की खुशियों का सबब बन सकती है, हम कब तक दूसरों की खुशियों के लिए अपना तमाशा बनाते रहेंगे। ऐतराज़ करने वाले तो चांद में भी कमी निकाल देते हैं। आपको याद नहीं फराज भाई के वलीमे में क्या हुआ था, दुनिया भर के लजीज मुख्तलिफ किस्म के खाने बने थे, दुनियावी दिखावे के लिए क्या क्या नहीं करा था, लाखों का लाइट डेकोरेशन, स्टेज की सजावट, लेकिन ऐतराज़ करने वालों की एक अलग ही जमात होती है, कहने लगे, हाँ सब अच्छा था, बस ककड़ी कड़ी।

भी थी, पान और रख देते तो मजा आ जाता। अम्मी, आप एतराज करने वालों से ना घबराएं। अर्जुमन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महरीन, तुमसे तो कोई नहीं जीत सकता और ना ही मैं तुम्हें किसी काम के लिए मजबूर कर सकती हूँ। अब जो चाहो करो, बस इतना ख्याल रखना ससुराल में अपनी मनमानी न करना, सबकी खुशी में राजी रहना। महरीन ने अम्मी के गले में हाथ डालते हुए बड़े ही प्यारे अंदाज में दिलासा देते हुए कहा, मेरी प्यारी अम्मी, आप इस बात से बेफिक्र रहें, मैं आजकल की लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो छोटी छोटी बातों को लेकर शौहर और ससुराल वालों से झगड़ा करके घर बैठ जाती हैं। मैं अपने फ़र्ज़ को बखूबी निभाना जानती हूँ। मुझे मालूम है अपने शौहर और घर वालों के हुकूक़ कैसे अदा करना चाहिए। इतने में खाला अम्मी की ज़ोरदार आवाज़ आई, अर्जुमन क्या कर रही हो? अय्यूब मियाँ को बुलाओ, निकाह में जाने का वक्त हो गया है, बाहर मर्द इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ, मेहर की बात कर ली थी ना, जितने मैंने कहे थे? हाँ आपा, मेहर तो पहले ही तय कर लिया था, लेकिन हमने मेहर सिर्फ इतना ही रखा है जितना वो आसानी से वक्त पर अदा कर सकें। खाला अम्मी कुछ कहती इससे पहले ही अर्जुमन ने बात ख़त्म करते हुए कहा, आप ज़रा अम्मी और शबाना बाजी को कॉल करके कह दें जल्दी तैयार होकर यहीं आ जाएं, सब साथ चलेंगे। शादी के घर में चारों जानब अफरा तफरी हो रही थी, कोई कपड़ों पर प्रेस कर रहा था तो कोई अपने जेवरात निकाल रहा था। महरीन के कमरे में उसकी सहेलियां उसकी तैयारी में मदद कर रही थी। आखिरकार सब तैयार होकर शादी हॉल पहुंच गए। महरीन के ऊपर आज जो नूर उतरा था, हर कोई उसे देखकर दंग था। बिना पार्लर जाए इतनी हसीन लग रही थी। एक साहिबा ने पूछ ही लिया, कौन से पार्लर गई थी? महरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं घर पर ही तैयार हुई हूँ। अर्जुमन महरीन को स्टेज पर बिठाकर मेहमानों की मेज़बानी करने चली गई। महरीन के वालिद ने भी सबकी अच्छी तरह से मेज़बानी की, सबको मेज़ो कुर्सी पर बिठाकर खाना खिलवाया, जिससे खाने की फजूल बर्बादी नहीं हुई और जितना भी खाना बचा गरीबों मिस्कीन में तकसीम करवा दिया। बहरहाल महरीन की रुखसती हो गई, खुशहाल वक्त गुजरता गया। महरीन अपने शोहर और ससुराल के साथ खुश थी। दूसरी जानिब फराज भाई खाला अम्मी के बेटे की जिंदगी परेशानियों में मुब्तला थी। उनकी शादी के वक्त दोनों जानिब से बारात व वलीमे में किसी किस्म की कोई कमी पेशी न रही थी। जिसके पास जितना था उससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर खर्च किया। सारे अरमान निकाले गए थे। लोगों का कहना था ऐसे मौके बार बार नहीं आते, शादी ऐसी धूमधाम से करना चाहिए कि लोग जिंदगी भर याद रखें, चाहे इसके लिए कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। कितना आसान होता है ये कह देना, लेकिन कर्ज अदा करना उतना ही मुश्किल होता है। कर्ज लेकर अगर आप किसी कारोबार में लगा दें तो शायद वापस भी मिल जाता है, लेकिन कर्ज का पैसा शोबाजी और आतिशबाजी के हवाले कर देने से वो सिर्फ बर्बाद होता है। घर वालों ने तो खूब शान और शौकत से दिखावे के लिए फजूल खर्ची कर दी, मगर अब जब फराज भाई बुरी तरह से कर्ज में डूबे हैं तो कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। उनकी बीवी उनसे खुश नहीं है, आए दिन ताने देती रहती हैं, जब माशी हालात अच्छे नहीं थे तो हमको झूठे दिखावे में क्यों रखा? आप लोगों की शान और शौकत से मुतासिर होकर हमारे अब्बा जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको हर चीज ब्रांडेड दी, हत्ता के कार भी लोन पर लेकर दे दी। आप कर्ज में डूबे हैं। खाला अम्मी जो हर वक्त महरीन की वालदा को ताना मारती थी, कितनी कस्मा पुरसी से शादी कर रही हो, सादगी का बहाना करके हर चीज में कटौती करती हो। अर्जुमन ने लाख समझाने की कोशिश की, आपा ये सब फजूल खर्ची है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होती। आखिरकार आज वो खामोश नजरें झुकाए अपनी गलत सोच का एतराफ करते हुए कह रही थी, अर्जुमन तुम सही कहती थी, इस दुनियावी दिखावे में मैंने अपने बच्चों को इतनी परेशानी में मुब्तला कर दिया, काश मैं शादी में कर्ज ना लेती तो आज मेरा बेटा और बहू खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते। इतनी शानदार शादी करने के बाद भी फायजा फराज से अलहदगी चाहती है क्योंकि हम उसके मेयार के नहीं हैं।
जैसा कि हमने जाहिर

0: किया था, इंसान को अपनी चादर से ज्यादा पांव नहीं फैलाना चाहिए। महरीन सही कहती है, निकाह को जितना हो सके आसान बनाना चाहिए। चंद दिन बाद ही फायजा फराज को छोड़कर चली गई। खाला अम्मी तन्हा उदास बैठी हुई हॉल की दीवार पर लगी फराज मियाँ की शादी की तस्वीर में दूल्हा दुल्हन के दरमियान आतिशबाजी, नोटों की बारिश, रिश्तेदारों की मस्नूई मुस्कुराहट को देखकर रो पड़ी। अब उनको अपनी गलतियों और दिखावे का एहसास हो रहा था। इसी दरमियान महरीन खाला अम्मी के घर जाती है। उनको रोता देखकर खामोशी से उनके पीछे से कंधे पर हाथ रखकर बोली, जो हुआ सो हुआ खाला अम्मी, अभी भी वक्त है, हम अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं। खाला अम्मी अपने आंसुओं को थामते हुए बोली, महरीन तुम सही कहती हो, अब आज से हमारे खानदान में कोई भी शादी कर्ज लेकर नहीं होगी। हम जहेज नहीं दुआएं देंगे, पछतावे के आंसू कर्ज तो नहीं उतार सकते, लेकिन आने वाले तूफान को जरूर रोक सकते हैं। हमारी छोटी सी कोशिश इस समाज में बड़ा सुधार ला सकती है। अब हम सबको मिलकर इस समाज में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए।
1: अफसाना दिखावा समाप्त करने के बाद यकीनन आपने महसूस किया होगा कि अदब किस तरह जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को हमारे सामने पेश करता है। इसी पैगाम के साथ हमारा आज का प्रोग्राम आईना अपने अख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। आप अपने खत हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है उर्दू प्रोग्राम आईना, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, श्यामला हिल्स, आकाशवाणी भोपाल। पिन कोड है 462-002। अब आपकी दोस्त आफरीन को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम आईना, डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की तीसरी कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियो मैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने।
2: बजकर 32 मिनट 1 2 3 4 5

4:33 और कुछ 10:11 सेकंड। माइक 1, माइक 2 रेडी है। 4:34 होने को है।

नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और सभा की शुरुआत में श्रोताओं, प्रस्तुत है यूथ प्रोग्राम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं मार्गेशा
1: और दोस्तों मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा, और आज हम बनेंगे इस आपके मजेदार सफर में साथी।
0: तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आकाशवाणी का ये सफर आज पूरे 90 साल पूरे कर रहा है।
1: बिल्कुल दोस्तों, इस पूरे सफर में आकाशवाणी ने भारत को बनते हुए देखा। ये वो माध्यम बना जिसने हर भारतीय को देशभक्ति के धागे से जोड़ रखा है।
0: और दोस्तों आज का हमारा ये खास कार्यक्रम भी इसी बात पर केंद्रित होगा कि ये 90 वर्ष का जो सफर है ये कहाँ से शुरू हुआ, इसने क्या क्या अलग अलग मोड़ देखे, और आज आकाशवाणी दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो प्रसारण जो है उसकी कहानी कैसी रही। और दोस्तों जैसा आप जानते ही हैं कि हर कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे दो प्रश्न पूछते हैं, और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कार्यक्रम के अंत में हम बताते हैं। तो आज भी हम वैसे ही कुछ करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी की जो बहुत ही प्रसिद्ध सिग्नेचर ट्यून है उसे कंपोज किसने किया था।
1: और दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न है कि महासागर के सबसे भारी और गहरे भाग को क्या कहते हैं, आप ये बताइए। और दोस्तों इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देने वाले हैं। और हमने जो प्रश्न पूछे हैं आपसे, उन दोनों प्रश्नों को पूछने के पीछे भी ना कुछ खास कारण है। इन दोनों प्रश्नों के पीछे कुछ खास कहानी भी है जो कि हम आपको गीत के बाद बताएंगे।
0: बिल्कुल, तो फिर चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूंगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुंचते पहुंचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: तो दोस्तों, आज कुछ बातें कुछ गीत का ये जो विशेष अंक समर्पित है उस साथी को जो शायद आपके घर का सबसे पुराना सदस्य है।
5: दोस्तों, एक ऐसा साथी जिसने हमारे दादा दादी, माता पिता और अब हमें भी अपनी आवाज से जोड़े रखा है।
4: जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम मना रहे हैं आकाशवाणी के प्रसारण यात्रा के

0: चौथे वर्ष।
1: लेकिन दोस्तों इस कहानी की शुरुआत 1936 से भी पहले होती है। दोस्तों साल था 1927, तब भारत आजाद नहीं था, न टीवी था, न मोबाइल, न इंटरनेट, और उस दौर में दो निजी ट्रांसमिटरों से मुंबई और कलकत्ता में रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। लोगों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। एक डिब्बा और उसमें से निकलती हुई आवाजें, गीत और समाचार और दुनिया भर की बातें।
0: लेकिन दोस्तों हर खूबसूरत शुरुआत आसान तो नहीं होती। आकाशवाणी का भी शुरुआती दौर बहुत मुश्किल था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। पैसों की कमी थी और इसी के साथ तकनीकी चुनौतियां भी थी। निजी कंपनियां ज्यादा समय तक इसे चला नहीं सकी और आखिरकार फिर ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने हाथ में लिया और 1930 में इसका नाम रखा गया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस।
1: और फिर आया 8 जून 1936। ये वो दिन था जब इस सेवा को नया नाम मिला, ऑल इंडिया रेडियो। शायद किसी ने उस दिन ये नहीं सोचा होगा कि ये नाम आगे चलकर भारत की पहचान बन जाएगा।
0: उस समय दोस्तों देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था, लेकिन रेडियो की तरंगे आजादी की आहट सुन रही थी। वो भारत के पुनर्जन्म की तैयारी पहले से ही देख रही थी
1: और यही बात आकाशवाणी को विशेष बनाती है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं है दोस्तों, ये उस पीढ़ी की गवाह है जिसने स्वतंत्रता संग्राम देखा, आजादी देखी, विभाजन देखा और फिर नए भारत को बनते देखा। जब देश चलना सीख रहा था तब आकाशवाणी उसके साथ चल रही थी।
0: जब देश अपनी नई पहचान बना रहा था तब आकाशवाणी उसकी आवाज बन रही थी। इसी खूबसूरत सफर की आगे की कहानी बहुत ही मजेदार है दोस्तों, और ये कहानी हम आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष के इस खूबसूरत सफर की। दोस्तों, अगर आकाशवाणी की यादों का कोई एल्बम बनाया जाए ना, तो उसमें सिर्फ कार्यक्रम या सिर्फ गीत नहीं होंगे, उसमें भारत का इतिहास होगा, उसमें होगी भारत की नई पहचान।
5: 15 अगस्त 1947 की वो आधी रात जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी दुनिया तक पहुंचाया, तो उसके पीछे आकाशवाणी थी। करोड़ों भारतीयों ने पहली बार स्वतंत्र भारत की आवाज रेडियो पर सुनी।
4: दोस्तों, विभाजन की वो रात, विभाजन के डर के दिनों में भी लोगों तक सूचना पहुंचाने का सबसे बड़ा और विश्वसनीय माध्यम आकाशवाणी ही बनी।
5: 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, इन सभी कठिन समयों में ना देश की धड़कन आकाशवाणी के स्टूडियो से सुनाई देती थी। लोग रेडियो के आसपास बैठकर खबरें सुनते थे, हर बुलेटिन उम्मीद लेकर आता था।
4: दोस्तों, जब देश में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तब किसानों तक नई तकनीकी पहुंचाना बहुत जरूरी था और उसमें कई सारी चुनौतियां भी थी, और उस समय आकाशवाणी के कृषि कार्यक्रमों ने लाखों किसानों तक नई जानकारी पहुंचाई और उनकी इस कठिन सफर में मदद भी की।
5: जब देश में साक्षरता अभियान चले, जब स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ानी थी, जब पोलियो उन्मूलन का संदेश देना था, तब जब चुनाव में मतदान के लिए जागरूक करना था, हर बार आकाशवाणी सबसे आगे खड़ी दिखाई दी।
4: दोस्तों, आपने क्या वो कहावत कभी सुनी है कि जिस देश का रेडियो मजबूत हो, उसकी लोकतांत्रिक आवाज भी मजबूत होती है? और हाँ, आकाशवाणी ने इस भयंकर बड़ी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ निभाया।
5: और दोस्तों, यही वजह है कि इसे सिर्फ प्रसारण संस्था नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की संस्था भी कहा जाता है। इसने भारत को सिर्फ सूचना नहीं दी बल्कि शिक्षित किया, जोड़कर रखा और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी।
4: दोस्तों, समय भी बदला और रेडियो का जो यूज करने का तरीका है वो भी बदला, लेकिन पता है क्या नहीं बदला? आकाशवाणी की आवाज और आकाशवाणी का अपने देश के प्रति ईमानदारी और लोगों का इसके प्रति विश्वास। तो आगे तकनीकों के साथ आकाशवाणी कैसे बढ़ा और इसमें क्या क्या चुनौतियां आई, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस गीत के पार।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों, तकनीक बदल गई, रेडियो ट्रांजिस्टर से मोबाइल ऐप तक पहुंच गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है हमारे श्रोताओं का प्यार।
5: दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लाइव कार्यक्रमों में जब फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से कोई श्रोता कहता है, नमस्कार दीदी, मैं इस गाँव से बोल रहा हूँ, वो सिर्फ एक कॉल नहीं होता दोस्तों, वो विश्वास का एक रिश्ता होता है।
4: कितनी बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि किसी श्रोता ने कॉल किया और ये बताया कि हम पिछले 25 सालों से कार्यक्रम सुन रहे हैं, या फिर पहले मेरे पिताजी सुना करते थे, अब मैं सुनता हूँ, या फिर रोज सुबह दीदी हमारे यहाँ पर ना आपके यहाँ का रेडियो बजता है और हम रोज आकाशवाणी सुनते हैं। दोस्तों, ऐसी बातें सुनकर लगता है कि हम सिर्फ कार्यक्रम नहीं कर रहे, हम भरोसे का ना एक रिश्ता बुन रहे हैं आपके साथ।
5: बिल्कुल सही कहा तुमने श्रद्धा, और क्योंकि तकनीकें बहुत बढ़ गई है, इंटरनेट आ गया, सोशल मीडिया आ गया, और आज आकाशवाणी आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने फोन पर सुन सकते हैं, तो इस कारण से जब पूरे देश भर में से हमें फोन आता है तब भी एक अलग ही खास एहसास होता है कि हम सिर्फ मध्य प्रदेश या आकाशवाणी इंदौर की बात करें तो हम सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं, बल्कि आज आकाशवाणी का कोई भी चैनल, कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने से सुन सकता है। दोस्तों, एक बार तो हमें ईमेल आया था इटली से, जो श्रोता युववाणी सुना करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि जब भी हमें हमारे देश की याद आती है या कुछ भी ऐसी याद आती है तो वो रेडियो लगा लेते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आकाशवाणी को बहुत ज़्यादा खास बनाती है। और इस दौर में एक और बहुत खास बात है, और वो है कि हमें पत्र मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो पत्र है, हाथ से लिखे हुए पत्र हमें आज भी मिलते हैं, और आजकल आप देखेंगे तो जेन जी जो है वो कहीं ना कहीं हैंड रिटन लेटर्स को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है कि अपनी भावनाओं को खुद अपने हाथ से पत्र पर लिखकर भेजना, उसके कुछ अलग ही अंदाज होता है उसका। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि आज की तारीख में भी आकाशवाणी के पास हजारों खत आते हैं।
4: और दोस्तों, यही तो वो बात है कि आकाशवाणी के साथ आज भी वो आपके साथ पुराना रिश्ता बना हुआ है। कभी किसी गांव से, किसी छोटे शहर से, किसी बुजुर्ग श्रोता से जो लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सुना तो बहुत अच्छा लगा। सोचिए, एक ऐसे समय में जब लोग 2 लाइन का मैसेज टाइप करने में भी ना जल्दी जल्दी करते हैं, कोई इंसान बैठ कर कई पन्नों का पत्र लिखता है, तो ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये प्यार है, ये अपनापन है।
5: और शायद इसी कारण से आकाशवाणी बाकी माध्यमों से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, आकाशवाणी ना लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि इसे अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी बना लेते हैं।
4: और दोस्तों, 90 वर्षों में

0: आकाशवाणी ने देश को बढ़ते देखा है, एक नवजात राष्ट्र को विकसित होता भारत बनते देखा है, रेडियो के बड़े ट्रांसमीटरों से लेकर डिजिटल स्ट्रीमिंग तक का सफर देखा है।
1: लेकिन दोस्तों, इन सब में पता है क्या नहीं बदला? आकाशवाणी की मूल, इसकी वही भावना, जनता से जुड़ना, जनता के लिए बोलना और जनता की आवाज बनना।
0: आकाशवाणी का आदर्श वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी अधिक से अधिक लोगों के हित और सुख के लिए कार्य करना।
1: और दोस्तों, यही भावना पिछले 90 वर्षों से इसके हर प्रसारण में आपको दिखाई देगी।
0: दोस्तों, आज आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन दुनिया के 100 से अधिक देशों तक भारत की आवाज पहुंचाता है।
1: विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भी, जैसा हमने पहले अभी बात की, ये देश को एक अलग ही भावनात्मक सेतु से जोड़कर रखता है।
0: और दोस्तों, एक और खूबसूरत बात यह है कि चाहे कितना भी मॉडर्नाइजेशन हो जाए, आकाशवाणी कभी भी किसी प्रतिस्पर्धा में विश्वास नहीं करती। उनका विश्वास है चरेवेति, यानी निरंतर आगे बढ़ते रहना। और यही वजह है कि 9 दशक पूरे करने के बाद भी ये संस्था नई ऊर्जा, नई तकनीक और नए विचारों के साथ आगे बढ़ रही है।
1: और आज जब हम स्वयं इस परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए ये जो अवसर है ये और भी ज्यादा खास है और बहुत ही भावुक भी है।
0: हम उन लाखों श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 90 वर्षों में आकाशवाणी को अपना प्यार दिया,
1: और कामना करते हैं कि ये आवाज आने वाली पीढ़ियों तक यूं ही गूंजती रहेगी।
0: इसी के साथ आकाशवाणी की यात्रा चिरंजीवी हो, ये उम्मीद करते हैं। और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: दोस्तों, आज एक और बहुत ही खास दिवस मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे। हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में महासागरों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
1: दोस्तों, समुद्र पृथ्वी के 70% से अधिक हिस्से में फैला हुआ है और हमें सांस लेने के लिए कम से कम 50% ऑक्सीजन प्रदान करते हैं।
0: इस दिवस की अवधारणा पहली बार 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट के दौरान कनाडा के प्रतिनिधित्व द्वारा प्रस्तावित की गई थी।
1: साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन कमेटी ने प्रस्ताव पारित करके 8 जून को आधिकारिक रूप से विश्व महासागर दिवस के रूप में घोषित किया और तब से ये हर साल वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है।
0: हर साल संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संगठन इस दिन को मनाने के लिए एक विशेष थीम भी तय करते हैं। इस साल की जो थीम है वो दो अलग अलग स्तरों पर केंद्रित की गई है और जो यूएन की आधारिक थीम है वो ये है, री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद द ओशन। ये थीम इंसानों को समुद्र के साथ एक नए रक्षक यानी गार्डियन के रूप में जोड़ने के लिए प्रेरित करती है।
1: ग्लोबल एक्शन थीम स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लैनेट यानी हमारे नीले ग्रह के लिए मजबूत समुद्री संरक्षित क्षेत्र। ये थीम वैश्विक 30x30 पहल को समर्पित करती है जिसका लक्ष्य 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित करना है।
0: दोस्तों, महासागर को हम बस एक वाटरवे या फिर सॉल्ट और बस ऐसा ही मानते हैं, लेकिन महासागर हमारी मानव गतिविधियों द्वारा पैदा की जाने वाली 30% कार्बन डाइऑक्साइड को खुद में सोख लेते हैं, जिससे वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो कम होता है।
1: वैज्ञानिकों के अनुसार हम आज भी महासागरों का केवल 10% हिस्सा ही तलाश कर पाए हैं दोस्तों, जबकि 90% हिस्से और वहां रहने वाले जीवों के बारे में इंसान अभी तक अनजान ही है।
0: लेकिन दोस्तों, आज का दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि किस तरह से ओशंस को पल्यूटेड किया जा रहा है और किस तरह से महासागरों में आज करीब 11 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक महासागरों में बहाया जाता है। इससे 800 से अधिक समुद्री प्रजातियां जैसे कछुए, मछलियां और समुद्री पक्षी गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
1: व्यावसायिक लाभ के लिए जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ने के कारण कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है और इसकी वजह से समुद्री खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बिगड़ रही है।
0: दोस्तों, इसी के साथ समुद्र का तापमान बढ़ने से कोरल रीफ नष्ट हो रही है, जिससे कई सारी जो कोरल अलग अलग ब्लीचिंग्स होती हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी भी डेथ हो रही है। इसके अलावा पानी में एसिड की मात्रा बढ़ने से शंख और कड़े कवच वाले जो जीव हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और ये दिवस हमें यही याद दिलाता है कि ओशंस सिर्फ ये देखने के लिए नहीं है कि ये कितने सुंदर होते हैं, कितने गहरे होते हैं, या रिसर्च के लिए नहीं है, इन्हें बचाना और इनके अंदर जो जीव रह रहे हैं और जो पौधे इसमें पनप रहे हैं उनको बचाने की जिम्मेदारी भी हम इंसानों की भी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे दो प्रश्न पूछे थे, तो अब समय आ गया है उन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने का। तो हमारा जो पहला प्रश्न था वो ये था कि ऑल इंडिया रेडियो की जो सिग्नेचर ट्यून है उसके जो कंपोजर है वो कौन है। तो ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी की जो प्रसिद्ध सिग्नेचर ट्यून है उसकी रचना की थी वॉल्टर कॉफमैन ने। उन्होंने 1936 में इस धुन को तैयार किया था जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग शिव रंगिनी पर आधारित है। ये जो वॉल्टर कॉफमैन है ये मूल रूप से चेकोस्लोवाकिया में जन्मे एक यहूदी संगीतकार थे। वो 1937 से 1946 तक ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में पश्चिमी संगीत विभाग के निर्देश

0: बेशक भी रहे थे।
1: और दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न था कि महासागर के सबसे गहरे भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर ये है कि महासागर के सबसे गहरे भाग को मरियाना ट्रेंच कहते हैं या मरियाना गर्त कहा जाता है। ये विशाल और गहरी खाई पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और इस गर्त के सबसे निचले और आखिरी बिंदु को चैलेंजर डीप कहते हैं और इसकी कुल गहराई समुद्र की सतह से लगभग 10,935 मीटर यानी कि करीब 11 किलोमीटर नीचे तक जाती है। और दोस्तों मज़ेदार फैक्ट ये है कि अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी कि माउंट एवरेस्ट को भी अगर हम इसके अंदर डाल दें तो उसकी जो चोटी है वो भी समुद्र के पानी के अंदर पूरी तरह डूब जाएगी, यानी कि ये माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है उससे भी ज़्यादा गहरा है। और दोस्तों यहाँ के पानी का दबाव सतह से 1000 गुना ज़्यादा होता है और तापमान यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है।
0: तो दोस्तों आज हमने जाना कि विश्व ओशन डे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसी के साथ हमने आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा को भी जाना। इस पूरे सफ़र में क्या कुछ नहीं देखा, देश को बनते देखा, देश में नई तकनीकी आते देखा और आकाशवाणी ने खुद को भी इस तकनीक के साथ ढला और इसी अपने मूल्य को भी नहीं भूला और सभी देशवासियों को एक सूत्र में जोड़कर भी रखा।
1: बिल्कुल, जब देश में समस्याएं आई तब भी आकाशवाणी साथ था और जब देश ने प्रगति की तब भी आकाशवाणी साथ था और हमें ये भी उम्मीद है कि आकाशवाणी यूं ही लोगों के साथ आगे भी बना रहेगा चाहे तकनीकें कितनी भी बढ़ जाए। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि हमें आपका साथ वो बेहद पसंद है और उम्मीद है कि आकाशवाणी यूं ही चलता रहे और आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे।
0: लेकिन दोस्तों अब समय हो गया है हमारा आपसे विदा लेने का। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए और ऐसे ही आकाशवाणी के साथ हमेशा जुड़े रहिए। इसी के साथ दीजिए मार्गेशा
1: और श्रद्धा को इजाजत।
0: नमस्कार।

युद्ध प्रोग्राम युवावाणी अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, देव कोहली की रचना, राजेश रोशन का संगीत।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: कूली नंबर 1 फिल्म का गाना है, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, समीर के बोले, आनंद मिलन का संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत सुन रहे थे आप आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 465.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हो चला है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का।

0: प्रबंध
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
3: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
3: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
3: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है
3: जी। हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित

0: भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
1: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
1: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया?
1: कोचू मंगला,
0: तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।

0: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
1: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
2: मंगला
3: हाँ?
2: आह देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
3: ठीक है।
2: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
3: हाँ हाँ।
2: उठाकर मुझे दे।
3: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
2: हाँ।
3: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
0: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
2: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
3: अरे वाह।
2: और ये इसकी पूंछ।
3: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
2: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
3: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
2: अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
3: ठीक
2: हाँ,
3: है
2: हाँ, अब बना।
1: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
3: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
2: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
3: ठीक है
2: चल चल चल चल, चल।
3: हाँ, हाँ,
2: हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
3: हाँ, हाँ, ठीक है,
2: चल,
3: ठीक है,
2: चल, चल, चल, चल, चल, चल।
0: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
1: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता

नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं।
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
0: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए।

0: जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, आप सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली और उमेश की आवाजों में ये रचनाएं, जिन्हें लिखा है नासिर काजमी और कातिल सिपाही ने, और संगीतबद्ध किया है रफीक हुसैन और गुलाम अली ने। आइए सुनें।

सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। और अब से कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन और मैं रत्नेश सोनी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस बार हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन एनडीए सरकार के 12 साल की उपलब्धियों और पर्यावरण पर केंद्रित है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है बैतूल जिले से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में बैतूल जिले में आधारभूत संरचना, सड़क, रेल, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि एवं आदिवासी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। पेश है बैतूल से हमारे संवाददाता मयंक भार्गव की यह रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में बैतूल जिले में आधारभूत संरचना, सड़क, रेल, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि एवं आदिवासी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं ने लाखों नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैतूल जिले की पहचान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में रही है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के उन्नयन एवं 4-लेन निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी गई। इटारसी बैतूल नागपुर कॉरिडोर के विकास से जिले की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार हुआ है। हाल ही में इटारसी बैतूल खंड के लगभग 22 किलोमीटर 4-लेन निर्माण के लिए 758 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिले के सैकड़ों गाँवों में को सारो मौसमी सड़कों से जोड़ा गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाजार तक पहुंच आसान हुई है। केंद्र सरकार ने इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी प्रदान की। लगभग 297 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का सीधा लाभ बैतूल जिले को मिलेगा। परियोजना के पूर्ण होने पर माल परिवहन, यात्री सुविधाओं तथा औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। बैतूल घोड़ाडोंगरी, आमला एवं मुलताई क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव।
0: हमारी दूसरी खबर राजधानी भोपाल से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक पेड़ माह के नाम अभियान 2.0 का शुभारंभ पौधारोपण कर किया। अधिक जानकारी दे रहे हैं भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान।
2: भोपाल जिले में विश्व पर्यावरण दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहर के कुशाभाव ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ पौधारोपण कर किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपेक्स बैंक मुख्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भी सहभागिता की और हरित सहकार अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य स्तरीय समारोह में कहा कि प्रकृति का संरक्षण

0: सफल हुआ उसके बलबूते पर उस समय के छोड़े गए सीखे धीरे धीरे करके विश्व के सामने एक आदर्श रूप में एक तरह से एशिया महाद्वीप पर पुनर्वसाहत का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर के निकल के आए।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान।
2: हमारी अगली खबर है भिंड से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिले भर में व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे भिंड संवाददाता अनिल शर्मा।
3: भिंड जिले में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम जिले भर में व्यापक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में कलेक्टर भिंड ने शासकीय महाविद्यालय मेघा परिसर में लगभग 700 पौधे तथा नवीन तहसील परिसर मेघाव में लगभग 200 पौधे का रोपण किया। कलेक्टर ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधा लगाना जितना महत्वपूर्ण है उससे बड़ा करना ही उतना ही आवश्यक है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा।
2: अब हम चलते हैं बालाघाट जिले की तरफ, जहां पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में जिले की संस्थाओं को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे बालाघाट संवाददाता श्रीनिवास चौधरी।
4: बालाघाट जिले की 3 संस्थाओं का प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करना जिले के पर्यावरणीय जागरूकता, औद्योगिक उत्कृष्टता तथा सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रदेश के कुल 11 पुरस्कारों में से 3 प्रथम पुरस्कार बालाघाट जिले को मिलना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसने जिले का नाम पूरे मध्य प्रदेश में गौरवान्वित किया है। प्रदेश की लगभग 3000 से अधिक बड़ी औद्योगिक इकाइयों के बीच अति प्रदूषणकारी उद्योग श्रेणी में संचालित बालाघाट जिले के वारासिमनी विकास खंड अंतर्गत ग्राम खापा स्थित विशाग बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड इस ग्रेन आधारित एथेनॉल संयंत्र को उत्कृष्ट पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा सर्वोत्तम पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रदेश का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार खनन क्षेत्र में बालाघाट जिले की रमरमा खदान को भी पर्यावरण प्रबंधन तथा सतत खनन गतिविधियों के लिए प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ खदान के रूप में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं लघु उद्योग श्रेणी में बालाघाट जिले की केसर एग्रोटेक को उत्कृष्ट पर्यावरण प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदेश स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सभी सम्मान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार द्वारा भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किए गए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बालाघाट से मैं श्रीनिवास चौधरी।
2: हमारी अगली खबर है अनूपपुर जिले से, जहाँ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अमरकंटक के शंभूधारा में 5 राज्यों से आए एनसीसी कैडेट्स के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। अधिक जानकारी दे रहे अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत कुमार मिश्र।
5: 5वें विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अनूपपुर जिले के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक और जिला स्तरीय आयोजन पवित्र नगरी अमरकंटक के शंभूधारा में वन विभाग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 5 राज्यों से आए एनसीसी कैडेट ने वृक्षारोपण किया। तो दूसरी तरफ बिजरी में मध्य प्रदेश सरकार के लघु एवं कुटीर उद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में पौधरोपण का कार्यक्रम बिजरी नगर पालिका द्वारा आयोजित किया गया। तो राजनांदगांव के झूला नदी में शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह की उपस्थिति में स्वच्छता अभियान चलाया गया। तो विभिन्न ग्राम पंचायतों में तालाब, प्राकृतिक जल स्रोतों में भी सफाई अभियान चलाया गया। वहीं नगरीय निकायों में वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के लघु एवं कुटीर उद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल अपने संदेश में कहा कि
6: विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर बिजुरी नगर के सरस्वती शिशु मंदिर व नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत ही कुर्जा हनुमान मंदिर रोड में नव निर्मित पार्क में व कपिल धारा कॉलोनी के शिव मंदिर प्रांगण में मेरे द्वारा व नगर पालिका अध्यक्ष व परिषद के सभी सदस्यों के साथ वृक्ष रोपण किया गया।
5: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अब हम रुख करते हैं आगर मालवा जिले की तरफ, जहां स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान थीम पर विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे आगर मालवा संवाददाता महेश शर्मा।
7: जिले में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार, सामुदायिक सहभागिता, स्वास्थ्य जागरूकता, वृक्षारोपण, जल कल्याण शिविर, साइकिल राइडिंग, जैविक खेती एवं योग गतिविधियों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के आयोजन किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय स्थित नमो वन में 500 पौधों का रोपण हुआ। वहीं जिला जेल, न्यायालय परिसर, महाविद्यालय के साथ ही ब्लॉक स्तर पर वृक्षारोपण, स्वच्छता गतिविधियां एवं विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन भी हुए। 7 जून को जिले के सभी विकास खंडों में साइकिल राइड एवं

0: पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया गया। वहीं 12 से 18 जून तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में विशेष जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाकर सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों का निराकरण, नागरिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का निस्तारण तथा केंद्र एवं राज्य शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रकरणों की स्वीकृति की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा।
1: और अगली खबर है छतरपुर से। जिले में 586 ग्राम पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नौगांव सटई में पौधारोपण किया और प्रधानमंत्री श्री मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। पेश है छतरपुर से हमारे संवाददाता सुनील पांडे की यह रिपोर्ट।
2: छतरपुर जिले में विश्व पर्यावरण दिवस एक बृहद अभियान के रूप में मनाया गया। छतरपुर जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में जिले के सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायत में पर्यावरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें वृक्षारोपण किया गया और आम जनमानस को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का संदेश भी दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी पर्यावरण दिवस पर छतरपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सफलतम 12 वर्ष के कार्यकाल को याद करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई एवं नौगांव के केंद्रीय विद्यालय परिसर और सिविल अस्पताल में 11-11 पौधे रोपित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वृक्ष की देखभाल अपनी संतान की तरह करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर से सुनील पांडे।
1: समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है बड़वानी से, जहाँ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में पौधारोपण किया गया। अधिक जानकारी दे रहे बड़वानी से हमारे संवाददाता शिवपाल सिंह सिसोदिया।
3: पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन बड़वानी तथा विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी के संयुक्त तत्वाधान में पंचायत योजना के तहत वृक्षारोपण किया गया। नगर वन बड़वानी तथा पांचेमल के अंतर्गत भी वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत श्रमदान कर वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर बड़वानी, डीएफओ बड़वानी तथा सेंधवा सहित अधिकारीगण, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस संबंध में बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह ने बताया कि
4: हमारे जिले में भी इसी क्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय नगर वन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसकी जानकारी आपको है। और दूसरा कार्यक्रम हम लोग पांचसेमल जनपद में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें पर्यावरण दिवस का संदेश देने के लिए हम लोग श्रमदान और गड्ढे खोदना और वृक्षारोपण इत्यादि का काम करेंगे।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया।
1: हमारी अगली खबर है बुरहानपुर जिले से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के तहत साप्ताहिक अभियान की शुरुआत की गई। नेहरू नगर स्थित सद्भावना मंडपम परिसर में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ज्यादा जानकारी दे रहे बुरहानपुर से हमारे संवाददाता गणेश कुमार बाविस्कर।
5: विश्व पर्यावरण दिवस के तहत बुरहानपुर जिले में साप्ताहिक अभियान शुरू है। नेहरू नगर स्थित सद्भावना मंडपम परिसर में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान जामुन, त्रिवेणी, आम, नीम, गुड़हल, अशोक और पीपल सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए तथा हरियाली बढ़ाने का संकल्प लिया गया। विधायक अर्चना चिटनिस ने कहा कि वृक्ष पर्यावरण संतुलन और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार है तथा नागरिकों से पौधारोपण के साथ पौधों के संरक्षण का आह्वान किया गया। महापौर माधुरी पटेल ने वर्षा जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज की सहभागिता को जरूरी बताया। कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का अभियान नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अंतिम खबर है अशोकनगर जिले से, जहां लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जन्मदिवस पर और कार्यक्रमों में पुरस्कार के रूप में पौधे दिए जा रहे हैं तथा उन्हें रोपने और संरक्षित करने का संकल्प लिया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं अशोकनगर से हमारे संवाददाता डॉक्टर नीरज शुक्ला।
6: अशोकनगर जिले में लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। शासन स्तर पर पर्यावरण को बचाने के कार्य किए जा रहे हैं। शासन द्वारा योजना बनाकर जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जल संरक्षण करने को लेकर जल संरचना बनाने तथा बहते हुए पानी को रोकने के प्रयास मानसून आने से पूर्व कर लिए गए हैं। वहीं कई सामाजिक संस्थाएं भी इस पर कार्य कर रही हैं तथा पौधरोपण करने के उपरांत उसके संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। विगत दिनों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी के नेतृत्व में कई पंचायतों में पौधरोपण किया गया। जिले में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जन्म दिवस पर और कार्यक्रमों में पुरस्कार वितरण पर पुरस्कार के रूप में पौधे दिए जा रहे हैं।

0: तथा उन्हें रोपने और संरक्षित करने का संकल्प लिया जा रहा है। अशोकनगर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश का कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार दर्शन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली से।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना है तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
3: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है।

0: उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कल की सभाओं में शुरुआत होगी। सुबह भक्ति संगीत के प्रातःकालीन आयोजन वंदना से 6:05 पर चिंतन होगा परिवर्तन। सुबह 6:30 पर आलेख शालिनी शुक्ला का होगा। 6:35 पर सुनेंगे आप डॉक्टर अनुराधा शर्मा से खेती की बातें। विषय होगा सोयाबीन की उन्नत प्रजातियां।

श्री रामचरित मानस गान सुनेंगे आप 6:40 पर। सुबह की सभाओं में विशेष रूप से 7:20 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम सुनहरे पल। विज्ञान पत्रिका का समय रहेगा सुबह 8:30 पर। इस कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में आप सुनेंगे सोशल मीडिया पर बातचीत, मकड़ियां मनुष्यों से दोगुना खाना खा सकती हैं, इस विषय पर बातचीत होगी। चर्चाओं के दौर में आप सुनेंगे क्या संबंध है गाड़ी के रंग और दुर्घटना होने का, और साथ ही साथ सुनेंगे हम निशानेबाज निशाना लगाते समय एक आंख बंद क्यों कर लेता है, इस विषय पर बातचीत। प्रस्तुति रहेगी ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी की। लोक संगीत में प्रीतम लाल मालवीय और साथियों को आप सुनेंगे सुबह 9:00। सुगम संगीत में तलत अजीज को आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 पर। शास्त्रीय संगीत में पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर की द्वारा गाया राग भीम पलासी, प्रसारण समय रहेगा सुबह 9:30 पर। फोन इन कार्यक्रम में एमएच हॉटलाइन सुनेंगे आप 10:05 पर।

आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित महिला कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा क्यों जरूरी है डिजिटल। योजनाओं के अंतर्गत आप सुनेंगे व्यापार संबंधी उद्यमिता विकास सहायता योजना के बारे में। मेरी उड़ान क्रम में आप सुनेंगे कथक नृत्यांगना दिया सिंह ठाकुर से प्रीति जोशी की बातचीत। रूप लावण्य क्रम में आप सुनेंगे एंटी ऑक्सीडेंट पैक के बारे में जानकारी। फूड जोन में होगी हेल्दी स्वादिष्ट चटनियां कैसे बनाई जाए। काम की बातें होंगी, टाइमर मोड से कम होगा बिजली का बिल, इस विषय पर बातचीत। शाम की सभाओं में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम युववाणी। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण समय सुबह 6 बजे। क्षमा करें, प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण समय रहेगा शाम 6 बजे। सुगम संगीत में तलत अजीज को आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। लोक संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रीतम लाल मालवी और साथियों को सुनने का मौका मिलेगा हमें शाम 6:45 पर। खेती गृहस्थी का प्रसारण समय शाम 7:20 पर। और दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात 8 बजे। चित्रगीत लेकर हाजिर होंगे रात 9:15 पर। सुन रहे थे श्रोताओं आप हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का यह इंदौर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
6: बेटा,
7: बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
6: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
8: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
5: कहाँ
8: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
9: आरबीआई कहता है
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए वीरता पुरस्कार। इंदौर में कल से शुरू होगा ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और कृषि मंत्रियों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर कल से देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। और प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए बीजेपी के महेश केवट और कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने दाखिल किया नामांकन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए, जिसके तहत लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पाराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकें इंदौर में कल से शुरू होंगी, जो 13 जून तक चलेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी कि खाद्य हानि और अपव्यय आज पूरी दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती है, जिससे निपटने के प्रयासों समेत कई अन्य विषयों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी।
1: खाद्य हानि और अपव्यय, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से 1 अरब टन तक खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है, उस पर चिंता का विषय है। इस पर चर्चा होगी, इसको कैसे रोकें। छोटे किसान अगर फायदे की खेती करे, अनाज के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, मछली पालन, ये आय बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपायों पर भी विचार करना पड़ेगा। और फूड स्टोरेज, खाद्य भंडारण की व्यवस्था कैसे सुधारें ताकि सुरक्षित रहे फूड। इसमें जो देश अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, वो आपस में अपने अनुभव भी साझा करेंगे और विचार विमर्श भी करेंगे।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट और इसी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा के 2 उम्मीदवार तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल शनिवार को पहले ही राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। सरकार के पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर पेश है एक रिपोर्ट।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 800,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
5: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
3: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिमी एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि ईंधन की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अर्पणा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए देशव्यापी टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 7,63,000 से अधिक पात्र बालिकाओं का सफलतापूर्वक एचपीवी टीकाकरण किया जा चुका है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसूनी गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के ग्वालियर, सागर, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और भोपाल संभागों के कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रदेश में मानसून 15 से 18 जून के बीच प्रवेश कर सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के 1,00,000 से अधिक संविदा अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। वित्त विभाग ने आज इसके आदेश जारी कर दिए, जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 से उनके पारिश्रमिक में 4.46% की वृद्धि लागू होगी। नीमच में 11 जून को आईटीआई पंजीयन मेला एवं करियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीहोर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में कल युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सतना कलेक्टर ने आज सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों सहित विभागीय कार्यों की समीक्षा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अमर शहीद बिरसा मुंडा बलिदान दिवस स्मरणोत्सव के तहत कल शहीद भवन भोपाल में निमाड़ी लोकगीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। नर्मदापुरम जिले में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम बिछुआ में नल जल योजना का हस्तांतरण ग्राम पंचायत को किया गया। शिवपुरी जिले की समस्त शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 17 अगस्त 2026 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और बैतूल के सारणी और घोड़ा डोंगरी के पूर्व सैनिकों की बैठक कल सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह सारणी में आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी हाँ? आपके नाम
1: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो क्या
1: आरबीआई कहता है।
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

0: ग्राम लक्ष्मी की चौपाल पायला सभी भाई बहन नगर तृप्ति बहन की राम राम। भाई बहन नोन, अपना सरकार जो छे हमेशा ध्यान रखे कि अपना किसान भाई जो छे वो 12 महीने कमाए, क्योंकि कई हुए कि हमारी जो भारत की खेती छे वह कसी छे मौसम पर निर्धारित छे। तो असी कई काम करा कि अपना के 12 महीने हर चीज़ मिले, तो प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य संपदा योजना चलाई जो कि 9 सितंबर 2020 से हमारा भारत में चली रही। एको उद्देश्य कही है कि भाई नीली क्रांति लाणु। अब नीली क्रांति कई हो मतलब जल से संबंधित जितना भी जीव है तो खास करी के मछली है, तो मछली का पालन कलिए हमारा किसान न कर सब्सिडी देणु, उनको उचित जगह बताणु, मत्स्य पालन कसो करे जाए ओका बारा में प्रशिक्षण देणु, ये सारा काम इन योजना का अंतर्गत करा जाए। एक से कई होएगा कि हमारा किसान भाई न का जो कि समुद्र किनारे रहे उनका भी, और जो गांव न मरे जो कि सादा पानी की मछली न का पालज उनका भी अपना रोजगार का बढ़ाने को अपनी आमदनी बढ़ाने को अच्छा अवसर मिलेगा। एकम हमारी सरकार कई करज, एकम हमारी सरकार जो छे 40 से 60% तक सब्सिडी देज जेका अंतर्गत हमारा जो भाई छे जो मत्स्य पालन करज उनका मछली को बीज लाणु, उनको संवर्धन करने का लिए स्थान, अने जो नदी न छे समुद्र छे उनमें जो उनका निश्चित जगह दी जाए जहाँ पर वो मछली पालन कर सकज ओको आधिकारिक क्षेत्र लिखित रूप में देने को काम किया जाए। एक हमारा किसान भाई का ही कर जो भी हमारा किसान भाई छे वो अपना किसान क्रेडिट कार्ड का द्वारा भी इन्हीं योजना को लाभ उठा सकज, साथ साथ राज्य स्तरीय अने राष्ट्र स्तरीय जो हमारी कृषि संगठन छे जो कि हर प्रकार की कृषि के लिए हमारा किसान का सेवा उपलब्ध कराए उनका से संपर्क कर इन्हीं योजना को लाभ उठा सके। अब इन्हीं योजना में हमारा किसान भाई कई कर अपना किसान भाई जो छे वो बैंक न में जाए कर या जो छे प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो छे मत्स्य विकास योजना ओका में अपनो नाम पंजीयन कराई सकज, अपना जो विशेष करी कर अपनी जो पहचान पत्र छे ओका आधार पर अने अपना जो बैंक की पासबुक छे ओका आधार पर इना दस्तावेज के दिखाई के अपनो रजिस्ट्रेशन कराई सकज अने मत्स्य पालन को पूरो लाभ ले सकज। तो भाई बहन नोन बात न तो अभी अपन अरु भी करांगा, पर पहले सुने लेवानी हो संदेश।
1: रमा 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?

0: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
0: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: भाई बहनों, जैसे कि अभी हमारा अधिकतर किसान भाई जो छे सोयाबीन की खेती करी रहा है, कई जगह बुआई हुई गई तो कई अंकुरण आई गया। जब पौधा नमा अंकुरण आवज, बीज अंकुरित हो तो साथ साथ मुक्ता अनचाहा पौधा भी उगी जाए। अनचाहा पौधा न का अपन कवांज खरपतवार, क्योंकि वो हमारी जो खड़ी फसल छे उसको पोषण भी ले लेज। तो इन्हीं बात से अपन कसा बचा, मतलब सोयाबीन में खरपतवार प्रबंधन कैसे करे जाए, इन्हीं बात की जानकारी अपना कर देगा डॉक्टर राकेश के वर्मा, जो कि कृषि वैज्ञानिक छे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर से। तो अपन सुना इनसे सोयाबीन में खरपतवार प्रबंधन की व्यवस्था।
5: सभी को नमस्कार। जैसा कि किसान भाइयों आपको विदित है कि अभी सोयाबीन की बोनी का समय आने वाला है, खरीफ की सीजन आ गई है। सब किसान भाई अभी सोयाबीन की बोनी करेंगे और मध्य के क्षेत्र के अंदर 20 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में मुख्यतः सोयाबीन की बोनी की जाती है। किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती के अंतर्गत चारा है वो खरपतवार है वो बहुत होते हैं, और ये क्योंकि ये बारिश के मौसम की फसल है तो इसके अंतर्गत चारा बार बार बारिश होती रहती है, उगता है, तो इसलिए चारे का खरपतवारों का प्रबंधन बहुत जरूरी है अधिक उत्पादन लेने के लिए। यदि समय पे सोयाबीन के खेत के अंदर यदि खरपतवार का सही प्रबंधन नहीं होता है या चारे को नहीं मारा जाता है तो आपके खेत में लगभग 30-70% तक खरपतवारों से नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप खरपतवारों का पूर्णतः समय पे प्रबंधन करें। सोयाबीन के अंतर्गत जनरली जो बोनी के बाद में, बोनी के पहले, बोनी के समय और बोनी के बाद में अलग अलग तरह के बहुत सारे खरपतवार नाशक हैं वो अनुशंसित हैं, उनमें से किसी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रहे कि सोयाबीन की बोनी के समय जो आप बीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीज है वो खरपतवार का बीज उसमें ना मिला हो, प्योर आपका सर्टिफाइड और शुद्ध बीज हो। आप जिस मशीन को यूज कर रहे हो वो मशीन शुद्ध हो। उसके अंदर कई बार क्या होता है, बहुत सारे खरपतवारों के पौधे इधर उधर से मशीन के अंदर चले जाते हैं या कुछ बीज पड़े रहते हैं उससे भी होता है, तो आप मशीन को क्लीन कर लें, सर्टिफाइड शुद्ध बीज का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ यदि आप इसके अलावा यदि आप किसी खरपतवार नाशक या किसी केमिकल या रासायनिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यदि हाथ से ही चारा निकालना चाहते हैं तो सोयाबीन के अंतर्गत एक बार आप 20 दिन पे बोने के 20 दिन बाद में और एक बोने के 40 दिन बाद है दो बार वो हाथ से आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। मुख्यतः सोयाबीन में 40-50 दिन तक खेत के अंदर है वो चारा नहीं गुने दिया जाता है, क्योंकि उस समय उसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद तो फसल है वो धीरे धीरे बढ़वार ले लेती है, बढ़ जाती है, तो चारे का इतना बढ़वार नहीं होती है, लेकिन आपको 40-50 दिन शुरुआती के अंदर चारा रहित खेत है वो रखना है। यदि आप खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे प्रबंधन करना चाह रहे हैं तो आप सोयाबीन के अंतर्गत जैसे 1-2-3 केमिकल्स ऐसे हैं जो आप बोनी पूर्व, मतलब सोयाबीन की बोनी से पहले ही 1-3 दिन पहले उसको स्प्रे करके और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जमीन में मिलाया जा सकता है। ऐसे खरपतवार नाशक जैसे कि डाइक्लोप्लस पेंडीमेथालीन है वो 2.5 लीटर प्रति हेक्टर है, पेंडीमेथालीन प्लस इमेजिता फायर वो 2.5-3 लीटर प्रति हेक्टर है। इन खरपतवार नाशकों का आप है वो सोयाबीन की बोवनी से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसका स्प्रे करते समय जमीन में उपयुक्त नमी की मात्रा होनी चाहिए। ये 1-3 दिन पहले आप स्प्रे करके और उसके बाद में उसको जमीन में मिला दें और उसके बोनी कर सकते हैं सोयाबीन की। यदि ये आपने नहीं किया है तो आप प्री इमर्जेंस मतलब बोनी के बाद में और सोयाबीन को उगने से पहले है कुछ खरपतवार नाशक हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे डाइक्लोसुलम है, डाइक्लोसुलम की दर है वो 26 ग्राम प्रति हेक्टर है,

0: डाइक्लोसुलम प्लस पेंडीमेथालिन आता है जिसको 2.5 लीटर प्रति हेक्टर की दर से, और सल्पेंट्राजोन है 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टर की दर से, जहां पे मोथा ज्यादा होता है वहां पे आप सल्पेंट्राजोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई सी भी एक दवाई का आप इस्तेमाल है वो बोने के बाद में, सोयाबीन की बोने के बाद में और उगने से पहले आप कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप अपने खेत का निरीक्षण करते रहें, बार बार देखते रहें, आपने यदि प्री इमरजेंस बोनी के तुरंत बाद वाला यदि आपने खरपतवार नाशक डाल दिया है तो इससे कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कई बार क्या लगातार बारिश आती है उतना प्रभावी नहीं रहता है, खरपतवार नाशक बह गया है अचानक खरीफ की सीजन में लगातार बारिश होती रहती है, तो आप 15-20 दिन बाद में अपने खेत में देख लें तो यदि आपको चारा दिखाई देता है छोटा छोटा तो आप है एक पोस्ट इमरजेंस मतलब सोयाबीन की बोनी के 15-20 दिन बाद है उसके बाद वाले भी किसी खरपतवार नाशक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि बोनी के 15-20 दिन वाले में जैसे इमेजिता फायर है या फिर इमेजिता फायर प्लस इमेजा मोक्स है वो 100 ग्राम प्रति हेक्टर की दर से, प्लस एक आता है प्रोपेक्विजा 4 प्लस इमेजिता फायर है वो 2 लीटर प्रति हेक्टर की दर से, आप इनमें से किसी भी एक खरपतवार नाशक का इस्तेमाल है वो 15-20 दिन पे कर सकते हैं। यदि आप 15-20 दिन बाद में किसी खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और आपने प्री इमरजेंस बोनी के बाद वाला यदि दवाई डाल दी है तो आप 20-25 दिन पे अपने खेत में खरपतवार नाशक का इस्तेमाल नहीं करके यदि आपके पास सुविधा है तो आप जो डोरा चला सकते हैं, जो बैल से भी कुछ किसान भाई वो बैल डोरा भी चलाते हैं, कई ट्रैक्टर से चली डोरा भी चलाते हैं, तो आप डोरा भी कर चला सकते हैं या इंटरकल्चर ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इस तरह से आप हाथ से यदि आपको करना तो 20-40 दिन पे करें। और दवाई मैंने जैसे आपको बताया कि बोनी के पूर्व वाले भी दवाई डाल सकते हैं, बोने के बाद में और सोयाबीन उगने से पहले भी आप दवाइयां वो डाल सकते हैं और 15-20 दिन पे डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि सोयाबीन में 20 दिन के बाद में किसी भी खरपतवार नाशक की अनुशंसा नहीं की जा सकती की जाती है, और जनरली वो 3-4 जब पत्तियां होती है चारे की तभी आप दवाई का इस्तेमाल करें, तभी आपको प्रभावी नियंत्रण मिलेगा, नहीं तो बड़ी जब हो जाता है चारा या 6-8 पत्तियां हो जाती हैं तो उसके बाद में कंट्रोल नहीं होते हैं। दूसरा, यदि आप चारा मारने वाली दवाई डालते हैं खरपतवार नाशक तो उसमें जो ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं, एक तो आप ध्यान रहे कि पानी की मात्रा है वो 400-500 लीटर प्रति हेक्टर की दर से आप इस्तेमाल करें। वो सारे किसान भाई है वो पानी की उपयुक्त मात्रा उचित मात्रा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कम पानी डालते हैं तो कई बार उसका प्रभाव नहीं आता है, तो आप पानी है वो 400-500 लीटर प्रति हेक्टर की दर से इस्तेमाल करें। यदि आप ट्रैक्टर से स्प्रे कर रहे हैं खरपतवार नाशक का तो ट्रैक्टर वाले स्प्रे में आप 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करें प्रति हेक्टर की दर से। दूसरा, किसान भाइयों, आप जब इसका स्प्रे करते हैं खरपतवार नाशक दवाई या किसी भी रासायनिक दवाई का तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ में ग्लव्स हो और मुंह पे मास्क हो, आप अच्छी तरह से पहने, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां होती हैं कई बार हवा का इधर उधर, तो आप उसको ध्यान रखें। ये तीसरा, आप जो चारा मारने वाली दवाई जो खरपतवार नाशक का जो स्प्रे करते हैं जो छिड़काव करते हैं उसके लिए नोजल आते हैं वो फ्लड जेट और फ्लड फैन नोजल आते हैं जिनको बाजार में कट नोजल के नाम से बिकते हैं कट नोजल, तो आप इनका इस्तेमाल करें। कीड़े मारने वाली दवाई डालने के लिए अलग नोजल आते हैं और खरपतवार वाले के लिए अलग से ये नोजल आते हैं, तो आप कट नोजल का इस्तेमाल करें। और इस तरह से आप सोयाबीन में है अपने है चारे का प्रबंधन, चारा जो होता है उसका नियंत्रण क्या कर सकते हैं और सोयाबीन का अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, हाथ वाला भी ऑप्शन है, रासायनिक खरपतवार नाशकों का भी ऑप्शन है, और लेकिन ध्यान रखिए पानी की मात्रा हो उपित हो। दूसरा, जब आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करें उस समय जमीन में हो नमी की मात्रा भी उचित होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से काम करेगा। धन्यवाद।
1: तो भाई बहनों, अभी अपन सुनी रहा था कि सोयाबीन में खरपतवार को प्रबंधन कसो करा, अने जानकारी दे रहा था डॉक्टर राकेश के वर्मा जो कि कृषि वैज्ञानिक सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर से था। बड़ी अच्छी जानकारी दी इन्हें अपना का। देखो भाई बहनों, जानकारी ने अपना पास आती रहे अने जानकारी को उपयोग अपना का करना चाहिए, या बुद्धि कवच अलग जब अपना पर भगवान की कृपा हो तो अपन इन्हीं कृपा का पान कर लिए आज भोलेनाथ का अपन याद करी लेवान, भजन सुनी लेवान, नौका माध्यम से अपन भगवान को कवान की अपना का अच्छी बुद्धि दे। तो भजन सुनांगा अपन भवानी शंकर गुर्जर को अन उनका साथी न को गायलो, यो भजन लेवान भगवान को आशीर्वाद।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: भाई बहनों, जसो अपनो मिजाज बदलतो रहनी, असो मौसम भी बदलतो रहे। तो मौसम जब बदलेस तो तरह तरह की बीमारी भी आई जावे। तो मौसम बदलने को कारण, लक्षण, अनोखो निदान कई छे, इना विषय पर आज अपन भेंट वार्ता सुनांगा। जानकारी दे रही डॉक्टर पूनम मिश्रा और उनका से बात कर रही बहन स्मिता दुबे। तो सुना या भेंट वार्ता ने समझान मौसम संबंधी बीमारी का बारे में।
5: हम सभी जानते हैं कि मौसम जो है समय समय पर बदलता रहता है, और अपन देख भी रहे हैं कि समय को देखते हुए कभी कोई मौसम में हमको कोई बीमारी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। और अपन कहते हैं ना कि भाई जो बीमारी हो उससे पहले कभी हम उससे जागरूक रहकर और उससे सुरक्षा कर लें या सुरक्षित रह लें तो बहुत अच्छा होता है। और इन सब चीजों से आपको जागरूक कराना, आपको इन चीजों से इनका परिचय करवाना, ये सब हमारे कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। तो आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ है डॉक्टर पूनम मिश्रा, जो कि जनरल फिजिशियन इंदौर से हैं। सबसे पहले तो आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पूनम जी नमस्ते।
6: बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी, नमस्ते।
5: नमस्कार,
6: और सभी श्रोताओं को नमस्कार जी।
5: तो सबसे पहले तो जैसे देखिए, ये मौसमी बीमारियां जो चल रही हैं, तो इसको मौसमी बीमारी ये क्या होती हैं, सबसे पहले श्रोताओं को ये बताइए
6: जी। मौसमी बीमारियां हम उन्हें कहते हैं कि मौसम के परिवर्तन से और तापमान के परिवर्तन से, ऋतुओं के परिवर्तन से हमारे जीवन में जो बीमारियां आती हैं उन्हें हम मौसमी बीमारियां कहते हैं। और ये मौसमी बीमारियों में सर्दी, गर्मी, वर्षा से होने वाली बीमारियां हर मौसम की अलग अलग होती हैं, तो आज उसी बारे में हम जानकारी देंगे आपको।
5: अच्छा।
6: जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है
5: जी,
6: और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है इस बार।
5: हाँ हाँ।
6: तो गर्मी के कारण जो मुख्य बीमारियां वो है शरीर में पानी की कमी
5: जी,
6: लूज मोशंस, चक्कर आना, बीपी का लो हो जाना, वॉमिटिंग सेंसेशन आना, तो ये बहुत कॉमन बीमारियां हैं और आम जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है अभी। उसी तरह से जैसे वर्षा ऋतु में मच्छर के कारण होने वाली बीमारियां और पानी के कारण होने वाली, जो खराब भोजन बाहर लोग कर लेते हैं उनके कारण होने वाली बीमारियां मुख्य हैं। और सर्दी में कोल्ड, कफ, वायरल जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं अभी इन दिनों में, और उसके अलावा स्वास्थ्य में जैसे कि दमा और हार्ट संबंधी बीमारियां सर्दी की ऋतु में ज्यादा होती हैं।
5: अच्छा। अभी जैसे कि मैंने अभी किसी दिन समाचार पत्र पढ़ रही थी, तो उस दिन मैंने एक और चीज पढ़ी कि ग्रीष्म ऋतु में भी कहीं ना कहीं अटैक वाली बात, जो साइलेंट अटैक बोल रहे हैं जिसको, जिसमें पता नहीं चलता और अचानक व्यक्ति को आ जाता है, तो ऐसा कुछ भी ज्यादा गर्मी से भी ऐसा कुछ होता है?
6: ज्यादा गर्मी से हो सकता है, पानी की कमी के कारण बीपी का लो होना
5: जी। हाँ।
6: स्पेशली डायबिटिक लोगों में और कोरोना

0: के बाद से साइलेंट अटैक काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, मतलब ये ज्यादा गर्मी
0: मुख्य रूप से गर्मी के कारण तो नहीं कहा जाएगा
1: जी,
0: लेकिन गर्मी के कारण जो पानी की कमी हो जाती है, बहुत तेज गर्मी हो रही है तो पानी की कमी से होने के कारण बीपी लो होना ये एक कारण हो सकता है।
1: अच्छा अच्छा, तो इन बीमारियों में जैसे भाई इनकी अगर पहले से ही रोकथाम कर ली जाए तो कोई ऐसे उपाय भी हैं क्या?
0: बिल्कुल हैं ऐसे उपाय, जैसे गर्मी में जब आप घर से बाहर निकलें
1: जी हाँ,
0: तो अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हुए सनस्क्रीन लगा के, ताकि आपका सनबर्न ना हो और आपको बहुत तेज गर्मी का सामना ना करना पड़े, तो हाँ, अपने शरीर को आप जहां तक हो सके कवर्ड रखें।
1: अच्छा,
0: आंखों पे चश्मा लगाएं, काला चश्मा लगाएं, और उसके अलावा आप खान पान में ऐसी चीजें शामिल करें जिससे हाइड्रेशन बढ़े, उसमें जो मौसमी फल हैं, सब्जियां हैं,
1: हाँ,
0: शीतल पेय पदार्थ हैं,
1: हाँ, हाँ,
0: शीतल पेय पदार्थ में मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं
1: जी।
0: लोग आम तौर पर शीतल पेय पदार्थ मतलब कोल्ड ड्रिंक्स समझते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स आपकी बॉडी में डाययूरेसिस को बढ़ाता है, मतलब यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाता है, जो कि अल्टीमेटली आपका वाटर लेवल और कम करता है और बीपी लो होता है।
1: प्राकृतिक तरल पदार्थ,
0: प्राकृतिक पेय तरल, ठंडे शीतल पदार्थ स्पेशली आजकल यूज नहीं कर रहे हैं लोग, लेकिन सौंफ का पानी हाँ, ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, मिश्री मिला के।
1: हाँ, मुझे याद है, मैं मतलब पुराने समय में मम्मी ने, दादी ने ये चीजें बताई
0: जी, और अपने घर में बनने वाली दही से छाछ
1: जी जी,
0: वो बहुत ही अमृत है आपके शरीर के लिए। तो और जो आम का
1: कच्चे आम का पना,
0: नींबू शिकंजी
1: जी,
0: और ठंडा पानी, ठंडा पानी पे बहुत ध्यान दें आप सब।
1: अच्छा
0: जी
1: हाँ, मतलब प्राकृतिक पेय तरल जो है हाँ, उसके लिए आप कह रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए नहीं।
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और जो अच्छे वाले फल हैं सारे, जो मौसमी फल हैं, उनमें पानी की मात्रा बहुत रहती है, तरबूज, खरबूजा
1: हाँ,
0: और खीरा, इनका विशेष रूप से सेवन करें, और गर्म तासीर वाली चीजें न खाएं।
1: अच्छा
0: हाँ, जो ज्यादा पेट में आपके जलन करे ऐसी चीजें बिल्कुल न खाएं, जो ऐसी बीमारियां न आने दें जो कि बॉडी को हाइड्रेशन से और कॉम्प्रोमाइज कर दे
1: जी,
0: है ना, लूज मोशन न होने पाए, तो बाहर का खाना न खाएं।
1: अच्छा
0: हाँ, घर का सादा पौष्टिक खाना खाएं।
1: बिल्कुल।
0: और एक और मुख्य बात कि दिनचर्या बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: हाँ,
0: हाँ, देर से उठना तो आपके जो पानी पीने के आवर्स हैं वो बहुत कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जबकि अच्छा, आपको जल्दी सुबह उठ के कम से कम 3 गिलास पानी से अपने दिन की शुरुआत करनी ही है
1: जी।
0: जी, तो ये एक तरीका है कि हम गर्मी में रोकथाम कर सकते हैं
1: हाँ,
0: अपने बॉडी में होने वाले पानी की कमी की।
1: अच्छा,
0: उसके तो हाँ जी जी
1: हाँ, कहीं ना कहीं मतलब पानी की कमी ही है हर बीमारी का कारण बनती है।
0: पानी की कमी बहुत बड़ा कारण है
1: जी,
0: स्पेशली गर्मी में।
1: और अगर जैसे कि अब ठंड के पहले या बारिश जो वर्षा ऋतु आने वाली है,
0: तो
1: उसके पहले भी क्या ध्यान रखने की बातें हैं जिनको ध्यान रखा जाए तो कम बीमार हो?
0: तो वर्षा ऋतु में जो मुख्य बीमारियां हैं वो हैं खराब पानी, अभी पूरा दूषित पानी आएगा
1: हाँ, हाँ,
0: तो दूषित पानी से अपना फिटकरी डाल के पानी को शुद्ध कर लें
1: हाँ,
0: पानी को बॉइल कर लें
1: जी जी,
0: है ना, शुद्ध पानी का उपयोग करें, बाहर के पानी का खाना बिल्कुल न खाएं, स्पेशली अच्छा, बारिश में तो बिल्कुल न खाएं। इंदौर की जनता के लिए खासकर पानी पूरी के शौकीन लोग बिल्कुल न खाएं।
1: सही है।
0: और दूसरा है कि मच्छर बहुत आने वाले हैं अभी
1: हाँ,
0: तो मच्छरों से फिर डेंगू, चिकनगुनिया, बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं, अगस्त में हर साल शुरू हो जाती हैं। उनसे बचाव करने के लिए अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, और पांव में जो एंटी मॉस्किटो क्रीम्स है वो लगा के ही रखें। ये दो मुख्य बातें। तीसरा आपका कोई पेट संबंधी
1: हाँ,
0: ये मुख्य बीमारियां हैं गर्मी और बारिश के मौसम की
1: हाँ,
0: रुका हुआ पानी जो बीमारियां करता है, मच्छर करते हैं
1: जी जी,
0: तो इनसे बचाव करना है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो ये तो बहुत ही मतलब ऐसी चीजें हैं कि जो बहुत सामान्य है एक तरह से,
0: अति सामान्य है, और आप ये मानिए कि हमारी दिनचर्या और जीवन शैली अगर इसको हम व्यवस्थित कर लें तो हम 80% बीमारियों से बच जाएंगे।
1: जी हाँ, मतलब जी, अपने आप को बचाने के लिए ऐसी कोई बहुत बड़ी खर्चा
0: हाँ,
1: भी नहीं
0: बहुत
1: करना है,
0: खर्चा नहीं है, लेकिन अगर बीमारी लग गई तो आपका लाखों का खर्चा एक बार में जाएगा।
1: तो जैसे कि आपने बताया भाई, अब बारिश के, वर्षा ऋतु के लिए कैसे अपने को बचाव करना है, ये चीज तो हो गई, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी

0: हाँ
1: तभी एंटीबायोटिक लें जब आपको डॉक्टर उसके बारे में सलाह दे या परामर्श दे, तभी। बस
0: अच्छा
1: एक एक नंबर। दूसरा ये कि आप अपने आप कोई दवाई न लें, अपने शरीर का
0: हाँ
1: उचित ध्यान रखें, सप्लीमेंट्स आप बराबर लें,
0: अच्छा
1: जैसे विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी कॉमनली सारे लोगों में मिल रही है,
0: हाँ
1: तो उसके लिए आप उचित डॉक्टरी परामर्श के हिसाब से उसकी डोजेस विटामिन डी और विटामिन B12 की जरूर लें,
0: अच्छा
1: और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए सुबह प्राणायाम जरूर करें।
0: हाँ
1: मेरा सबसे खास निवेदन है, और मैं सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि प्राणायाम का जो असर मैंने देखा है अपनी जिंदगी में,
0: जी
1: मैं सब तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, विशेष रूप से प्राणायाम जरूर करें, अनुलोम
0: बिल्कुल
1: विलोम, अनुलोम विलोम प्राणायाम,
0: हाँ,
1: सिर्फ
0: और बहुत
1: उसके
0: सरल भी
1: 10 से
0: होता है
1: 15
0: ये वो।
1: साइकिल अगर आप
0: अच्छा
1: रेगुलर करें,
0: जी जी
1: उसके अलावा भ्रामरी करें। एक MBBS डॉक्टर होने के बाद भी मैं रिकमेंड करती हूँ
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: आयुर्वेद को और दिनचर्या में बहुत ध्यान से अपने जीवन को जीते हुए, मतलब आप
0: हाँ
1: ध्यान से जिए। ध्यान मतलब मेडिटेशन नहीं है, ध्यान मतलब ये कि आप सूक्ष्मता से देखें कि हम क्या खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, और हम जीवन को कैसे जी रहे हैं, हमारे विचार क्या कह रहे हैं।
0: जी
1: तो सुबह उठें, थोड़ा ध्यान करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा सा पैदल चलें, और
0: अच्छा
1: अपने काम स्वयं करने से भी अपनी हेल्थ अच्छी रहती है।
0: जी जी
1: हाँ, ये मैं आम सभी लोगों के लिए मैं अपने क्लिनिक में लगातार कहती हूँ कि अपने शरीर को सही बनाए रखने के लिए सूर्यास्त और सूर्योदय, इन दो समय का विशेष ध्यान रखें, कब खाना है कब नहीं खाना है। जब चिड़िया पशु पक्षी भी नियम पालन करते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं।
0: सही है, बिल्कुल
1: तो
0: सही है।
1: हाँ, देर रात खाना न खाएं, देर रात की पार्टियां और अननेसेसरी चीजें खाने पीने से बचें,
0: अच्छा
1: और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। तो ये मेरा मुख्य आप सबसे निवेदन रहेगा।
0: निवेदन रहेगा
1: हाँ जी
0: तो ये तो मतलब ये जाने अनजाने आपने सब बता दिया कि हम स्वस्थ कैसे रहें, है
1: जी
0: ना, ताकि बीमार हो ही ना
1: जी
0: सबसे पहले तो।
1: जी स्मिता
0: और
1: जी, आजकल BP लोगों को बहुत हो गया है,
0: हाँ
1: डायबिटीज बहुत हो गया है, उसका मुख्य कारण खान पान पर जो उनका नियंत्रण नहीं है
0: जी
1: वही है।
0: वही है।
1: हाँ
0: हाँ तो यही है कि कभी इलाज करवाना है इससे पहले कि हम अपने आप को सुरक्षित रख लें, वो ही ज्यादा
1: हाँ
0: अच्छा
1: और
0: है।
1: अगर हो गई है बीमारी
0: तो
1: तो 3 या 5 दिन की एंटीबायोटिक जो भी आपके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते
0: डॉक्टर
1: हैं
0: के
1: वही लें,
0: हाँ, मतलब डॉक्टर
1: अननेसेसरी
0: से
1: दवाइयां
0: पूछे
1: न खाएं,
0: बिना, डॉक्टर से पूछे बिना अपना
1: पूछे बिना
0: इलाज
1: न
0: स्वयं ना
1: खाएं, न
0: करें।
1: करें।
0: जी।
1: जी
0: तो पूनम जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है, और मुझे नहीं लगता है कि अब वो कोशिश यही रहेगी कि देखिए आपके लिए तो आपका ये वो है कि ये पेशा है मान सकते हैं इसको, कि उसके बावजूद आपने इतनी अच्छी बातें बता दी कि अब तक आए नहीं कोई
1: जी मैं
0: व्यक्ति
1: चाहती
0: बीमार
1: हूँ
0: होके,
1: पेशेंट पहुंचे ही नहीं, अब
0: वही
1: हाँ
0: मरीज बन के आए ही नहीं
1: मरीज बन
0: कोई,
1: के ना आए।
0: तो जरूर सुरक्षित रहेंगे हमारे श्रोता। जितने सुना, जितना ने ये बात ध्यान से सुनी होगी
1: जी
0: वो सब बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे।
1: जी स्मिता
0: तो
1: जी, थैंक यू
0: ये
1: सो
0: जानकारी
1: मच,
0: देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: नमस्कार।
1: जी नमस्ते।
2: भाई बहनों, अभी अपन सुनी रहा था कि मौसमी बीमारी ओ को कारण लक्षण निदान का ही हो न, जानकारी दे रही थी अपना का डॉक्टर पूनम मिश्रा। तो भाई बहनों, बड़ी अच्छी जानकारी अपना का मिली। अब चूंकि आज अपन ग्राम लक्ष्मी की चौपाल पर छे, तो आज घरेलू नुस्खा को रस्तों देख ही रहा होगा आप लोग। तो घरेलू नुस्खा में आज अपन बात करांगा मीठा नीम की। हाँ, मीठो नीम जैसो नामों को मीठो छे, असाओ का गुण भी छे। एकाम छे आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, बी, विटामिन सी और विटामिन ई। इना सभी विटामिन से फायदों का ही छे। देखो भाई बहनों, विटामिन सी ई जो छे हमारी त्वचा का लिए, हमारी प्रतिरोधक क्षमता के लिए अच्छा रहे, वहीं विटामिन ए जो छे वो हमारी आँख न की रोशनी का बढ़ावज। तो ये सब फायदा होने से अपना का समझ में आई रोज की मीठो नीम कितना उपयोगी छे। तो एक खास करी का फायदा ये छे कि यो हमारा पाचन तंत्र का मजबूत करज, साथ साथ हमारा बाल न का लिए पोषण प्रदान करज, अन एका से शक्कर की बीमारी मतलब डायबिटीज पर भी नियंत्रण आवज। तो एका से करज ये करज कही भाई पाचन, जैसे पेट में गैस हुई जाए, अपचन हुई जाए, एसिडिटी हुई जाए, तो सुबह खाली पेट 8-10 पत्ता चबाना से अपना का इन्हीं समस्या से निजात मिलज। वहाँ मीठा नीम का अच्छो पेस्ट बने लो, मतलब अच्छो पीसी लियो, नो को पानी जो रस या ओक जो अपना सिर

जो कपाल छे कप लगाई लियो ओ कासे डेंड्रफ अने बाल झड़ने की जो अपनी आदत रही बाल की वो खत्म हो जाए। साथ साथ अगर अपन मीठा नीम की पत्ती ना चबावा तो अपनी जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज की बीमारी छे ओ काम भी अपना को बहुत आराम मिले। साथ साथ एकासे अपनी खून की कमी भी दूर हो जाए। एक सेवन कसो कर सका एक चटनी बने के ले सका सब्जी में दाल में एक डाली के खाई सका अने कच्ची पत्ती ने खाई लो तो भी यो बहुत लाभकारी रहे। तो ये तो हुआ मीठा नीम का गुण। अब मीठा नीम का गुण का बाद में अपन समझान कि लोकगीत न से अपनो पेट नहीं भराते हैं। तो प्रभुलाल मालवीय को एक लोकगीत सुना लेवान इना लोकगीत को आनंद।

भाई बहनों, अभी अपन सुनी रहा था प्रभुलाल मालवीय को गायलो लोकगीत। यो पर्यावरण गीत थो तो अपना समझ में आयो कि पर्यावरण में पेड़ लगाने को कितना महत्व छे। भाई बहनों, पेड़ रहे तो ठंडक रहे। अभी गर्मी का दिन चली रहा है तो फटाफट अपन सुनी लेवा कि ऐसी कहाँ की चीज खावा या पीवा जैसे से गर्मी में राहत मिले। तो आज अपन बात करेंगे सत्तू की नमकीन छाछ की। करनू कही छे अपना का छाछ अच्छी पतली सी छाछ ले लो ना, ओका में सत्तू डाली लो, साथ साथ ओका में बारीक बारीक कांदा काटी के डाली लो, हरा धनिया अने अगर जरा सी हरी मिर्ची ओका में डाला, कालो नमक अने नमक एक मिलाई का अने साथ में भूनो जीरो डालनो मत भूलजो। ओका से जो स्वाद बढ़ेगा नी मजा आई जावेगा। एक अपन सफर में भी ले जा सकान अने छाछ के हलाई हलाई का पीने से कई होगा पेट में ठंडक जाएगा, पेट की गर्मी कटेगा क्योंकि सत्तू को गुण अपन सब जाना कि वो अपना का गर्मी से राहत देज। अने साथ साथ सत्तू में एक और अपना का राहत मिलेगा कि ओका से अपना पेट भी भरल रहेगा। तो जहाँ गर्मी का दिन में खाना खाने को मन नहीं करते हैं अने एक रोटी खावाने पेट भर ही जाए लेकिन पूरा अपना का पोषक तत्व नहीं मिलता है, तो सत्तू अगर इस तरीका से अपन सेवन करेंगे तो अपना शरीर में कई कि पोषक तत्व की कमी नहीं होएगा अने जो गर्मी अपना शरीर के अंदर पड़े ओका में भी अपना का राहत मिलेगा। अब सत्तू का अपना का मालूम है नी भाई, गेहूं चना अने जुआर या बाजरा ले लियो, तीन तरीका का जो आटा हो उनके सेकी सेकी कर अपन इकट्ठो करा तो सत्तू बनी जाए, बाजार में आजकल मिली भी जाए। तो अपना का कई भी करी का न सत्तू जो छे ओको उपयोग करना चाहिए। अब सत्तू के दूसरो तरीको देखी लो, नमकीन छाछ पी ली अपन न। अब सत्तू जो छे ओका अगर अपन ज्वार की धानी का साथ में मिलाई लो, ओका में नींबू डाली लो, ओका में नमक मिर्ची अने जरासी कैरी काटी के डाली लो क्योंकि कैरी को भी मौसम चली रहे न, एक जब खावांगा तो एका से कई होएगा अपना का जो मोटो अनाज छे ने ज्वार ओको भी आनंद मिलेगा, ओका फायदा भी अपना शरीर का होएगा अने साथ साथ अपना शरीर का पोषक तत्व भी मिलेगा। तो गर्मी का दिन में बाजार का खाना में जीव मत डाल जो, घर में अच्छी अच्छी चीज ने उपलब्ध छे ओका से अपनो शरीर स्वस्थ बनाओ जो ने जीवन मस्त बनाओ जो। इन्हीं बात का साथ ग्राम लक्ष्मी की चौपाल पहला सभी भाई बहनों की तृप्ति की राम राम।

ग्राम लक्ष्मी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनीष कुमार सोनी का प्यार भरा नमस्कार। तेरे बिना भी क्या जीना है, ये सवाल रहता है। तेरे बिना भी क्या जीना है, ये सवाल रहता है। हर धड़कन में तेरा ही ख्याल रहता है। वक्त वक्त तो गुजर जाता है किसी तरह, मगर दिल का कोना कोना भी फिर भी बेहाल सा रहता है।

हमको हो गया है इश्क तुमसे कुछ इस तरह कि हर सुबह तुम्हारे नाम से शुरू होती है और हर रात तुम्हारी यादों की चादर ओढ़कर मेरी आंखों में सुकून बनकर सोती है। तुम मिले तो लगा जैसे दुआ कबूल हुई, बरसों से अधूरी कोई आरजू पूरी हुई। अब तो हर खुशी का पता तुमसे है, जैसे जिंदगी तुम्हारे नाम हो गई।

सच तो है कि हमको तुमसे प्यार हो गया और तुम्हें भी हमसे प्यार हो गया। अब सामने तुम क्या आए, जैसे मौसम बदल गया। कुछ यूं ही तो लिख रहा हूं मैं। सामने तुम क्या आए, मौसम बदल गया, सूना सा दिल मेरा फिर से मचल गया। सोचा था बहुत कुछ कहेंगे तुमसे, लेकिन तुम्हें देखते ही हर अल्फाज संभल गया।

वो दौर ही कुछ और था जनाब, जब मोहब्बत खतों में मिला करती थी। सही सुना आपने। अजी वो दौर ही तो कुछ और था जनाब, जब मोहब्बत खतों में मिला करती थी। दो लफ्ज़ पढ़कर ही दिल मुस्कुरा उठता था, और एक चिट्ठी महीनों तक संभाल कर रखती थी। तेरा खत आज भी किताबों में रखा है, जैसे कोई खूबसूरत सा ख्वाब रखा है। स्याही तो फीकी पड़ गई वक्त के साथ, लेकिन उसमें लिखा प्यार अब भी ताज़ा है।

0: दिल ने फिर याद किया। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्रों से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम के बाकी गीत लेकर हाजिर होते हैं बस एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
2: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
1: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
3: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
2: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
4: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, आज रात को 9:15 पर कार्यक्रम चित्रगीत सुनना ना भूलिए और रात 10 बजे होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। दिल ने फिर याद किया अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है श्रोताओं।

मोहब्बत से चलती है दुनिया, ये बात पुरानी नहीं। तेरे बिना मेरी कोई शाम सुहानी नहीं। तेरी मुस्कुराहट से ही मेरे दिन में उजाला है। तेरी बातों के बिना दिल को कहीं ठिकाना नहीं। तू साथ रहे तो हर सफ़र जन्नत सा लगे, वरना तेरी मोहब्बत के बिना इस जिंदगी में कोई अफसाना नहीं।

तेरी आंखें मोहब्बत भरी जैसे कोई हसीन किताब हो। तेरी आंखें मोहब्बत से भरी जैसे कोई हसीन किताब हो, जिसे पढ़ते पढ़ते दिल को हर बार आए नया ख्वाब हो। तेरी नज़रों में ऐसा असर हो कि सुकून मिल जाता है, हर दर्द हर गम पल भर में कहीं खो जाता है। सागर से भी गहरी हैं तेरी आंखें, सागर से भी गहरी हैं तेरी आंखें।

तेरी मोहब्बत का नशा कुछ इस कदर छाया है, हर चेहरे में तेरा ही चेहरा नजर आया है। अब तो दिल की हर धड़कन यही कहती है, रब ने तुझे सिर्फ मेरे लिए बनाया है।

अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो? रुको जरा, रुक भी जाओ। अरे ढलाई तो है देन। अरे सुन रही हो ना? अब देखो, ढल तो गया है देन। क्यों जा रही हो मुझे यूं छोड़कर, मुझसे दूर? मेरी शामों में छोड़ जाती हो तुम ये यादों का नूर। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, दिल अभी भरा नहीं है। तुम्हारे बिना ये सफर अधूरा अधूरा सा है। हाँ, अधूरा अधूरा सा है। मत जाओ, ढलाई तो है अभी दिन, शाम तो अभी बहुत बाकी है ना।

दिल ने फिर याद किया। ये था आज का प्रोग्राम श्रोताओं आपकी नज़र। गीतों का यह सफर पूरा किया आपने मनीष कुमार सोनी के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

दिल ने फिर याद किया। ये प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब से कुछ ही पलों में समाचार संध्या का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई।

बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रूपये और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रूपये देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार।

0: पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
3: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
4: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग, हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म के लिए सुनिए आशा भोसले और मीनू के स्वर में ये गीत। ओपी नैयर ने तर्स तैयार की है और कश्मीरी के बोल हैं।

0: अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: मिस्टर एक्स इन बॉम्बे 1964 में बनी इस फिल्म के लिए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के लिखे बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सजा हुआ संगीत।

इसी गीत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम चित्रगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में अगले कार्यक्रम के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ जेपीएस डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, और उसके अलावा 2331-0481, 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है।
1: प्रियंका जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफी आगे था। केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
0: जी।
1: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना है, चित्र रखना है, तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है, किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाना चाहते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान ले कहीं बारिश ज्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पे उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज्यादा प्रयोग करते हैं, जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। तो हमें किसानों को ज्ञान समझाना है कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित किया जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूंगा कि जो हमारे देसी खाद है, रासायनिक खाद है, इसके साथ में जो जीवाणु खाद है, इन सबको साथ में लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उनको भी रिसाइकिल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो।
0: जी, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम
0: जी,
2: सब्जियों के लिए प्रणाम
0: जी।
1: नमस्कार। नमस्कार जी।
2: सब्जी, मेरे कुछ जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं हैं, उत्कंठाएं हैं, मैं मंगोलप्री दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रवि, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: ब्रह्मजीत जी, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं, और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि जमीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं, और आजकल मोटे अनाजों की भी काफी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनसे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को, और हम काफी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफी संभावना है, और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ जमीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पे भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है, जैसे पानी अगर कहीं ज्यादा तो वहां केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं, और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं, और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीजों को देखना है, जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज्यादा आमदनी मिल सके।
0: जी, आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो वो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
3: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादातर किसान भाई एक या दो या ज्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन क्या है ना, पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है, और वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अभी क्या है ना, हमारी ज्यादातर मिट्टियों में जहां पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस्ड कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे तो वहां पे क्या है ना, एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है
0: हो जाती
3: और
0: है।
3: उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
0: जी डॉक्टर, आपसे बात जारी रखेंगे, पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश जी राकेश बात कर रहा हूँ, कोट खाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद
4: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जब हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
0: डॉक्टर मीना
3: तो राकेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया वो क्या है ना, ज्यादातर आपकी मिट्टियां अम्लीयता हैं और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है, और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि एसिडिटी ज्यादा हो गई, तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है, मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है, बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज्यादा रोल है और इसकी कमी बहुत ज्यादा है, किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा
0: तो सॉइल टेस्टिंग समय समय पर बहुत जरूरी है। जो किसान कराते रहे। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं योगेश ढांगड़े जी।
5: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।
5: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़।
0: जी जी,
5: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
0: डॉक्टर
1: योगेश जी, जो भी हमारे फसल अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक उषा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के इसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में तीन प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कम्पोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूंगा कि अपने खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीजें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूंगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
0: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो जी अनिल जी।
6: सर हमारे सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
1: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूंगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है। इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में, तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हो और किसानों के जो संगठन बने आज के किसान उत्पादन संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
0: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
7: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
7: सर मैं ये जानना चाहता हूँ हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले तो मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए?
0: जी डॉक्टर मीना।
3: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा, जो क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले दो मीटर छोड़ना है और जितना ओपन है, इवन पेड़ और बिल्डिंग, कुएं, जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहां से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है, और मिट्टी की गहराई जैसे जो आपकी सीजनल फसलें जो एक सीजन में खत्म होती हैं उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले लिया और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने बोला है ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहां से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
0: जी हाँ, ये बहुत जरूरी है, और समय समय पर श्रोताओं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है तो उसका लाभ जरूर ले। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए।
3: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियां हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या कभी हम ऑर्गेनिक मेन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं, और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे जैसे पूसा डिकम्पोजर है ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है, यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा अवशेष या हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएं और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएं।
0: डॉक्टर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में। डॉक्टर
1: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर मीना ने जिक्र किया है एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक खाद भी बढ़ाती है और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पर इसका उपयोग करना चाहिए और अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है दलहनी फसल काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक खाद भी बढ़ाने में मदद करती है और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉइल में इंकॉर्पोरेट कर देते तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितने भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही है और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं तो उनका भी सब्सिडी हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से एनोरोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाए साथ में उसके गैस का उपयोग भी करें तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जाता है उसकी भी बचत करेगा और हमारे गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गांव बन सकते हैं और आजकल इस गैस के माध्यम से हम गाड़ियां भी चला रहे हैं तो उसका भी काफी बड़ा लाभ हो सकता है और जबकि ये हमें बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जैसे कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीजों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद है जिनके माध्यम से दे सकते हैं या कुछ जैविक ऐसी भी चीजें हैं जो फफूंदनाशक जैसे ट्राइकोडर्मा

0: और नुकसान करता है, तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
2: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न है
1: जी,
2: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
0: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूं कि हमारे यहाँ ब्लैक स्मट एक गेहूं में बीमारी आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है, और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगा, बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार के लिए दोनों चीजें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध है और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन है जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है, जैसे हमने रुपाई करनी है, तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं, और साथ साथ में इसको प्रौध को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं, जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजूला है, तो ये भी ऐसी चीजें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज्यादा लाभ देती है, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
3: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी।
3: प्रश्न यह है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजातीय लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
4: जैसे इंद्रभान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भाग है तो वहां पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहां पे एरिया में ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनकी अवेलेबलता मतलब वो ऐसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी है किसान की जागरूकता। जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है, और जैसे छत्तीसगढ़ में है या एमपी में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के संस्थान है और वहां पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुंच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
1: कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिस पे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है, जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
0: मैं इसमें दोबारा ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो और भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहां से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पर जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1551
1: जी।
0: तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह एक पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989, तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपको यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे 01125841670, ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और जो भी हमारे एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ, खासकर अगर मिसार का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है, लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहां पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से

0: किए जा रहे हैं, लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।
1: जी, हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी।
2: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए, और धरती कहे पुकार के, ये भी जी, एक
1: जी राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछें।
2: जी, जो शहर का वेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल, तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंदर होने से खेती को बचाया जा सकता है, और क्या किसी की खेती बंदर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना है?
1: जी डॉक्टर मीना।
3: हाँ, तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है, और हमारे जो सरकारें हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना, थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज को पहले हम उसका क्या है ना, जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जांच करा लें, क्योंकि जांच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है, और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई या अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है, तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि उर्वरक और जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है, जब हम उसको सही, हम फसल से ज्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है, लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में प्रयोग करना बहुत जरूरी है, और हमें यह भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन सी किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है, तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या है, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह पे वेरी करेगी, और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है उनके माध्यम से मिलकर उसको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित कर होकर एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है, पानी का भी हमें प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की जरूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझे, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सम्पन्न करने की। नमस्कार।
3: नमस्कार।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन लेकर बस यूं हाजिर हुए। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

0: मन भावन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनीष कुमार सोनी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, लेकर हाजिर हैं हम आपके बहुत से पत्र और आपकी पसंद के कुछ गीत। तो लेते हैं सबसे पहले वो पत्र जो हमें मिला है बेटमा रंगबासा से। लिखने वाले हैं छतर सिंह तंवर, हुकुम सिंह तंवर, सोहन सिंह तंवर, मोहन सिंह, मदन सिंह, राहुल सिंह, युवराज सिंह, शिवराज सिंह, आयुष देवड़ा, देवेंद्र सिंह सोलंकी, शिवांश चौहान, मास्टर चीनू और उनके समस्त परिवार के सदस्य। गौरीनगर इंदौर से चिट्ठी आई है। पसंद करने वाले हैं आप सभी आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। कमर कॉलोनी बड़वा से पत्र आया है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली का। आड़ा बाजार इंदौर से लिखने वाले हैं प्रतिभा पांजरे, भावना टेलर, नेहा, बल्लू, जिया, शशि, भावना, आशीष जाधव, दिनेश पांजरे और उनके परिवार के सदस्य। गोविंद पंड माझीवाला श्रीकरणपुर राजस्थान से पत्र आया है। राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जीनू, मन्नू, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत, शिव सेठी, करणपुरी और स्माइल टुटेजा का। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से लिखने वाले हैं नियाज मोहम्मद मंसूरी और उनके परिवार के सभी सदस्य और उनके मित्रगण। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से लिखने वाले हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। सुरेवाड़ी औरंगाबाद से एक पत्र आया है प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर का। उज्जैन से चिट्ठी आई है विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूणत। धर्मपुरी जिलाधार से लिखने वाले हैं शेख फहीम मोहम्मद, तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, साइना हसनैन और खुशी। सिमंदर पार्क विरमगाम से लिखने वाले हैं अजीत, प्रमीला, भावेश, सन्नी, हेतल, कृष्णा, जैमिनी, भावसार। भणभूंजी आगर से चिट्ठी आई है रघुनाथ मालवीय, सुषमा, मंजू, बबीता, राधा और ओम प्रकाश की। आप सबकी फरमाइश पर लीजिए प्रस्तुत है आपकी पसंद का ये गीत।
1: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
2: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती है ना?
1: नहीं।
2: थोड़ा भी नहीं?
1: नहीं।
2: झूठा भी नहीं?
1: नहीं नहीं नहीं।
0: किशोर कुमार, उषा खन्ना की आवाजें, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: रमा, 9 तारीख को जा रही हो ना अपनी जांच के लिए?
1: हाँ लता, 9 का दिन तो हर गर्भवती माँ का दिन है, पर इस बार कुछ खास है क्या?
0: हाँ, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
2: मैं हर गरीब परिवारों से आग्रह करूँगा कि सभी गर्भवती माताएं इस सेवा का लाभ उठाएं, ताकि 9वें महीने तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका उपाय किया जा सके।
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से शुरू हुए इस अभियान के तहत 7.5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को मुफ्त प्रसव पूर्व जांचें दी जा चुकी हैं। नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर, जरूरी जांचें, दवाइयां और भी सेवाएं दी जाती हैं।
1: वाह, तो इस 9 तारीख को मैं जरूर जाऊंगी।
3: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, 9 तारीख को नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: अगले खतों का एक बंच मेरे हाथों में है और ये एक खत हमें मिले हैं प्रिंपी वाशिम से। लिखने वाले हैं गबा सिंह राठौड़, सतीश, अभय, अजय, यश और खुशन। चिट्ठी आई है खंडवा से। शिवांश कुमार खंडागले, सुभाष मंदा, संदीप कुमार, माधुरी खंडागले, पिंटू कुमार खंडागले और जयश्री खंडागले की नाज मंजिल सीतामढ़ी बिहार से चिट्ठी आई है। अकरम हुसैन, वसीम, आरिस, शमीम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम, इशरत, रुबीना वसीम, नदीम, अमन, पूनम कुमारी शर्मा और चीना शेख की। महसूल से खत लिखा है उमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा, अरहान, हमजा और मुजम्मिल ने। राजनंद गांव से लिखने वाले हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से चिट्ठी आई रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी। घंटाघर चौक खंडवा से लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सुनमती पंचोलिया।

या खरगोन से लिखने वाले हैं डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर, राज, बेबी आरोही, इशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। निवासी घुपटी से लिखने वाले हैं बंडू लोहार, माया, शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट, श्रीरामपुर, भोकर से चिट्ठी आई हरिभाव बिड़वे, श्रावण, अनीता बिड़वे की। इंदौर से लिखने वाले हैं रवि, ईश्वरी, आदित्य, रोशनी और कीर्तिमान। राजावत कॉम्प्लेक्स शाजापुर से चिट्ठी आई है मनमोहन राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित और उनके परिवार के सदस्यों की। गांधी चौक बाड़मेर से लिखने वाले हैं बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव दास और कीर्ति भानु ख्वाहिशमंद है। सुराना जिला रतलाम से ख्वाहिशमंद है शेख हैदर खान, शकीला बानो, शमीम बानो, रुखसार बानो, हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी ने हमें लिखा है झालावाड़ राजस्थान से। खंडवा से ही एक और चिट्ठी है विनय, विजय महोबिया, संजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सपना, शिवी, सलोनी, राजू और पेंटर बाबू की। अनिल विंचुरकर ने के साथ साथ मंगला शोभित ने लिखा है ममता वार्ड खंडवा से। उदयनगर से चिट्ठी आई है मोहित रत्नपारखी, स्वाति मिष्टी, मनस्वी रत्नपारखी की। चंडीगढ़ से ख्वाहिशमंद है हमारे इस गीत के लिए जो आप अगला सुनने वाले हैं वो है टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से ख्वाहिशमंद है शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। और इस गीत की फरमाइश का ये आखिरी खत है हमारे हाथों में, वो लिखा है तुषार कुरणे, प्रासिक, एकता, मेघना, उत्कर्षा, अरुण, इन सभी ने लिखा है हमें जिला कोल्हापुर से। और आप सबकी ख्वाहिश पर लीजिए प्रस्तुत है ये गीत जो आपने चुना है यादों की बारात फिल्म से, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी की गीत रचना और राहुल देव बर्मन ने तर्ज तैयार की है।

0: और अब अगले पत्रों की बारी है जो आया है हमें लाबरिया भैरू इंदौर से। ख्वाहिशमंद है आप सभी फिल्म दीवार के इस गीत के लिए जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। साहिर के बोल हैं और संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने। पसंद किया है आप सबने। अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और उनके परिवार के सदस्यों ने। सुधीर, नूतन, मीनाक्षी तिवारी और सुनीता शर्मा ने हमें लिखा है करनाल से। जामरून से चिट्ठी आई है। दुर्गादास, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज और साध्वी के साथ साथ गणेश हरगांवकर की। डब्बाली हरियाणा से ख्वाहिशमंद है जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोले, संजय, अनिल और मीनू बोकोलिया। अलिका डब्बाली से ही एक और चिट्ठी है। बसंत सिंह चान, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी की। इंदौर से निहालपुरा से हमें लिखा है अनीता, कोमल, सोनू, मोनू, दुर्गा, दीपक, कपिल और प्रदीप ने। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से चिट्ठी आई है। सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और सर्वद देशमुख की। नरगोड़ा सीपत छत्तीसगढ़ से लिखने वाले हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी गोस्वामी के साथ साथ लिखा है निशा तुलसी गोस्वामी ने। राजपुर जिला बड़वानी से लिखने वाले हैं संतोष यादव, शिवराम, दुर्गा, निखिल, अंकित, नंदनी, किरण, रेखा, स्वयं और सलोनी। पालधनका इंदौर से लिखने वाले हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी, मोहम्मद रफ़ी और बबलू मंसूरी। सांकरा सोमनी छत्तीसगढ़ से चिट्ठी आई है नारायण लाल, देवेंद्र प्रताप, मिलिंद कुमार, कुलवंतिन, नेहा देवी और कुमारी टिंकेश्वरी की। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से पत्र आया है कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, पोतरा, मुस्तबा खान, राउफ, शाहिद। गांधीबाग अकोला से लिखने वाले हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर के साथ साथ। महाराष्ट्र से ही एक और चिट्ठी है शत्रुघ्न धांडे, वाल्मीकि, नेनाजी, स्वप्निल और अजय खिरोड़कर की। एक और महाराष्ट्र से पत्र आया इसी गीत के लिए अभिजीत गवाणकर, राही, सरिता गवाणकर, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश के साथ साथ लिखा है शैलेश, वैशाली और ध्वनि ने। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद का ये गीत।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

अगले खतों के साथ एक बार फिर गीत लेकर हाजिर हैं शोले फिल्म का। आरडी बर्मन ने इस गीत को गाया है, आरडी बर्मन का ही संगीत है, लेकिन बोल आनंद बख्शी के हैं। पसंद करने वाले हैं आप सभी बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने लिखा है हमें। प्रमिलागंज आलोड जिला रतलाम मध्य प्रदेश से, सनावत मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव और काव्यांशी कटारिया। मोटका माफी जिला खंडवा से चिट्ठी आई है जगन्नाथ पटेल, कमला, अंतिम, ज्योति, ललिता, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य और मानस पटेल की। ये चिट्ठी कहाँ से आई है? ये आई है कोली मोहल्ला छबड़ा से, नूर बानो, सलमा बानो और सिमरन की है। कापस हेड़ा नई दिल्ली से आई है चिट्ठी, आमना नशरीन, लखमिनिया बेगूसराय से लिखने वाले इखलाक अहमद फूल वाले, छोटी बलिया करजत मुंबई से लिखने वाले हैं अहमद भाई, इकबाल अहमद और नुरेशा अहमद फूल वाले। कासम कॉलोनी सनावत से सुनना चाहते हैं इसी गीत को यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीस खत्री, नूर मीना, इरफान और कासिफ मीना। छत्तीसगढ़ से एक और चिट्ठी है रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव की। इंदौर से एक चिट्ठी आई है सीमा, सचिन, रवि और उनके संगी साथियों की। चंडीगढ़ से ख्वाहिशमंद है सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। साथ ही पटेल नगर मलोट से लिखने वाले हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू जाजोरिया। और इस गीत की ख्वाहिश के लिए यह है आखिरी चिट्ठी जो मेरे हाथों में, विजय चव्हाण, तेजस्विनी चव्हाण, अंकिता, अनिकेत, माया चव्हाण, वारणा शाहपुर, कोल्हापुर से। तो आप सभी की फरमाइश पर लीजिए हाजिर है आपकी पसंद का ये गीत।

तो श्रोताओं, ये था आज का मनभावन कार्यक्रम। उम्मीद है आपकी फरमाइशें ज़रूर पूरी हुई होगी। हालांकि आपके बहुत से खत शामिल नहीं हो पाते क्योंकि समय की भी अपनी बाध्यता होती है। तो आपके पत्रों के साथ कल फिर रात 10 बजे हाजिर होंगे लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम मनभावन। आपके पत्रों का हमें रहेगा इंतज़ार। पत्र लिखना ना भूलिए, पता नोट कीजिए, कार्यक्रम मनभावन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मालवा हाउस इंदौर। इंदौर का पिन कोड है 452001। और अब इजाज़त, मनीष कुमार सोनी को नमस्कार।

मन भावन, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित राजन एवं पंडित साजन मिश्र का गाया राग कौसी कानड़ा। आइए सुनिए।

0: पंडित राजन मिश्रा और पंडित साजन मिश्रा के स्वर में उन्हीं का गाया राग कौशी कानड़ा अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत। संगत कलाकारों में हारमोनियम पर तुलसीदास बोरकर थे और तबले पर संगत की मदन मिश्रा ने। शास्त्रीय संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया गया। और अब से कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
3: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।